मीडियम वेव 305.81 मीटर अर्थात 981 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आप हमारा प्रसारण मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी सुन सकते हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 16वीं तिथि, तदनुसार 6 जून सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय 5:57 होने को हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6 बजने को हैं। हिंदी समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद कल प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
2: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 में भी अपनी मजबूत गति बनाए रखी है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है, जबकि 2024-25 के लिए इसका संशोधित अनुमान 299 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों FPI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के तहत सामान्य मार्ग से निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह के निवेश सीमाओं का पालन नहीं करना होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2026 में अब तक कुल 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि वर्ष 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिकों को वापस भेजा गया था।

0: उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली के लिए आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और श्री सुगियोनो कल नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि जून 2026 तक देश भर में 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित खाद के इस्तेमाल का यह अभियान एक देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मिघहारा में खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। शुरुआत करते हैं मातृ वंदना से। पहले सुनते हैं समूह सर में कृष्ण कमलेश की ये मातृ वंदना।

आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। लीजिए सुनिए अनूप जलोटा और कविता मठरानी के स्वर में राजेश जौहरी की ये भक्ति रचना।

गुलाम दस्तगीर खां की आवाज में अभी आप सुन रहे थे अहमद फराज की ये नात। इसी के साथ आज की वंदना संपन्न हुई। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए चिंतन। आलेख श्री गुणवंत माधवलाल व्यास का है।
1: वेद वेदांत उपनिषद गीता आदि ग्रंथों और संतों की वाणियों में मानवता और जीवन मूल्यों विषयक जो ज्ञान मिलता है, वही कभी कभी फिल्मों के सरल भाषा और सुरीली धुनों वाले गीतों में मिल जाता है। मुकेश का गाया गीत किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। मुझे ऐसा ही जीवन के प्रयोजन का संदेश देता गीत लगता है। यूं तो मनुष्य भी सृष्टि के प्राणियों की एक प्रजाति ही है। आहार निद्रा भय मैथुनश्च, उसकी भी सहजात प्रवृत्तियां हैं। अन्य प्राणियों में भी बुद्धि और भावनाएं होती हैं, परंतु मनुष्य इनमें उनसे कुछ ऊपर ही है। मनुष्य की बुद्धि पूर्वानुभवों से बढ़ती चलती है और उन पूर्वानुभवों की नींव पर नया सोचने करने गढ़ने की क्षमता रखती है। उसमें भले बुरे हितकर अहितकर कार्य अकार्य की भेदक शक्ति भी विकसित होती है, जिसे हम विवेक कहते हैं। विकसित विवेक के कारण ही मनुष्य प्राणियों में श्रेष्ठ कहलाता है। समूह में तो अन्य प्राणी भी रहते हैं, लेकिन रिश्ते बनाने में मनुष्य जैसे सक्षम वे नहीं होते। रिश्ते बनाना और निभाना भावना पर आधारित होता है। प्रेम की भावना मनुष्य को मानव बनाती है और समूह को समाज। सामाजिकता का मूलाधार प्रेम है, इसलिए मानवीयता का लक्षण भी प्रेम है। क्या है प्यार? दूसरों के लिए मन में चाहत लगाव ही तो प्यार है। जहां प्यार होता है वहीं अपनापन होता है, ममत्व होता है। प्यार स्वार्थी भी हो सकता है और निस्वार्थ भी। निस्वार्थ प्रेम ही सच्चा होता है, जो सामने वाले के चेहरे की मुस्कान को उस व्यक्ति के मन की खुशी का बाह्य प्रकाशन समझ सके और गैर की खुशी अपने भीतर महसूस कर खुद भी हर्षित हो सके। उसका ही हृदय सच्चे प्रेम का सरोवर होता है। वही आत्मवत सर्वभूतेषु के मर्म का ज्ञाता होता है। वही मानव कहलाने का अधिकारी होता है। दूसरे को प्रसन्न और प्रगत देखकर जिस हृदय में जलन डाह ईर्ष्या जागे, वो संकीर्ण तुच्छ स्वार्थी ही तो कहलाएगा, क्योंकि ये कुत्सित भावनाएं और विचार समाज की सुगढ़ता के लिए हानिकर होते हैं। इसलिए मानव रहना है, सामाजिकता को बरकरार रखना है, तो किसी की मुस्कुराहटों पे निसार होना हमारा धर्म है। खुशियों में शामिल होने के साथ ही, बल्कि उससे कहीं ज्यादा जरूरी है औरों के गमों दर्दों में हाथ बटाना। जब किसी को लगता है कि सुख के सब साथी दुख में न कोई, तब उसका दुख और बढ़ जाता है। जो तकलीफ है उसमें बेगानापन की पीड़ा घाव पर नमक जैसी लगती है। आदमी चाहता है कि बुरे वक्त में वो अकेला न पड़ जाए, कोई साथ न दे, तो फिर क्या मतलब है समाज का? इसलिए पराई पीर को अपनी पीर मानना मानवता का तकाजा है। जो परदुख कातर होता है वही वैष्णवजन यानी सच्चा प्रभु भक्त होता है। नरसी मेहता की वाणी में वैष्णवजन तो तेरे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, आगे जैसा नरसी ने कहा है, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान न आने रे। यानी किसी के संकट काल में उपकार कर मन में अभिमान नहीं उपजना चाहिए। ऐसा निरभिमान उपकारी ही वही हो सकता है जो सहज प्रेमवश पर पीड़ा से द्रवित हो उठता है। समाज के अस्तित्व के लिए परस्पर विश्वास आवश्यक है, क्योंकि वही दिलों को जोड़ने वाला सूत्र है। विश्वास बिना प्यार के नहीं पनप सकता। प्यार न हो तो भरोसा भ्रम और भूल साबित हो जाता है, छलना प्रतीत होता है। एतबार की इमारत प्यार के अभाव में ढह जाती है। हम सैकड़ों उदाहरण देखते हैं जहां विश्वास प्रेम के अभाव में निरीप्रवंचना सिद्ध हुआ और विश्वास एतबार यकीन की उपस्थिति के बिना प्रेम नाटक बनकर रह गया। अस्तु, मानव जीवन के साफल्य के लिए प्रेम और विश्वास वांछित हैं।
0: अभी आप सुन रहे थे चिंतन। आलेख श्री गुणवंत माधवलाल व्यास का था। आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:35 हुए हैं। समय है श्री रामचरित मानस गान का। आज की कड़ी में मुख्य स्वर सुरेश वाडकर का है। आकाशवाणी के संगीतमय प्रस्तुति के संगीत निर्देशक हैं सतीश भाटिया।

अवध का राजपद अस्वीकार करते हुए भरत पश्चाताप के आंसुओं में डूब जाते हैं। राज सिंहासन पर बैठने का प्रस्ताव सुनकर उन्हें उस प्राणी का स्मरण हो आता है जिसकी ग्रह दशा विपरीत हो गई हो, जो वायु रोग से पीड़ित हो और ऊपर से जिसको बिच्छू ने डंक मार दिया हो, और इन सब लक्षणों से मुक्ति पाने के लिए जिसे मदिरा पिलाई जा रही हो। ये कैसा उपचार है भला? कैकेयी का पुत्र होने के नाते संसार में जो कुछ उनके योग्य था, विधाता ने उन्हें सब कुछ दे दिया। विडंबना ये है कि दशरथ का पुत्र और श्रीराम का छोटा भाई होने का गौरव उन्हें व्यर्थ ही मिला। उनके मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि कुमाता कैकेयी को छोड़ और कौन कहेगा कि जो कुछ हुआ वो अच्छा ही हुआ है। भरत को ये भय नहीं कि जगत उन्हें बुरा कहेगा, उन्हें अपना परलोक बिगड़ने की भी चिंता नहीं। उनके हृदय में तो बस एक ही आग प्रज्वलित है कि वो श्री राम तथा सीता के दुख का कारण बने। भरत लक्ष्मण के भाग्य की सराहना करते हैं जिन्होंने सब कुछ त्याग कर श्री राम के चरणों में मन लगाया और इस प्रकार अपना जीवन सार्थक किया।

0: श्री रामचरितमानस गान अभी आप सुन रहे थे। आज की कड़ी में मुख्य स्वर सुरेश वाडकर का था। आकाशवाणी की संगीतमय प्रस्तुति के संगीत निर्देशक हैं सतीश भाटिया। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। समय है कृषि चर्चा का। विषय है मछली पालन हेतु तालाब प्रबंधन। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर प्रेम कुमार।
1: मेरे प्रिय किसान भाई एवं बहनों, आपको मेरा सादर नमस्कार। हम आज तालाब प्रबंधन के बारे में बात करेंगे। ये जो तालाब प्रबंधन किसके लिए, मछली पालन के लिए तालाब प्रबंधन कैसे किया जाता है? अगर कोई किसान भाई मछली पालन करना चाहते हैं तो सबसे प्रमुख है कि आप उस तालाब की तैयारी कैसे करें। इस तालाब की तैयारी में सबसे प्रथम होता है कि आप तालाब को पूर्ण रूप से, उसमें जो भी पानी है उसको पूरी तरह से सुखा दें। उस पानी को सुखाने के बाद बहुत महत्वपूर्ण है कि उसमें जो मिट्टी है उस मिट्टी की गुणवत्ता की जांच कर लें और उसके लवण, उसके पीएच के अनुसार, मिट्टी के पीएच के अनुसार उसमें हम लोग चूना का उपयोग करेंगे। चूना का उपयोग से क्या फ़ायदा होता है? चूना डालने से जो पीएच की गुणवत्ता है, जो पीएच की जो मानक है, वो एक अनुकूल रूप में रहेगा और पीएच के गुणवत्ता पे ही हमारे तालाब के पानी की गुणवत्ता निर्भर करती है। तो इसलिए मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम हम तालाब को सुखाएंगे, सुखाने के बाद उसकी खुदाई करेंगे, खुदाई करने के बाद उसमें हम चूना का उपयोग करते हैं। जनरली चूना का उपयोग 250 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से किया जाता है। जब चूना का उपयोग करते हैं तो उसके बाद हम पानी उस तालाब में भर देते हैं। पानी भरने के बाद हम 7 से 10 दिन तक वेट करते हैं। उस वेट करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पूरे उस पानी का कलर, जो रंग है, वो हल्का हरा हुआ कि नहीं। उसके बाद ही हम उसमें जाते हैं किसी मछली का स्टॉक करने के लिए। और तालाब प्रबंधन में सबसे दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि आप जो कार्बन और नाइट्रोजन है उस सॉइल में, उसको आप एक अनुकूल रूप में मेंटेन रखें। उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसमें कुछ फर्टिलाइज़र, जिसको हम लोग खाद बोलते हैं, या गोबर, जो सड़ा हुआ गोबर, आप पूरा फ्रेश गोबर नहीं दे सकते हैं, कोई सड़ा हुआ गोबर आप जो है सो कम से कम 500 से 1000 किलो तक प्रति हेक्टेयर के दर से आप उस गोबर का भी अप्लाई कर सकते हैं। उस गोबर के उपयोग से क्या होता है, आपके मिट्टी का जो गुणवत्ता है, जिसमें जो फर्टिलाइज़र है, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कार्बन, इसकी जो गुणवत्ता है वो मेंटेन रहती है। और उसके बाद क्या होता है, इस तालाब में बहुत

0: कीड़े मकोड़े और खरपतवार का आना स्वाभाविक है, क्योंकि तालाब एक खुला जगह होता है, इसमें मेंढक कभी कभी सांप भी आ जाते हैं, तो हमें इस सब से भी दूरी बनाए रखना बहुत उपयोगी है। इससे क्या होगा कि आप जो तालाब में मछली को डाले हैं उसका सर्वाइवल, उसका जो जीवंत रहना बहुत ही लाभदायक होगा। तो हम इस कीड़े मकोड़े को हटाने के लिए क्या करते हैं, निरंतर रूप से नेटिंग करके जाल दे करके उस बड़ी बड़ी मेढक को, बड़े सांपों को, या हम हाथ से भी पकड़ पकड़ क्या करते हैं, कुछ जो खरपतवार है, जलकुंभी है, इस सब को हम बाहर निकालते रहते हैं। ये प्रक्रिया आप कम से कम हर एक मंथ में एक बार जरूर कीजिए, जिससे क्या होगा आपके जो तालाब का जो परिवेश है वो बहुत ही उपयोगी होगा और उससे मछली का जो बढ़ाव है वो बहुत सुखद होगा और मछली जो है सो अच्छी तरह से खाना भी खाएगी और उसका विकास पूर्ण रूप से होगा। ये हो गया आपको तालाब प्रबंधन के बारे में। अभी तालाब प्रबंधन में क्या होता है कि कुछ कुछ किसान जो हैं सो नाइट्रोजन और फास्फोरस फर्टिलाइजर का भी उपयोग करते हैं, लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस का उपयोग तभी आप कीजिए जबकि आपके तालाब के मिट्टी का जो फर्टिलाइजर का रेट है, फर्टिलाइजर जो है उसमें बहुत कम मात्रा में हो, तब आप ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का उपयोग डायरेक्टली कर सकते हैं। लेकिन मूल रूप से मछली पालन के लिए चूना और जो गोबर की खादें हैं, जो जिसको हम कंपोस्ट बोलते हैं, इसका उपयोग जो है बहुत ही सहज होता है और बहुत ही लाभदायक होता है।
1: कृषि चर्चा में अभी आप सुन रहे थे मछली पालन हेतु तालाब प्रबंधन, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर प्रेम कुमार। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:50 हुए हैं, समय है कार्यक्रम विवरण का।

कार्यक्रम विवरण में पहले दिल्ली केंद्र से रिले होने वाले कार्यक्रमों की हम आपको जानकारी दे दें। स्पोर्ट्स स्कैन, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे आज रात 8:30 पर। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम युवा शक्ति आप सुनेंगे आज रात 9:25 पर। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में रात 10 सुनिएगा ऋषिकेश गागुर्डे का ख्याल गायन। ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अब से कुछ ही देर के पश्चात यानी 7:05 पर होगा सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में सुनिएगा मस्तिष्क से संबंधित रोग मिर्गी कारण लक्षण एवं उपचार, इस विषय पर डॉक्टर उमेश कुमार चंद्रा से ली गई भेंटवार्ता। भेंट करता होंगे रमा शंकर। प्रसारण समय इसी सभा में 8:30 पर। कार्यक्रम बातों बातों में आप सुनेंगे सुबह 9:00, इसमें सुनिएगा विश्व पर्यावरण दिवस पर अंबिकापुर में संचालित गार्बेज कैफे के संचालक रितेश सैनी से ली गई भेंटवार्ता। प्रस्तुति विकल्प रंजन शुक्ल की होगी।

लोक संगीत के कार्यक्रम में इस सभा में 9:40 पर और रात 8:15 पर कलाकार होंगे फिरित पटेल और साथी, और इसी कार्यक्रम में शाम 6:30 पर कलाकार होंगी छाया शर्मा और साथी। उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में दिन में 11:40 पर सुनिएगा विदुषी गिरिजा देवी का गाया दादरा। आकाशवाणी संग्रहालय से गाथा झरोखे से का भाग दूसरा आप सुनेंगे दिन में 12:00। ये भाग केंद्रित होगा सत्यवर्ती राजा मूरध्वज पर। लेखक होंगे परदेसी राम वर्मा,

0: प्रस्तुति मोहन सी रामाने की होगी। नए फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपके मीत ये गीत आप सुन सकते हैं दिन में 12:30 पर। महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन होगा दिन में 1:30 पर। इसमें आज के गोट में चर्चा होगी खाद्य सुरक्षा ओ हमर जिम्मेदारी। इस विषय पर क्रम सुर सरिता में सुनेगा फरमाइशी लोकगीत। चर्चा होगी स्कूल खुले के पहले तैयारी, पर्यावरण संरक्षण और महिला मन की जिम्मेदारी और अच्छा स्वास्थ्य पर योग। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट आप सुन सकते हैं शाम 5:00। युवाणी कार्यक्रम होगा शाम 5:10 पर। इसमें सुनेगा अपन गोट में शिक्षा के निर्णय खुद ले लो। साथ ही क्रम होगा आप मन की चिट्ठी और माटी के गीत। चौपाल कार्यक्रम होगा शाम 7:21 पर। इसमें आज की बात में चर्चा होगी खेती में प्लास्टिक प्रदूषण के प्रभाव। किसान वाणी में आज की सलाह में सुनेगा घर के छत में जैविक विधि ले सब्जी एवं फल उत्पादन। इस विषय पर श्रीमती पुष्पा साहू की सलाह। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। समाचार अब हम दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुजरात राज्यस्य सूरत नगरे 18,000 करोड़ रुपयाधिक मूल्यानां मार्ग विद्युतः अथ च औद्योगिक विकास परियोजनानां शुभारंभं विहितवान्। सः आदौ हजीरा क्षेत्रं गत्वा औद्योगिकाधारभूत संरचना कार्याणां समीक्षां विहितवान्, सहैव जनसभामपि संबोधितवान्। अनन्तरं प्रधानमंत्री दमन नगरं समागच्छत्, यत्र प्रायः 2,970 करोड़ रुपयपरिमितानां विविध विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च विहितवान्। अवधेयास्पदं वर्तते यत् एताभिः परियोजनाभिः क्षेत्रस्य विकासः, आजीविका निर्माणानि तथा जनसुविधानां वृद्धयः च भविष्यन्ति। सीबीएसई इति केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा अंक सत्यापनार्थं सहैव पुनर्मूल्यांकनार्थं आवेदन प्रस्तुतेः अन्तिमा तिथिः जून मासस्य 7 दिनांकपर्यन्तं वर्धिता। सामाजिक अंतर्जालीय पटले एकेन संदेशेन परिषदा प्रख्यापितं यत् छात्राः इदानीं रविवासरस्य मध्य रात्रिं यावत् स्व आवेदनानि प्रस्तोतुं शक्नुवन्ति। सीबीएसई परिषदा प्रोदीरितं यत् छात्र हितं मनसि निधाय आवेदन प्रक्रियां पूरयितुं छात्रेभ्यः अतिरिक्त समय प्रदानाय एषः निर्णयः स्वीकृतः। एतस्मात् पूर्वम् आवेदनस्य अन्तिमा तिथिः अस्य मासस्य 6 दिनांकं यावदासीत्। परिषदा सर्वेभ्यः योग्य छात्रेभ्यः परामृष्टं यत् ते निर्धारित समये एव स्व आवेदन प्रक्रियां सम्पादयन्तु। केन्द्रीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी अघोषयत् यत् अंडमान द्वीप समूहस्य पूर्व समुद्रीय तटात् प्रायः 15 किलोमीटर दूरे श्री विजयपुरम त्रिक्षेत्रे प्राकृतिक गैस भण्डारः अन्विष्टः। एकस्मिन् सामाजिक अन्तर्जालीय पटले एकेन संदेशेन श्री पुरी प्रख्यापितवान् यत् एतत् अन्वेषणं अंडमान समुद्रस्य विशाल ऊर्जा क्षमतां पुनः प्रमाणीकरोति। सहैव अस्मिन् क्षेत्रे प्रचल्यमानस्य गवेषणाभियानस्य एकाम् अपरां सफलतां च सूचयति। सः अकथयत् यत् ऑयल इंडिया इति संस्था सम्प्रति गैस द्रव्यस्य संरचनां तथा च तस्य ऊष्मीयमानं मूल्यांकितुं गैस सैम्पलिंग इति प्रतिचयनस्य कार्यं करोति। अन्ताराष्ट्रिय पर्यावरण दिवसावसरे श्रीपुरी महोदयेन नवदिल्ल्यां फ्लेक्स इंधन वाहनेभ्यः E85 इंधनस्य शुभारंभो विहितः। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः ह्यः अब्रवीत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः आर्थिक परिष्काराणां लक्ष्यस्य अन्तर्गतं

0: भारतस्य विकासयात्रा देशस्य आर्थिकसमृद्धिम् अविरतं वर्धयति। अस्मिन् आर्थिकवर्षे पञ्जीकृतं 7.7% GDP विकासं निर्दिश्य श्रीशाहः प्रावोचत् यत् एषा उपलब्धिः गत 12 वर्षेषु भारतस्य अर्थव्यवस्थया सुदृढतां प्रकटयति। अथ च क्रिकेट क्रीडायां भारत अफगानिस्तान दलयोर्मध्ये स्पर्धा अद्य न्यू चंडीगढ़स्य मुलानपुर स्थिते महाराजा यादवेन्द्र सिंह अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडांगणे आरप्स्यते। अस्यां स्पर्धायां शुभमन गिलः भारतीय दलस्य नेतृत्वं विधास्यति। क्रीडेयं भारतीय समयानुसारं प्रातः 9:30 आरप्स्यते। पुरुषाणाम् अंडर 18 इति आ 18 एशिया कप हॉकी प्रतियोगितायाः उपांत्य स्पर्धायां भारतेन पाकिस्तान दलं 5-3 अंतरालेन पराजितम्। अपरतः महिलानां आ 18 एशिया कप प्रतियोगितायाः उपांत्य स्पर्धायां चीन देशेन भारतीय दलं पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की दर से बढ़ी है। दमण में कल 2,970 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर आगे बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
2: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी, सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 50 गीगावाट अकेले गुजरात की है। वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है, जबकि 2024-25 के लिए इसका संशोधित अनुमान 299 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमरीका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमरीका से 3,567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना का कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया की विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और श्री सुगियोनो कल नई

0: दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया यह अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है। मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7,00,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। एशिया कप अंडर-18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मिगाहारा में कल सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत की अंडर-18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर।

श्रोताओं, दक्षिण पश्चिम मानसून केरल पहुंच चुका है। छत्तीसगढ़ में ये लगभग 12 जून तक पहुंच जाएगा। महीनों से प्यासी धरती को अब जल की बूंदों से तृप्त होने का अवसर मिलेगा। वैसे प्री मानसून भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में हल्की बारिश का कारण बना है, पर अब जल्दी से ही सारा छत्तीसगढ़ वर्षा ऋतु का आनंद लेगा। पत्तों पर पड़ी बारिश की बूंदें कहती हैं, हमारे प्यार की उम्र इतनी कम क्यों होती है? पड़े रहना चाहती हैं हम पत्तियों की बाहों में, मोहब्बत के आगोश में, मगर ये कमबख्त हवाएं हमेशा हमसे खफा ही रहती हैं। हवाएं बदल गई हैं इस तरह जमाने की, दुआएं मांग रहा हूं होश में आने की।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय,
1: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
2: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 सालों से निरंतर सेवा में
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
3: श्रोताओं, छत्तीसगढ़ के घरों में प्रधानमंत्री सौर्य घर मुफ्त बिजली योजना के कारण सूर्य ऊर्जा से चलित घरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इस योजना के अनुसार 3 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम पर केंद्र सरकार द्वारा लागत का लगभग 40% हिस्सा सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। सोलर पैनल लगाने के लिए 7% की शुरुआती ब्याज दर पर आसान लोन भी उपलब्ध है। इससे प्रतिमाह 300 यूनिट तक बिजली बचाई जा सकती है। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो पीएम सूर्य घर की आधिकारिक पोर्टल पर जाएं, अपने राज्य और बिजली वितरण कंपनी को चुनें, अपना बिजली उपभोक्ता नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल दर्ज करें। लॉगिन करने के बाद रूफटॉप सोलर एप्लीकेशन फॉर्म भरें और सबमिट करें। श्रोताओं, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राज्य को महीने भर के सोलर अभियान के तहत सबसे ज्यादा वेंडर पंजीयन श्रेणी में देश में दूसरा स्थान मिला है। केंद्र सरकार का फोकस अब घरों की छतों पर सौर संयंत्र लगाने की गति बढ़ाने पर है। तो श्रोताओं, अगर आप भी बिजली का खर्च कम करना चाहते हैं तो अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाएं। और जब सूरज की बात चली है तो ये गीत कैसा रहेगा।

श्रोताओ, हमारे पास एक सूचना शिक्षा विभाग की है। छत्तीसगढ़ बोर्ड की 10वीं और 12वीं की मुख्य परीक्षा में फेल होने वाले और कम अंक पाने वाले छात्रों के लिए जुलाई में अवसर परीक्षा होगी। जो छात्र मुख्य परीक्षा में सफल नहीं हो पाए थे या अंकों में सुधार चाहते हैं, वे इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। यदि परीक्षा अवधि के दौरान शासन द्वारा कोई सार्वजनिक या स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है तो भी परीक्षाएं यथावत संपन्न होंगी। 12वीं की परीक्षाएं 8 जुलाई से और 10वीं की परीक्षाएं 9 जुलाई से शुरू होंगी। दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक होगी। 10वीं की परीक्षा का शेड्यूल, जिसमें गणित का पेपर 9 जुलाई को होगा, हिंदी का पेपर 11 जुलाई को, अंग्रेजी 14 जुलाई, व्यावसायिक पाठ्यक्रम 15 जुलाई, विज्ञान 16 जुलाई, सामाजिक विज्ञान 18 जुलाई, संस्कृत 20 जुलाई और संगीत और ड्राइंग की परीक्षा 21 जुलाई को होगी। इसी तरह 12वीं बोर्ड के लिए हिंदी की परीक्षा 8 जुलाई को, अंग्रेजी की परीक्षा 10 जुलाई को, संस्कृत 11 जुलाई, इतिहास 13 जुलाई, क्षेत्रीय भाषाएं 14 जुलाई, भूगोल भौतिक शास्त्र 15 जुलाई, 16 जुलाई को समाजशास्त्र की परीक्षा, 17 जुलाई को राजनीति विज्ञान केमिस्ट्री और अकाउंट की परीक्षा, 18 जुलाई को मनोविज्ञान की परीक्षा, 20 जुलाई को रिटेल मार्केटिंग आईटी और हेल्थ केयर, 21 जुलाई को गणित कंप्यूटर एप्लीकेशन और भारतीय संगीत की परीक्षा,

22 जुलाई को जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र और पशुपालन इनकी परीक्षाएं होंगी। वे विद्यार्थी जो इस परीक्षा में बैठने वाले हैं, अभी से तैयारी तेजी से शुरू कर दीजिए। वैसे श्रोताओं, परीक्षा की घड़ी जीवन में कई बार आती है, सिर्फ विद्यार्थियों के जीवन में ही नहीं बल्कि सभी के जीवन में। इससे घबराना नहीं चाहिए, इसे एक अवसर के रूप में देखें। बस फिलहाल बच्चों के लिए ये गीत।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से इस समय आप सुन रहे हैं सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से जारी है सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। श्रोताओं, अब एक सूचना राशन कार्ड के संबंध में। राशन कार्ड बनवाने या उसमें किसी सदस्य का नाम जुड़वाने या हटाने के लिए अब लोगों को नगर निगम, जनपद पंचायत या जिला कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राज्य सरकार ने राशन कार्ड से जुड़ी सभी सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है। अब नए राशन कार्ड के आवेदन से लेकर संशोधन तक की पूरी प्रक्रिया सेवा सेतु पोर्टल के जरिए होगी। छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी चिप्स ने यह सुविधा सेवा सेतु पोर्टल पर शुरू की है। इसके जरिए अब आप घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से आवेदन भर सकते हैं। जिन लोगों के पास ऑनलाइन सुविधा नहीं है, वे लोक सेवा केंद्रों, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और जनपद पंचायत में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब राशन कार्ड के लिए ऑफलाइन आवेदन पत्र नहीं भरे जाएंगे। अब बार बार कतार में लगे रहने की दिक्कत नहीं रहेगी, साथ ही सरकार हर आवेदन की ट्रैकिंग भी कर सकेगी। अत्यंत गरीब परिवार, विशेष पिछड़ी जनजातियां, भूमिहीन मजदूर, विधवा और अनाथ बच्चों को अंत्योदय कार्ड दिए जाते हैं। बीपीएल परिवारों को प्राथमिकता कार्ड, बेसहारा परित्यक्ता और विधवा को निराश्रित कार्ड एवं अन्य पात्र परिवारों को एपीएल कार्ड मिलेगा। तो श्रोताओं, अगर आप राशन कार्ड बनवाना चाह रहे हैं तो ध्यान रहे, अब सिर्फ ये ऑनलाइन ही बनेगा। मोबाइल और कंप्यूटर के कारण हमारी जिंदगी आसान हो गई है, पर ध्यान रहे, इसका ज्यादा दुरुपयोग मत हो। अगर दुरुपयोग ज्यादा होगा तो ये दिन भर बजते रहेगा, जैसे इस गीत में।

श्रोताओं, प्रसिद्ध अभिनेता और पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त सुनील दत्त जी की आज जयंती है। इस अवसर पर हम उन्हें नमन करते हैं। आइए उनके फिल्मी और राजनीतिक कैरियर को जानें। सुनील दत्त जी का जन्म 6 जून 1929 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में खुर्द में हुआ था। इनका असली नाम बलराज दत्त था। ये भारतीय फिल्मों के अभिनेता, निर्माता और निर्देशक भी थे। राजनीति में वे सांसद रहे और खेल एवं युवा मामलों के कैबिनेट मंत्री भी रहे। बचपन में ही सुनील दत्त का परिवार पाकिस्तान से भारत आ गया। अपने कैरियर की शुरुआत में उन्होंने रेडियो सिलोन पर उद्घोषक की नौकरी कर ली। वहां वे बहुत लोकप्रिय हुए। इसके बाद इन्होंने हिंदी फिल्में करने की ठानी और फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म से अपनी पहली पारी खेली। 1957 में बनी फिल्म मदर इंडिया ने इन्हें रातों रात स्टार बना दिया। डकैतों के जीवन पर बनी फिल्म मुझे जीने दो में उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त हुआ। फिल्म खानदान में उन्हें फिर से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1958 में उन्होंने अभिनेत्री नरगिस से विवाह किया। इनकी प्रमुख फिल्में हैं साधना, सुजाता, गुमराह, वक्त, खानदान, पड़ोसन और हमराज। आज सुनील दत्त जी हमारे बीच

0: हैं, पर उनकी फिल्में और अभिनय में वे आज भी जीवित हैं। आज का 10:30 का चित्रपट संगीत उनकी फिल्मों पर केंद्रित है। फिलहाल उनकी फिल्म का ये गीत सुन लेते हैं।
1: अरे है ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला

श्रोताओं, देश की आबादी के सटीक आंकड़े जुटाने के लिए सरकार समय समय पर जनगणना कराती है। इस समय भी पूरे देश में जनगणना हो रही है। अब इसमें भी कुछ लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं। वे स्वयं को सरकारी अधिकारी बताकर लोगों के घरों में प्रवेश कर रहे हैं या फोन कॉल के जरिए धोखाधड़ी कर रहे हैं। वे लोगों से ऐसी संवेदनशील जानकारी मांग रहे हैं जिसका जनगणना से कोई लेना देना नहीं होता। इस प्रकार कुछ लोग वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं, इसलिए इस बारे में आपको जागरूक करना जरूरी है। जनगणना के नाम पर ठग आपसे किन किन चीजों के माध्यम से ठगी कर सकते हैं, ये हम आपको बतलाते हैं। आपको फोन कॉल या मैसेज किया जा सकता है। जनगणना अधिकारी बनकर वो आपसे जनगणना डेटा अपडेट करेगा, ऐसा कहकर वेरिफिकेशन के नाम पर वो आपसे ओटीपी मांग सकता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके खाते से पैसे गायब हो सकते हैं। ठग आपको जनगणना के नाम पर कोई ऐप डाउनलोड करने कहेगा या संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने कहेगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो आसानी से आपका फोन हैक कर लेगा। सोशल मीडिया में भी इनाम या अनिवार्यता का लालच देकर आपका डेटा चोरी किया जा सकता है। अतः हम आपको जागरूक कर रहे हैं कि आप ये जांच कर ले कि जनगणना अधिकारी के पास सरकार द्वारा जारी वैध फोटो पहचान पत्र है या नहीं, साथ में विभाग की मुहर और हस्ताक्षर भी देखें। ध्यान रहे, जनगणना अधिकारी अक्सर समूह में आते हैं, उनके पास जनगणना से जुड़े सरकार

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय।
1: आंखी के जम्मू प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
2: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 बच्चन ले सवलग सेवा माँ।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
3: श्रोताओं, अब एक सूचना सेकेंड हैंड वाहनों का व्यवसाय करने वाले व्यापारियों के लिए। छत्तीसगढ़ सरकार सेकेंड हैंड वाहनों की खरीद बिक्री करने वाले डीलर्स के लिए नियम कड़े करने जा रही है। इसके तहत वाहन श्रेणी के अनुसार 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक बैंक गारंटी जमा करना होगा। साथ ही हर वाहन का ऑनलाइन रिकॉर्ड भी रखना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है और बैंक गारंटी भी जब्त की जा सकती है। नए नियम के तहत अब कोई भी डीलर बिना रिकॉर्ड के वाहन अपने पास नहीं रख सकेगा। वाहन प्राप्त होते ही उसी दिन सरकारी पोर्टल पर उसकी ऑनलाइन प्रविष्टि करना अनिवार्य होगा। वाहन मालिक से वाहन लेने और वापस करने दोनों की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करानी होगी। जिसके डिजिटल पावती आपको तत्काल जारी की जाएगी। डीलर्स को अपने स्टॉल में मौजूद सभी वाहनों को डिजिटल रिकॉर्ड अपडेट रखना होगा। साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि वाहन के दस्तावेज वैध हो, टैक्स और देनदारियां जमा हो और किसी प्रकार का कानूनी विवाद लंबित ना हो। तो श्रोताओं, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। ग्राहकों को ये फायदा होगा कि सेकेंड हैंड गाड़ी में धोखाधड़ी पर अंकुश लगेगा, दस्तावेजों की प्रामाणिकता सुनिश्चित होगी, ग्राहक संतुष्ट रहेंगे और अपराध या वाहन के गलत इस्तेमाल की स्थिति में ट्रैकिंग करना आसान रहेगा। वैसे श्रोताओं, वाहन नया हो या पुराना, चलाना संभल कर चाहिए, वरना दुर्घटना हो सकती है।

श्रोताओं, जाते जाते एक और छोटी सी जानकारी। मौसम का संक्रमण काल आने वाला है, गर्मी जाने वाली है और बरसात आने वाली है। इस दौरान होने वाली बीमारियों जैसे वायरल बुखार, उल्टी दस्त को हल्की में ना लें, डॉक्टर की सलाह लें और अपना ख्याल रखें। जाते जाते ये गीत।

0: सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8 बजने को है समाचार प्रभात, अब हम दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। मौसम विभाग ने 9 जून तक केरल के उत्तरी जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
4: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
3: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
4: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
3: इससे पहले श्री मोदी ने सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 250 गीगावाट में गुजरात का योगदान 50 गीगावाट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। एक रिपोर्ट।
5: नई व्यवस्था के तहत जनरल रूट से निवेश करने वाले FPI को अधिक लचीलापन मिलेगा क्योंकि कुछ निवेश संबंधी प्रतिबंध हटाए गए हैं। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋणों में निवेश के लिए लागू जनरल और लॉन्ग टर्म श्रेणियों को मिलाकर एक एकीकृत निवेश सीमा भी निर्धारित की है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही के लिए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश सीमा 4,62,490 करोड़ और दूसरी छमाही के लिए 4,77,006 करोड़ तय की गई है। राज्य विकास ऋणों के लिए ये सीमा पहली छमाही में 1,53,043 करोड़ और दूसरी छमाही में 1,64,242 करोड़ निर्धारित की गई है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
3: वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया ये अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है।
6: मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7,00,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1,50,000 से अधिक प्रतिभोगियों को उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने ये भी बताया कि किसानों को जैविक और वैकल्पिक पोषक तत्वों के उपयोग की जानकारी देने के लिए 8,850 से अधिक व्यावहारिक प्रदर्शन भी आयोजित किए गए हैं। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
3: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। 3 दिन की भारत यात्रा पर कल श्री खनाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ये यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी।
7: With Nepal, we have an expansive agenda.
8: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
7: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
9: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
10: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
9: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के खोखले बयान और झूठे दावे इस मूलभूत वास्तविकता को नहीं बदल सकते।
11: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
3: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। भारतीय शांतिदूत मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने प्रतिष्ठित 2025 संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में भारतीय बटालियन के साथ सेवारत मेजर बराक को संयुक्त राष्ट्र शांति दूतों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। अमरीका की सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर हमला किया है। अमरीका ने कहा है कि क्षेत्रीय समुद्री यातायात को निशाना बनाने वाले ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई। इससे अमरीका और ईरान के बीच रुकी हुई शांति वार्ताओं पर और दबाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
12: ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत रुकी हुई है। ईरान विदेशों में अपनी अरबों डॉलर की परिसंपत्तियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहा है। ईरान के अधिकारी किसी भी अंतरिम समझौते की प्रगति को इन प्रतिबंधों से जोड़ रहे हैं। इस बीच लेबनान में हिजबुल्ला ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले इसराइल और लेबनान सरकार द्वारा स्वीकार किए युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हिजबुल्ला के अनुसार किसी भी समझौते में दक्षिणी लेबनान से इसराइल की सेना की वापसी की बात शामिल होनी चाहिए। हिजबुल्ला ने ब्यूफोर्ट किले के पास इजरायल की सेना पर हमले किए हैं। इस किले को इजरायल की सेना ने हालिया हमले के बाद अपने अधिकार में ले लिया था। ईरान ने हिजबुल्ला के लिए अपने समर्थन की बात दोहराई है। समाचार कक्ष से विनोद की रिपोर्ट के साथ मैं राजेश कुमार मीणा।
3: केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के तीव्र होने के साथ ही मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी जिलों में 9 जून तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मलप्पुरम, कोझिकोड और वायनाड में कल भी रेड अलर्ट रहेगा। अन्य 6 जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानानंद ने अंतिम दौर में जर्मनी की विंसेंट क्रीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। नॉर्वे शतरंज में प्रज्ञानानंद ने विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज से शुरू हो रहा क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इससे पहले 2018 में अफगानिस्तान ने भारत के साथ पहला टेस्ट मैच खेला था। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। गोवा के मडगांव में मैच शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
13: भारत की आर्थिक वृद्धि में बढ़त की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, संकट के बीच भारत की जीडीपी में उछाल, चौथी तिमाही में 7.8% रही। पत्र के अनुसार मजबूत मांग और उत्पादन के कारण रफ्तार तेज रही। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, ये 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत और आर्थिक सुधारों का नतीजा है। पत्र के अनुसार विदेशी पूंजी के लिए टैक्स फ्री राहत तैयार, आरबीआई ने बिना सीमा विदेशी निवेश का दायरा बढ़ाया। देशबंधु के अनुसार लोन महंगे नहीं होंगे और ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। दैनिक भास्कर ने ऐतिहासिक शीर्षक से लिखा है, एआई का ग्लोबल हब बनेंगे हम। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी देश में 3,00,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। 5 गीगावाट क्षमता का डेटा सेंटर बनाएगी एयर ट्रंक। जनसत्ता ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है, अमेरिका के 96 यूनिकॉर्न में भारतीय मूल के उद्यमियों का योगदान, इनमें कृत्रिम मेधा आधारित सर्च इंजन परप्लेक्सिटी भी शामिल। पत्र के अनुसार नव उद्यमों में 59% की स्थापना प्रवासी उद्यमियों ने की। वीर अर्जुन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से लिखा है, मेरे मोदी अच्छे मित्र हैं, व्यापार समझौता हो जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, व्यापार समझौता का पहला चरण जुलाई तक संभव। दैनिक जागरण लिखता है, भारत संग SU-57 बनाने को रूस तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की 5वीं पीढ़ी का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान देने की पेशकश। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, लापरवाह अफसरों पर सीधे FIR। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों को और प्रभावी बनाने का ऐतिहासिक फैसला किया गया। जनसत्ता ने अनदेखी की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि कोई हादसा एक मामूली कोताही का नतीजा हो सकता है, लेकिन अगर वो गलती बनी रही तो उन्हें आपराधिक लापरवाही से कम नहीं माना जा सकता।
3: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग 42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञान आनंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi asserts Indian economy remains exceptionally strong despite global economic crisis. Reserve Bank of India eases regulatory norms for foreign portfolio investors in government securities to attract investment. More than 9.42 lakh farmers to join Khet Bachao Abhiyan for balanced fertilizer use and sustainable farming. India slams Pakistan for abusing its temporary membership of UN Security Council to peddle false narratives about Jammu and Kashmir. IMD forecasts extremely heavy rainfall in northern districts of Keralam until June 9th. And Indian Grandmaster R. Pragyanan scripts history, becomes first Indian to win Norway chess title. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has asserted that the foundation of the Indian economy remains exceptionally strong, with the nation recording a robust 7.7% growth in the fiscal year 2025-26 despite a global economic crisis. Addressing a large gathering after launching a series of developmental projects worth around 2,970 crore rupees in Daman last evening, the Prime Minister noted that India continues to be among the fastest growing economies in the world. He assured the citizens that the country will forge ahead with its reform express while prioritizing massive infrastructure development and welfare schemes for the poor.
4: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
6: Earlier, Mr. Modi launched various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat. Addressing the gathering, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts, accounting for a crucial fifth of the nation's green energy share. He added that the state is poised to play a massive role in shifting from solar energy to green hydrogen and green ammonia, which is essential for achieving energy self-reliance.
4: दुनिया अब हरित युग की तरफ, ग्रीन फ्यूचर की तरफ बहुत ही सावधान हो चुकी है। भारत भी ग्रीन ग्रोथ पर बहुत अधिक काम कर रहा है और इसमें भी गुजरात राज्य है जिसने इस शताब्दी के प्रारंभ में ही सरकार में क्लाइमेट चेंज का अलग डिपार्टमेंट बनाया था और गुजरात के चारणका गांव में भारत का पहला सोलर पार्क भी बनाया गया था।
6: Speaking on the transformation of Surat, the Prime Minister praised the city's spirit and its transition into a green city. He lauded Surat's circular water economy model and the Waste to Wealth initiative, which has turned into a mass movement over the last 12 years. The Reserve Bank of India has simplified the rules governing investments by foreign portfolio investors or FPIs in government securities. The revised framework is aimed at making investments easier and reducing compliance requirements for foreign investors. More from our Mumbai correspondent.
5: Under the revised framework, FPIs investing through the general route will get greater flexibility as certain investment restrictions have been removed. The RBI has also merged the existing general and long-term investment categories into a single limit for government securities and state government securities. For financial year 26-27, the investment limit for central government securities has been fixed at 4,62,490 crore for the first half of the year and 4,60,000 77,006 crore for the second half. For state government securities, the corresponding limits have been set at 1,53,043 crore and 1,64,242 crore respectively. The revised directions have come into effect immediately. Ankita Apte, Akashvani News, Mumbai.
6: India's economy has maintained a strong momentum in 2025-26 with real gross domestic product or GDP estimated to grow by 7.7% in comparison to 7.1% in 2024-25. The Ministry of Statistics and Program Implementation yesterday released the provisional estimates of annual GDP for the financial year 2025-26 and quarterly estimates of January to March this year. It said the primary sector has observed 3.2% growth rate, mainly driven by the performance of agriculture and fishery sectors. The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare said that more than 9.42 lakh farmers across the country have joined the Khet Bachao Abhiyan as of June, transforming the campaign for balanced fertilizer use into a nationwide mass movement. The campaign, launched by the Union Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, aims to promote balanced fertilizer application, conserve soil fertility, and encourage sustainable farming practices. A report.
14: The Agriculture Ministry informed that over 17,800 awareness programs have been organized so far under the campaign, reaching nearly 6.98 lakh farmers. In addition, around 3,700 training programs have been conducted, providing information on balanced fertilizer use, soil health management, and scientific farming techniques to more than 1.57 lakh participants. The ministry said that over 8,850 field demonstrations have also been organized to provide practical exposure to farmers on the use of organic and alternative nutrient sources, as well as integrated nutrient management techniques. These demonstrations are aimed at improving long-term soil productivity and reducing excessive dependence on chemical fertilizers. With Akshit and Rohan's report, Jigyasa Pandey for Akashvani News, Delhi.
6: Central Board of Secondary Education or CBSE has extended the last date for submission of applications for verification of marks and re-evaluation till 7th of June. In a social media post, the board said students can now submit their applications till Sunday midnight. CBSE said that the decision has been taken in the interest of students to provide them with additional time to complete the application process. The earlier deadline for submission of applications was 6th of this month. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. India has said that Pakistan is abusing its temporary membership of the UN Security Council to peddle false narratives about Jammu and Kashmir, and it should be mindful of its responsibilities. India's permanent representative P. Harish said that empty rhetoric and hollow claims by Pakistan would not change this fundamental reality that Jammu and Kashmir was, is and will always remain an integral and inalienable part of India.
15: I'd like to remind Pakistan that being a member of the UN Security Council is a huge responsibility. It's not a forum for peddling biased and false narratives. I'd like to make it loud and clear. Jammu and Kashmir was, is and will always remain an integral and inalienable part of India. Any assertions to the contrary are baseless, devoid of and inconsistent with historical facts. Empty rhetoric and hollow claims by Pakistan would not change this fundamental reality. In the interest of time or the wider UN membership, I would not delve any further into this.
6: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will hold talks with Nepal Foreign Affairs Minister Shishir Khanal in New Delhi today. The Foreign Affairs Ministry of Nepal had said that during the meeting, both sides will discuss matters of mutual interest with a view to enhancing cooperation across key areas, including trade, investment, connectivity, energy and people-to-people ties. Mr. Khanal is currently on a three-day visit to India. During the weekly press briefing, spokesperson for the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, said the visit will help further strengthen the special partnership between India and Nepal.
7: With Nepal, we have an expansive agenda from development cooperation to people ties to trade and investment. So all these ties together will be discussed when the two foreign ministers meet. But on our side, we are keen to further strengthen this multifaceted

0: श्रोताओ नमस्कार। डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओ, जब हम अपने शरीर के अंगों की बात करते हैं तो हमारा जो सिर होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसमें लगने वाले आघात, चोट से कभी कभी हमें काफ़ी तकलीफ होती है और सभी लोगों को सलाह दी जाती है कि अपने सिर पे लगने वाले चोटों से हमेशा सावधान रहें। और श्रोताओं, कुछ बीमारियों का कभी सामना करना पड़ता है जिनका संबंध सीधे मस्तिष्क या हमारे सिर से होता है, और कुछ बीमारियां बाहरी तौर पे होती हैं, कुछ अंदरूनी तौर पे। तो मस्तिष्क से संबंधित कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, उनके क्या कारण हो सकते हैं, उनके लक्षण क्या है और उनके क्या उपचार हो सकते हैं, इस बारे में जानकारी के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर उमेश कुमार चंद्रा जी को, जो एक मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ हैं। तो डॉक्टर उमेश जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी धन्यवाद। मैं डॉक्टर उमेश कुमार चंद्रा, मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ, रायपुर।
0: तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो कार्यक्रम में हम ये जानना चाहेंगे कि जब हम अपने मस्तिष्क की बात करते हैं तो इनमें कौन कौन सी बीमारी जो है प्रमुख तौर पर देखी जा सकती है।
1: जहाँ तक मस्तिष्क की बात है, बहुत ही वृहद संरचना होती है शरीर की, बहुत बड़ा अंग होता है मस्तिष्क, लेके पूरा स्पाइन तक, साथ में हाथ और पैरों में फैले हुए नसों तक का पूरी बीमारी मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ के अंदर कवर होती है। मस्तिष्क रोग में मुख्य रूप से सबसे कॉमन सामान्य रूप से जो समाज में फैली है बीमारी, उसमें से एक है लकवा या स्ट्रोक। दूसरा प्रमुख बीमारी इसके अंदर आता है वो है फिट्स या एपिलेप्सी, या जिसको दूसरी भाषा में मिर्गी बोला जाता है। तीसरा प्रमुख कारण है सिर दर्द या मस्तिष्क के अंदर दर्द। इसके अंदर बहुत कॉमनली है माइग्रेन हेडेक है। मुख्य बीमारी के रूप में बोलूं तो हाथ पैर में सुन्नता या झुनझुनी, सर्वाइकल या गले में दर्द, और उसके बाद अगला है कमर दर्द। ये प्रमुख मुख्य रूप से समस्याएं हैं जो मस्तिष्क रोग के अंदर आती हैं, और बहुत सारे टाइप से होते हैं समस्याएं, लेकिन ये जो 5-6 हैं ये मुख्य रूप से समाज में बृहद रूप से फैला हुआ है।
0: जी जी डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब, एक बहुत ही वृहद रूप में पाया जाने वाला मस्तिष्क से संबंधित रोग है मिर्गी।
1: जी,
0: तो इसके बारे में बताइए कि मिर्गी के दौरे क्या होते हैं।
1: मिर्गी समाज में मतलब प्रमुख रूप से फैला हुआ बीमारी है। ऑलमोस्ट हम बोला जाए कि 600-700 लोगों में एक किसी को मिर्गी या एपिलेप्सी की समस्या हो सकती है। यह बहुत ही कॉमन है, खासकर हमारे इंडिया और छत्तीसगढ़ बेल्ट में बहुत ही कॉमन है। मतलब ये मिर्गी ऐसा समस्या है कि हर गांव जाओ तो कम से कम आपको 8-10 मरीज मिल ही जाएंगे। और इसमें मुख्य रूप से ये होता है, जैसे अचानक से हाथ पैर में अकड़न आना, हाथ पैर का मुड़ जाना, चेहरे का ऊपर की ओर जाना, आंखें ऊपर चले जाना, मुंह को चबा देना और साथ साथ मुंह से खर्राटे की आवाज़ आना और मुंह से झाग आना। ये सब स्थिति होने के बाद मरीज को कुछ टाइम के लिए बेहोशी आता है और बेहोश होने के बाद मरीज गिर जाता है।
0: जी,
1: ये स्थिति लगभग 1-4-5 मिनट तक ही बनी रह सकती है। ये समाज में जो फैला मुख्य रूप से जो अपन देख पाते हैं ये वो समस्याएं हैं। इसके और दूसरी समस्याएं भी होती हैं जो मिर्गी का ही रूप है, लेकिन इतना वृहद रूप से शरीर में सिम्टम नहीं दिखाता। उनमें एक है कि अचानक से कुछ क्षण के लिए कोई एक हाथ पैर कमजोर हो जाना, या फिर उस हाथ या पैर में कुछ टाइम के लिए एबनॉर्मल मोमेंट्स होना, अपने आप हिलना। और तीसरा एक टाइप होता है जिसमें कि कुछ टाइम के लिए अपन अपने रिश्तेदार या फिर दोस्त यार किसी को पहचान नहीं पाते। ये कुछ होता है ओनली 10-15 सेकंड्स के लिए। अचानक से हम जिस इन्वायरमेंट में हैं, जिस माहौल में हैं, उससे अपन कट ऑफ हो जाते हैं।
0: जी,
1: ये कुछ कॉमन समस्याएं हैं। एपिलेप्सी जो एपिलेप्सी के अंदर आती हैं, एपिलेप्सी के प्रकार हैं।
0: जी जी जी, तो डॉक्टर साहब, जब हम मिर्गी की बात करते हैं तो इसके क्या प्रमुख कारण हो सकते हैं।
1: मिर्गी के लगभग बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इनमें से एक तो है, जैसे किसी मरीज को लकवा हो गया, लकवा होने के बाद ब्रेन रिकवर कर रहा है तो सीजर आ सकता है या फिर मिर्गी आ सकता है। दूसरा, एक्सीडेंट के बाद में जो चोट लगती है सिर में, उसके बाद वो स्कार बनता है, वहाँ से मिर्गी के दौरे आ सकते हैं। और जैसे ब्रेन में टीबी हो गया, इन्फेक्शन हो गया, ये एक प्रमुख कारण है उसका भी। कुछ कंडीशन में जेनेटिक्स में होता है, जेनेटिकल कंडीशन है, फैमिली में चलती आती रहती है, ये बच्चों में ज़्यादातर होता है और वयस्क लोगों में खासकर एक्वायर्ड या फिर जो हम बाद में प्राप्त करते हैं वो कॉमन कारण होता है। जैसे मैंने बताया इस लकवा हो गया, कोई चोट लग गया, और आजकल प्रमुख रूप से देखा जा रहा है जैसे यंगस्टर्स में देखते हैं खासकर कि नशे का प्रचलन बढ़ रहा है, अल्कोहल कंजप्शन बढ़ रहा है, सिगरेट स्मोकिंग बढ़ रहा है, इन सबसे भी मिर्गी के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे जो मरीज या फिर जो इंसान अल्कोहल के प्रति डिपेंडेंट हो गया है, उसको लंबे टाइम तक अल्कोहल का सेवन कर रहा है, लंबे टाइम तक स्मोकिंग या फिर टोबैको का सेवन कर रहा है, तो बॉडी उसके अभ्यस्त हो गया, हमारा शरीर उसके अभ्यस्त हो चुका है। जब हम अचानक से कुछ दिन के लिए अधिक मात्रा में लिए, फिर अचानक से एक दिन कम कर दिए, तो ये एकदम से दौरा आने का कारण बन सकता है। तो खासकर यंगस्टर्स में जो अधिकतम टाइम जो कंजप्शन कर रहे हैं अल्कोहल का, निकोटीन, स्मोकिंग कर रहे हैं, उनमें मिर्गी आने के चांसेस और ज़्यादा हो जाती हैं।
0: जी, तो डॉक्टर साहब, ये जो मिर्गी के दौरे होते हैं, कभी कभी हम देखते हैं कि बिना किसी चोट के भी, जैसे कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं हो, उन छोटी उम्र के बच्चों को भी देखने को मिलती है, तो इसका कारण क्या हो सकता है?
1: जनरली ऐसे में ब्रेन के अंदर ही अंदरूनी स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं। कई बार जो बच्चा पैदा होता है उसके उस टाइम जब पैदा हुआ तब ऑक्सीजन की कमी हो गई, ग्लूकोज कम हो गया, या फिर ब्रेन का इन्फेक्शन हो गया, तो या फिर बच्चों में कॉमनली देखा जाता है कि बुखार आया, तेज बुखार आया, 103-104 डिग्री फीवर आया है, उसके बाद में उसको झटका आ गया। तो बच्चों में ये बहुत कॉमन रहता है और उसको बोलते हैं अपन फेब्राइल सीजर। तो बच्चों में बिना कुछ स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी के भी सीजर या दौरे आ सकते हैं। कुछ कारण रहते हैं जो जन्मजात ब्रेन में बनावट के कारण भी, नॉर्मल बनावट है या फिर थोड़ा डिफेक्ट है, तो उस कारण से भी वो सीजर का एक कारण बन सकता है। लेकिन मुख्य रूप से बच्चों में या फिर मिडिल एज के लोगों में इसका कारण अधिकांश समय पता नहीं चल पाता। लेकिन फिर भी हमको उसको आगे इन्वेस्टिगेशन करना है, आगे जाँच करना है, इसके लिए हम उनको प्रमोट करते हैं।
0: डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी थी ये, और समाज में मिर्गी के लिए कई कई तरह की बातें होती हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले हम चाहेंगे कि आपकी पसंद का एक गीत हम इस कार्यक्रम में सुनें।
1: जैसे मेरे फेवरेट सॉन्ग तो आशा ताई द्वारा गाया हुआ गाना है, उनमें से एक मुझे बहुत ही पसंद आता है, वो है इन आँखों की मस्ती।
0: तो बहुत अच्छा गीत है। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में आइए सुनते हैं डॉक्टर साहब की पसंद का ये गीत।

0: श्रोताओं, डॉक्टर की सलाहकार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और इस गीत के पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर उमेश कुमार चंद्रा जी से, जो एक मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ हैं, और बात कर रहे थे मस्तिष्क के संबंधी कुछ विकारों के बारे में। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि हम इस गीत के पहले बात कर रहे थे, मस्तिष्क में होने वाली एक जो बीमारी है मिर्गी, जिसे एपिलेप्सी कहते हैं, उसके कारण उनके लक्षण क्या होते हैं? तो डॉक्टर साहब, जब हम देखते हैं किसी व्यक्ति को मिर्गी होता है, तो समाज में इसके क्या क्या तथ्य हो सकते हैं?
1: मुख्य रूप से जो जादू टोना वाला पहले भी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, उनके अंदर भी ये अभी भी आता है। अधिकांश लोग को लगता है कि ये कोई बीमारी ना होगी, कोई जादू टोना का प्रभाव है क्या, ऐसा लगता है। और लोग ऐसा मिर्गी के दौरा आते हुए भी

0: लाइक चम्मच है, सॉलिड चीज़ें, उसको मुंह में डाल देते हैं, जिस कारण मरीज को फिजिकल ट्रॉमा या फिर उनके दांतों को चोट लगना, जीभ पे चोट लगना बहुत कॉमन हो जाता है। और एक और होता है इसमें, जब मिर्गी से जो आदमी प्रभावित है उसका जब शादी की उम्र आता है तो सबसे ज़्यादा उसको यहाँ पे चीज़ों को झेलना पड़ता है या फिर सामना करना पड़ता है बोलूँगा। जैसे शादी के टाइम आया, शादी में उसको सामने वाले को उसने बीमारी के बारे में बताया तो सब लोग को ये लगता है कि लाइलाज बीमारी है और ये पता नहीं कब से प्रभावित है, ठीक होगा कि नहीं होगा, आगे जीवन में क्या और प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये सबको देखते हुए उसके लिए बहुत सारा चीज़ों का सामना करना पड़ता है। ऐसे मरीज जो मिर्गी से प्रभावित हैं उनको, तो ऐसे जो मरीज मिर्गी से प्रभावित हैं उनको, वो हमारी तरह नॉर्मल आदमी है, कुछ टाइम के लिए उनके ब्रेन में एक करंट पैदा हो रहा है और वो उसको दौरे आ रहे हैं, कोई लंबी बीमारी है नहीं उसके लिए, कुछ फ्यू मिनट्स या सेकेंड्स के लिए आएगा वो ठीक हो जाएगा। ऐसा तो उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, ये एक टाइप से भ्रांति है जो प्रमुख रूप से समाज में है।
1: यदि कोई व्यक्ति एपिलेप्सी या मिर्गी की बीमारी से पीड़ित है तो हमें किन चीज़ों से उन्हें दूर रखना चाहिए?
0: जैसे अपन देखते हैं कोई मरीज एक रास्ते में चल रहा है, अपना दैनिक कार्य कर रहा है, उस दौरान उसको कभी भी सीजर आ सकते हैं, उसमें कोई दो मत की बात नहीं है। तो मेरा पहला दायित्व तो बनता है उसको प्लेन जगह पे, सुरक्षित जगह पे, जहाँ पे कोई धारदार चीज़ ना हो, कोई उबड़ खाबड़ जगह ना हो, वहाँ पे तुरंत स्विच करना। वहाँ पे ले जाते ही मुझे उनको एक तरफ करवट लेके लेटाना रहता है, लेफ्ट साइड या राइट साइड, ताकि जो मुंह में लार बन रहा है या फिर जो अधिकतम सिक्रीशन आ रहा है मुंह में वो फेफड़े में ना जाए, तो उससे उसका सांस लेने का तरीका ठीक हो जाएगा, एस्पिरेशन जो अपन लार बनता है वो फेफड़े में जाने की संभावनाएं रहती हैं वो कम हो जाती हैं, ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होने का चांस रहता है वो भी बहुत हद तक कम हो जाता है, और जो भी दौरे आते हैं वो लगभग लगभग 80-90% केसेस में कुछ आधा मिनट एक मिनट के अंदर ही शांत हो जाते हैं अपने आप। तो हमको ऐसे मरीजों को बाहर की तौर पे, कि उसको बाहर कोई नुकीली चीज़ से चोट ना लगे, उसके लिए उनको सेफ जगह पे ले जाना रहता है। जैसे कोई पानी वाली जगह पे आ गया किसी को, तो मेरा पहला दायित्व तो है कि उसको तुरंत मैं पानी की जगह से थोड़ा दूर ले जाऊँ, जहाँ पे प्लेन जगह हो, जहाँ पे चोट लगने की संभावनाएं कम हो। आग वाली जगह पे आ गया तो वहाँ से थोड़ा दूर ले जाऊँ, बिकॉज ऐसे मरीज कुछ टाइम के लिए अपना पूरी तरह कंट्रोल खो देते हैं, उनका खुद के बॉडी पर कंट्रोल नहीं रहता, तो उनको पहले अपने सेफ जगह पे शिफ्ट करें।
1: तो डॉक्टर साहब, इसमें जो एक सबसे ज़रूरी बात होती है कि जब कोई रोग होता है तो उसके कुछ ट्रिगर्स होते हैं इसके, जो उसे बढ़ा सकते हैं, तो क्या मिर्गी के भी ऐसे कुछ ट्रिगर्स या
0: हाँ
1: कुछ
0: जी
1: ऐसे
0: जी
1: कारक होते हैं जिनसे इस रोग के बढ़ने की संभावना होती है?
0: मिर्गी के रोग में ट्रिगरिंग फैक्टर बहुत ही बहुत ज़्यादा है, और सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि हम उनको थोड़ा सावधानी बरत के अवॉइड कर सकते हैं। इनमें मुख्य कारण रहता है डॉक्टर द्वारा जो दवाई एडवाइस किया गया है उसको आप फिक्स टाइम पे लीजिए, जिस डोज में बोला गया है उस डोज में लीजिए और फिक्स टाइम पे लीजिए। उससे क्या है, बॉडी में दवाई का लेवल बना रहता है तो आगे मिर्गी आने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। और दूसरा चीज़ ये कि एक ट्रिगरिंग फैक्टर रहता है नींद का कम होना, जो नॉर्मल एडवाइस किया गया नींद है कि अपन रात को टाइम से सोएं और टाइम से उठें, उसमें लगभग 7-8 घंटे का प्रॉपर निद्रा का टाइम रहता है, रात में साउंड स्लीप बोलते हैं, तो अपन 7-8 घंटा प्रॉपर स्लीप लें, दिन में 1 घंटा नैप ले सकते हैं, ये कॉमन हो गया। उसके बाद जनरली अपन जो मिर्गी के पेशेंट हैं उनको सलाह देते हैं कि फास्टिंग अवॉइड करें, खाली पेट ज़्यादा टाइम तक ना रहें, उससे भी मिर्गी ट्रिगर हो सकता है। और तीसरा, अपने पहले भी बात करी, अल्कोहल या फिर स्मोकिंग से भी इसका ट्रिगर होता है।
1: जी डॉक्टर साहब,
0: किसी भी तरह से स्ट्रेस लेते हैं उससे भी अपना ट्रिगर हो सकता है, तो स्ट्रेसफुल कंडीशंस को अवॉइड करना बेहतर रहता है।
1: जी, तो डॉक्टर साहब अगर हम इसके इलाज की बात करें
0: जी,
1: तो इसके क्या इलाज हो सकते हैं और कितने कारगर होते हैं?
0: मिर्गी अभी के समय में लगभग लगभग पूर्ण रूप से मिर्गी को ठीक कर सकते हैं। हमें बेसिक अपने को चाहिए तो मरीज को दवाई के प्रति एडहेरेंट रहना पड़ेगा, प्रॉपर दवाई को टाइम से लेना पड़ेगा, और इसमें मेन इलाज के तौर पे होता है, प्रारंभिक तौर पे होता है मस्तिष्क का इमेजिंग होता है, सीटी स्कैन या फिर एमआरआई करा कर अपन देख सकते हैं पहले कि ब्रेन में कोई घाव तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कुछ और कारण तो नहीं बन रहा जिस कारण से ये दौरे का एक कारण बना हुआ है। एक ईजी नाम की जाँच होती है जिसमें अपन मस्तिष्क की तरंगों का जाँच करते हैं कि कहाँ से दौरा आ रहा है, कहाँ से ये करेंट के

0: एक्टिविटी हो रही है तो ये प्रारंभिक जांच होता है, और बाकी अदर कारण में शुगर हो गया, रूटीन ब्लड टेस्ट हो गया, इनका टेस्ट कर सकते हैं। ये सब आजकल लगभग सभी जगह पे अवेलेबल है। और दूसरी बात है कि अपन इसमें इलाज की बात करते हैं, तो आजकल लगभग लगभग मरीज पूरी तरह ठीक किया जा सकता है अभी कंडीशन में। तो इतनी सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं मार्केट में, लगभग 50-60 तरीके की दवाइयाँ हैं, पुराने ज़माने से लेकर नए ज़माने तक की पूरी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। और अभी की दवाइयाँ बहुत ही पोटेंट हैं मिर्गी को ठीक करने के लिए। अपन टाइम से लें उन दवाइयों को और डॉक्टर के सलाह माने तो मिर्गी से पूर्णतः बचा जा सकता है।
1: जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई है। तो डॉक्टर साहब, हम आप ये जानना चाहेंगे कि ये कोई महिला गर्भवती है और उस समय उस महिला को जो है एपिलेप्सी और मिर्गी की संभावना या बीमारी पहले से है, तो उन्हें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और इसका क्या कोई इफेक्ट बच्चे पर भी पड़ सकता है क्या?
0: जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है अभी के समय में। जैसा मैंने पहले बताया, एपिलेप्सी जनरली यंगस्टर्स को ज़्यादा इफेक्ट करती है, स्टार्टिंग लगभग इसी उम्र में होता है। तो इसका जाहिर सी बात है, जब शादी की उम्र में लड़कियां आती हैं तो उनको उसके शादी के पहले भी काउंसलिंग की जाती है, शादी के बाद भी। उसके बाद जैसे गर्भावस्था की बात आती है कि उस दौरान सीजर आ गया या फिर उससे पहले ही उनको मिर्गी के लक्षण हैं, दवाई चल रहा है, तो मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि यदि आपको पहले से ही मिर्गिया फिट्स की समस्या है, आप दवाई ले रहे हैं, तो डॉक्टर आपके उस कंडीशन को जानते हैं, आप यंग हो, शादी होने वाला है या फिर आप मैरिड हो तो प्रेगनेंसी हो सकता है, तो उसके लिए आपको दवाई उस तरह ही चुनी जाती है पहले से ही, जो कि आपके हेल्थ को और आने वाले बच्चे के हेल्थ को प्रभावित ना करे या फिर कम प्रभावित करें। तो अभी जो मॉडर्न मेडिसिन में जो दवाइयां हैं एपिलेप्सी या फिट की, वो काफ़ी हद तक सुरक्षित हैं और होने वाले बच्चे के लिए ऑलमोस्ट सुटेबल कंडीशन में होती हैं दवाइयाँ। तो आपको घबराने की बात नहीं रहती, बस आपको इतना मानना है कि डॉक्टर ने जो आपको जिस डोज में एडवाइस किया है दवाइयाँ, उस डोज में प्रॉपर तरीके से लेना है और दवाइयों के प्रति लापरवाही नहीं बरतना है। और यदि इसका प्रभाव ऐसा हो सकता है कि आप कोई प्रेग्नेंट हैं या प्रेग्नेंट होने वाली हैं और अचानक से दवाई बंद कर देते हैं, उस दौरान झटका आता है, तो एबॉर्शन का रिस्क ज़्यादा हो जाता है और मदर और बच्चे दोनों को खतरा होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए मैं सलाह दूंगा कि अभी की दवाइयां जो मॉडर्न मेडिसिन में झटके की दवाइयां हैं, वो काफ़ी हद तक सुरक्षित हैं और होने वाले बच्चे को और उनकी मदर को कोई प्रभाव नहीं डालती। तो आपके चिकित्सक जो हैं ऐसे दवाइयों को ही सजेस्ट करेंगे आपको, जो कि आपके हेल्थ और बच्चे के हेल्थ को प्रभावित ना करें। इसलिए दवाइयाँ पूर्ण तरह सुरक्षित हैं, तो टाइम से जैसे आपके डॉक्टर ने सलाह दिया है वैसे लेंगे तो ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा बेनिफिट रहेगा।
1: जी जी जी जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, जब एपिलेप्सी या मिर्गी की बात होती है तो इसमें दवाइयाँ जो लिखी जाती हैं, तो क्या जो पेशेंट है वो दवाइयों को रेगुलर खाए और दवाइयों को इस्तेमाल करे, तो क्या वो पूरी तरह से स्वस्थ हो सकता है?
0: बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जनरली हमारे पास जो भी मरीज आते हैं मिर्गी के, उनका एक सवाल ये रहता है कि मुझे दवाई कब तक चलेगी या फिर मैं दवाई कब तक खाना पड़ेगा। तो ये कंडीशन निर्भर करता है, ब्रेन के कोई बनावटी स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है, ब्रेन में कोई पुरातन घाव तो नहीं है। जनरली जिन मरीजों को अपन इमेजिंग या सीटी एमआरआई में कुछ बड़ा घाव नहीं दिखता है या फिर कुछ ग्रॉस एबनॉर्मलिटीज़ नहीं है, उनमें 2 से 3 दवाइयाँ चलती हैं और ये लगभग लगभग 3 से 5 साल में ऐसे मरीज जनरली ठीक हो जाते हैं। हमको बस एक काम करना है, जो प्रॉपर डोजिंग एडवाइस की गई है उसको टाइम से लेना है और जो स्ट्रेस फैक्टर्स हैं, जो ट्रिगर हैं, उनको अवॉइड करना है। और कुछ ही केसेस रहते हैं जिनमें ग्रॉस स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी है ब्रेन में या फिर पुराना चोट है, स्कार है, 2-3-4 दवाइयों के बाद भी झटका कंट्रोल नहीं आ रहा है। कुछ ऐसे ही मरीज होते हैं जिनकी जो फिट या झटका आने की संभावना है उसको कंट्रोल करने में दिक्कत होती है, लेकिन ऐसे मरीज भी दवाइयों के साथ, जैसे मैंने बताया, दवाइयाँ पूरी तरह सुरक्षित हैं आज के समय की, और आगे हमारे हेल्थ पे साइड इफेक्ट या फिर उनका बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट नहीं रहता है, तो हम इन दवाइयों को लंबे टाइम तक ले सकते हैं, दवाई पूरी तरह सुरक्षित है। तो दवाई के डोज या फिर दवाई के जो नंबर ऑफ टेबलेट्स हैं, कितना टेबलेट चल रहा है, दिन में कितनी बार खा रहे हैं, ये हम डिसाइड ना करें कि दिन में 4-5 दवाई चल रही है, इतना हीवी डोज में हो रहा है, तो डोजिंग डॉक्टर डिसाइड करते हैं, तो वो जानते हैं आपके हेल्थ के बारे में, आपके लिए कितनी दवाइयाँ कितनी मात्रा में सेफ हैं, तो हम उसका कैलकुलेशन ना करें कि दवाई हमारे लिए ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसे मरीज कुछ मान चलो 10-15% केसेस होते हैं जो रिफ्रैक्टरी सीजर्स के पेशेंट रहते हैं, लेकिन जो बोलूँगा 70-80% केसेस हैं ऐसे, एक या दो दवाई से कंट्रोल हो जाता है और अधिकांश केसेस जो हैं वो 5 साल के अंदर में उनको ठीक किया जा सकता है।
1: तो बहुत अच्छी जानकारी है डॉक्टर साहब ये, और जिन भी लोगों को इस तरह की समस्याएँ हैं एपिलेप्सी से संबंधित, वो डॉक्टर साहब की बताई बातों पे ज़रूर गौर करेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। तो डॉक्टर साहब, जब हम एपिलेप्सी के पेशेंट की बात करते हैं तो उन्हें अधिकतर हिदायत दी जाती है कि उन्हें गाड़ी चलाना जो है, कभी कभी लोग मना कर देते हैं कि आप गाड़ी ना चलाएं, आपका जहाँ पे कार्य होता है वहाँ ना जाएं, पानी जहाँ पे होता है वहाँ ना जाएं।
0: हाँ, जैसे मरीज जो इस शुरुआती अवस्था में है, जिनका दौरा कंट्रोल नहीं है और जिनको फ्रीक्वेंट सीजर आ रहे हैं, हम ऐसे मरीजों को जनरली एडवाइस करते हैं ताकि गाड़ी ना चलाएं। दूसरा चीज है, कोई तैराकी जगह है, तालाब है, स्विमिंग पूल है, ऐसे जगह पे ना जाएं, और आग वाली जगह, ऊंचाइयों वाली जगह से बचें। ऐसा हम सलाह इसलिए देते हैं ताकि ये मरीज दौरे के दौरान अपने होश कुछ टाइम के लिए खो देते हैं। पानी के अंदर यदि दौरे आते हैं उनको, आग के आसपास दौरे आते हैं, तो जनरली उनको खतरा ऐसे ही बढ़ जाता है। पानी के अंदर दौरे आ गए तो सांस की दिक्कत, अचानक समूह में पानी जाने, सब समस्याएं आ जाती हैं। आग के पास आ गया तो जलने का खतरा रहेगा, हाइट से गिरने का डर रहेगा, ये सब है। और जनरली जब तक दौरा कंट्रोल नहीं है तो अपन इनको गाड़ी चलाने की सलाह, स्विमिंग की सलाह ऐसे नहीं देते हैं। सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में, जहाँ एक ड्राइवर है जो बहुत सारे लोग को एक साथ ले जा रहा है, बस का ड्राइवर हो गया, कार ड्राइवर हो गया, ट्रेन ड्राइवर, तो ऐसे लोगों में ज़्यादा रिस्क रहता है, तो उसको डेफिनेटली अवॉइड करते हैं। लेकिन जैसे 2-व्हीलर चलाना है, सिंगल ड्राइविंग है, तो दौरा जो है 2-3 साल तक पूरी तरह कंट्रोल है, दवाई पे आप पूरी तरह विश्वास करते हैं, दवाई पूरी तरह ले रहे हैं, आप दवाई लेने के बाद दौरे नहीं आ रहे हैं 2-3 साल तक, तो आप सिंगल हैंड गाड़ी चला सकते हैं, जैसे खुद अपना एक 2-व्हीलर हो गया। और लेकिन आपको जहाँ तक हो सके सावधानी रखनी चाहिए, जो पीछे में एक सहायता के लिए किसी को रख सकते हैं आप, यदि जब आपको लगता है आप प्रॉपर नींद नहीं ले पाए हैं या फिर आपने कोई दवाई डोज मिस कर दी है, तो उस कंडीशन में सलाह दूंगा कि डेफिनेटली आप गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि उस दौरान आपको दौरे आने का रिस्क बढ़ जाता है।
1: जी डॉक्टर साहब, कई ऐसे भी पेशेंट होते हैं एपिलेप्सी से संबंधित जो नशा भी करते हैं, तो ये नशा कितना हानिकारक हो सकता है ऐसे पेशेंट्स के लिए?
0: आजकल जो एपिलेप्सी की दवाइयां हैं काफ़ी हद तक सेफ हैं और इनसे कोई बड़ा साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन यदि कोई मरीज ऑलरेडी एडिक्टेड है दूसरों चीज़ों का, जैसे अल्कोहल हो गया, निकोटीन हो गया या फिर दूसरे तरह के मादक पदार्थ का, तो यदि ऐसे मरीज जो दवाइयां लेते हैं और साथ में बैड हैबिट्स या फिर जो मद्य पदार्थों का यूज़ भी करते हैं, तो इस दौरान उनको दवाइयों का साइड इफेक्ट होने का भी चांस बढ़ जाता है। इसमें आता है कि आप गहरी बेहोशी आना, एबनॉर्मल बिहेवियर आना, लीवर किडनी पे असर आना, ये सब का रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। मरीज जो ऑलरेडी एल्कोहल पे हैं, कई बार उनको नशे के दौरान या फिर जो स्मोकिंग करते हैं उनको उस दौरान में दवाइयों का डोज का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। यदि सेम डोज वो दवाई ले रहे हैं तो प्रभावशाली नहीं हो पाता, या फिर नशे के दौरान वो दवाई मिस करते हैं तो उनको फिट आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और साथ में उनके फिर लाइफ को रिस्क बढ़ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में मैं यंगस्टर्स या यूथ को सलाह दूंगा कि नशे से बचें, ताकि इसका इफेक्ट जो आपके बॉडी पे कम हो, साथ में आपकी जो मेडिसिन भी रेगुलर चलते रहें और आपका जो एपिलेप्सी है, बीमारी है, वो आपके कंट्रोल में रहे। जैसे जैसे अपन अल्कोहल या फिर निकोटीन के सेवन को बढ़ाते जाते हैं, बॉडी उसका अभ्यस्त होते जाता है, साथ ही साथ जो एपिलेप्सी की दवाइयों का इफेक्ट भी कम होते जाता है। तो हो सके आपकी दवाइयां और बढ़ जाएं फ्यूचर में, आपके हेल्थ को और नुकसान होने का खतरा हो, तो सलाह दूंगा कि नशे से जहाँ जिस हद तक हो सके बचें।
1: और श्रोताओं, डॉक्टर के सलाह कार्यक्रम में आज मस्तिष्क से संबंधित जो एक बहुत ही वृहद बीमारी है मिर्गी, जिसे एपिलेप्सी कहते हैं, इसके बारे में डॉक्टर साहब ने बताया। तो हमारे श्रोताओं से हमारी यही उम्मीद होगी कि डॉक्टर साहब की बताई गई बातों को ज़रूर ध्यान देंगे और जो व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित हैं वे सावधानी बरतें और डॉक्टर के पास अवश्य जाएं और डॉक्टर की बताई गई दवाइयों के अनुसार ही अपना डोज सुनिश्चित करें। तो डॉक्टर उमेश कुमार चंद्रा जी, कार्यक्रम में आप आए और मस्तिष्क संबंधित जो एक खास बीमारी है एपिलेप्सी मिर्गी, इसके बारे में आपने जो जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
1: डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में अभी आप सुन रहे थे मस्तिष्क से संबंधित रोग मिर्गी कारण लक्षण एवं उपचार। इस विषय पर डॉक्टर उमेश कुमार चंद्रा से ली गई भेंटवार्ता। भेंट करता थे रमा शंकर। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम बातों बातों में। इसमें सुनते हैं विश्व पर्यावरण दिवस पर अंबिकापुर में संचालित गार्बेज कैफे के संचालक रितेश सैनी से ली गई भेंटवार्ता। प्रस्तुति विकल्प रंजन शुक्ला की है।
1: श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। श्रोताओं कल 5 जून को विश्व भर में पर्यावरण दिवस मनाया गया। प्लास्टिक का कचरा इस समय दुनिया और पर्यावरण के लिए एक चुनौती बना हुआ है। इस समस्या के समाधान के लिए अंबिकापुर के कैफे ने अनूठी पहल की है। इस गार्बेज कैफे में प्लास्टिक के कचरे के बदले लोगों को भोजन और नाश्ता उपलब्ध कराया जाता है। हमारे सरगुजा संवाददाता आलोक शुक्ल ने इस कैफे के संचालक रितेश सैनी से बातचीत की है। पेश इस भेंटवार्ता के मुख्य अंश।
2: श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के इस विशेष कार्यक्रम के साथ मैं आलोक शुक्ल। प्लास्टिक की बोतलें कचड़े इन सब को डिस्पोजल करने के लिए हमेशा समस्या आती है कि इनका नष्टीकरण कहां जाए। क्यों? क्योंकि ये पर्यावरण को जो है प्रदूषित करते हैं। प्लास्टिक के चाहे कचरे हो, प्लास्टिक के सामान हो, प्लास्टिक की बोतल, क्योंकि आजकल हर चीज में चाहे मिनरल वाटर लेना हो, पानी की बोतल लेना हो या कोई भी अन्य पदार्थ लेने हो तो प्लास्टिक की बोतलों में होते हैं। इससे होने वाला प्रदूषण जो है वो एक बड़ी समस्या है। लेकिन भारत देश के एक छोटे से शहर अंबिकापुर में इस प्रदूषण से निपटने के लिए एक अनोखा उपाय किया गया। इस उपाय में एक अपील की गई कि जो भी यहाँ पे आए हम उनके लिए रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, प्लास्टिक के जो कचरे हैं जिससे प्रदूषण फैलता है वो उसे अंबिकापुर के बस स्टैंड में, जो सरकारी बस स्टैंड है वहां पे लाएं, गौरव पथ पे जो बना हुआ है, और यदि वो कचरा लाते हैं तो उसके बदले उन्हें भरपेट खाना मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे की गई एक पहल है जो पूरे देश में प्रचारित हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका उल्लेख हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में किया। तो इस प्रेरक कहानी के पीछे जिनका हाथ है या जो यहां संचालन कर रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे, नगर निगम के ही रितेश सैनी जी से। नगर निगम में जिस तरीके से ये हुआ, इसके पीछे की अवधारणा क्या थी, कैसे ये विचार आया?
3: जी देखिए, अंबिकापुर नगर निगम में हम लोग वर्ष 2014 से ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे कार्य कर रहे थे। इसके अंतर्गत अंबिकापुर नगर निगम में हम लोगों ने डिसेंट्रलाइज मॉडल अपनाया, मतलब शहर में जो कचरा उत्पन्न हो रहा है उसको किसी एक स्थान पर ला करके प्रोसेसिंग करना एक कठिन काम था, तो अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में हम इस काम को करें। इसके तहत एसएलआरएम प्रोजेक्ट अंबिकापुर में लगाया गया। हर वार्डों में लगभग अंबिकापुर में 20 एसएलआरएम सेंटर काम कर रहे हैं। उन वार्डों में दीदियां जो है वो घरों से डोर टू डोर कचरा संग्रहण करती हैं। कचरा को संग्रहण करने के बाद एसएलआरएम सेंटर में आता है, जहां पे कचरे का अलग अलग श्रेणी में पृथक्करण करते हैं, चाहे वो प्लास्टिक हो, पेपर हो, कार्डबोर्ड हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो या जाडियस वेस्ट हो, तो सबको वहां सेग्रीगेशन होता है। और सेग्रीगेशन होने के बाद उसकी प्रॉपर रिसाइकलिंग के लिए उसको वेंडर्स को सेल किया जाता है। प्लास्टिक वेस्ट एक जो बहुत बड़ी समस्या थी, तो अंबिकापुर नगर निगम में जो एसएलआरएम सेंटर है उनसे जो प्लास्टिक संग्रहित होकर के आ रहा है उसको हम लोग प्रॉपरली अलग अलग जो श्रेणी होती है प्लास्टिक की उसमें पृथक्करण करते हैं। पृथक्करण करने के बाद उसकी वाशिंग होती है। वाशिंग होने के बाद उसका दाना बनाने की मशीन, जो प्लास्टिक का ग्रेनुल्स बनता है, ताकि हम उस प्लास्टिक को रिसाइकल कर सकें। प्लास्टिक को जितना ज्यादा अपन रिसाइकल कर पाएंगे वो सर्कुलर इकोनॉमी की ओर एक हमारा अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा।

0: दाना बनने के बाद जो प्लास्टिक के उत्पाद बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो हमसे उस दाने को खरीद रही हैं। तो इतनी व्यवस्था जब बन गई तो उस प्लास्टिक की एक वैल्यू आई। जो लोकल वेंडर्स थे भी तो उनके पास बहुत ज्यादा रेट नहीं मिलता था, 2 रुपए किलो 4 रुपए किलो में ही वो खरीदते थे। जैसे ही हमने दाना बनाना शुरू किया, दाना बनाने के बाद जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनसे जब रेट्स मिलना शुरू हुए, तब हमको ये समझ में आया कि इस प्लास्टिक को दाना में कन्वर्ट करने के बाद 30 रुपए से लेकर 60-70 रुपए किलो तक बेचा जा सकता है। तो वो प्लास्टिक जो 5-6 रुपए किलो में जा रही थी उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई। अब यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का, कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ साथ मिक्स हो गया, उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है। गार्बेज कैफे में ये होता है कि लोग अपने घरों में या दुकानों में जो काम करने वाले वर्कर हैं या जो रैक पिकर्स हैं वो अच्छी साफ क्वालिटी की प्लास्टिक इकट्ठा करके ला रहे हैं, तो साफ सुथरी अलग की हुई प्लास्टिक हमको मिल गई। चूंकि हमारे पास प्लास्टिक एंड पॉइंट तक का मैकेनिज्म है, वो प्लास्टिक को हमने सीधे रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, हमारा जो दाना बनाने की फैक्ट्री है वहां पर डाल दिया, जो दीदियां काम करती हैं, दाना बन गया। अब हमने अंबिकापुर में ये गार्बेज कैफे स्टार्ट किया। चूंकि ये बस स्टैंड परिसर में गार्बेज कैफे है, बस स्टैंड परिसर में गार्बेज कैफे होने के कारण क्या होगा कि अधिकतर लोगों के अप्रोच में है। चूंकि प्लास्टिक घरों से लाया हुआ है या सड़कों से लाया हुआ है, गंदा हो सकता है, रेस्टोरेंट में हाइजीन को भी मेंटेन करना है तो प्लास्टिक लेके रेस्टोरेंट में नहीं आना होता है। जस्ट रेस्टोरेंट के सामने में रोड के उस साइड हमारा अलार्म सेंटर है, वहां पे जाते हैं, वो प्लास्टिक को डिपॉजिट करते हैं, उसका वजन होता है, वजन होने के बाद उनको दीदियां टोकन इशू कर देती है। उस टोकन को लेकर आपको गार्बेज कैफे में आना है। ये जो टोकन है उसकी वैलिडिटी 7 दिन की होती है। ऐसा नहीं कि आप आज लिए तो आज ही आपको उसको खाना ही है। आप 7 दिन के अंदर कभी भी आकर के उस टोकन को यहाँ जमा करिए और यहाँ पे जो रेस्टोरेंट जो चला रहे हैं वो उसके बदले में उनको भरपेट भोजन कराएंगे।
1: गार्बेज कैफे की जो शुरुआत हुई वो हुई 2019 में।
0: Yes.
1: उस समय कुछ दिक्कतें आई शुरू करने में या लोगों के जो विचार थे वो कैसे थे?
0: 2019 में इसका जो शुरुआत करने का प्रक्रिया हुआ था, तो एक हम लोग एक आईसी एक्टिविटी के अंतर्गत बस स्टैंड परिसर में ही साफ सफाई का एक महाअभियान का आयोजन हम लोगों ने उस दिन किया था। तो जब साफ सफाई का महाअभियान किया गया तो उसमें हमारे महापौर हो गए, नगर निगम के अधिकारी गण हो गए, सारे लोग यहाँ पे थे और सफाई कर्मचारी लोग उसमें स्वीपिंग करके प्लास्टिक के कचड़े को, अन्य सभी कचड़ों को इकट्ठा कर रहे थे। तो वहां पे एक बात आई कि क्या इस कचड़े के बदले में हम लोगों को कुछ इंसेंटिव मिल सकता है क्या? तो उस समय जो अधिकारी गण थे उन लोगों ने कहा जो सबसे अच्छा प्लास्टिक इकट्ठा करके लाएगा उसको आज मेरी ओर से खाना। तो इस तरह से एक चीज समझ में कि नहीं ऐसा भी कुछ किया जा सकता है। फिर दूसरा इसको आगे बढ़ने का हमने इसलिए उम्मीद किया क्योंकि प्लास्टिक की वैल्यू हमको ये समझ में आ गई कि जब अगर प्लास्टिक का प्रॉपर आपके पास सेग्रीगेशन है, आपके पास दाना बनाने की मशीनें हैं और आपके पास वेंडर हैं, आप प्लास्टिक को कहाँ बेच सकते हैं, सही मूल्य अगर अपने को मिल रहा है तो हम इसको सस्टेन कर सकते हैं। कि अगर मान लीजिए 1 किलो प्लास्टिक जो सामान्य रूप से कोई 2 रुपए किलो में बेच रहा होगा, हमारे पास आके प्रोसेस होकर वो 28-30-40 रुपए किलो में जा रही है। सारे खर्चों को काट करके अगर 1 किलो प्लास्टिक में 20 रुपए भी मेरा बच रहा है तो उस 20 रुपए मैं इस रेस्टोरेंट वाले को दूंगा। ये रेस्टोरेंट प्राइम लोकेशन पे है, यहाँ पे गार्बेज कैफे में जो खाने आते हैं उनके अलावा अन्य जो यात्रीगण आते हैं उनको भी ये खिला सकें, इसलिए उनकी ओर से भी क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, ऐसा हम लोगों ने किया।
1: ये ऐसा नहीं है कि खाली जो कचरा लेके आ रहे हैं उनके लिए, ये सभी के लिए है।
0: जी बिल्कुल,
1: बाकी जो आते हैं तो उसके लिए भी एक रेट है।
0: उसके लिए यहाँ पे रेट है, आप पैसा देके भी खा सकते हैं और जो गार्बेज कैफे में जो प्लास्टिक जमा करके टोकन ला रहे हैं वो भी खा सकते हैं। अब यहाँ पे टोकन वालों के साथ कोई भेदभाव ना हो, इसके लिए हम लोगों ने एक साथ एग्रीमेंट में ही लिखा हुआ है कि 2 सीट हमेशा, 2 टेबल मतलब 8 व्यक्तियों के बैठने की जो अरेंजमेंट है वो हमेशा रिजर्व रहेगा। जो टोकन लेकर के आ रहे हैं वो या तो सड़क से कचरा बीनने वाले होंगे या कुछ होंगे, तो उनके साथ कोई भेदभाव हो ऐसी स्थिति ना बने, तो इनको ये कहा गया कि आपको 2 टेबल रिजर्व रखना है, आप कभी भी मतलब उनको वापस नहीं भेजोगे।
1: आप ये बताइए कि इसमें से प्रतिदिन कितना आय हो जाता है यहाँ पे?
0: जब देखिए हमने इस गार्बेज कैफे की शुरुआत की थी तो शुरुआत के 1-2 महीने में तो दो तीन लोग आ रहे थे, उसके बाद फिर काफी 15-20 टोकन 30 टोकन 40-50 टोकन तक पर डे जाना शुरू हुआ। जब कोविड आया, कोविड के पीरियड में एक गाइडलाइन जारी हुई थी कि रेस्टोरेंट को अपन को खोलना नहीं है, तो उस पीरियड में जो 1.5-2 साल का पीरियड था उस पीरियड बस में इस गार्बेज कैफे को बंद करके रखना पड़ा। उसके बाद फिर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। अभी भी मतलब हर दिन लगभग 8-10 टोकन कंटिन्यूअसली आते जाते हैं। कई बहुत अच्छे इसमें आप एग्जांपल भी देखेंगे, कई लोगों की स्टोरी भी, रैक पिकर है जो दुकानों से, मार्केट जब बंद होता है तो प्लास्टिक इकट्ठा करता है, वो प्लास्टिक इकट्ठा करके आता है यहाँ पे जमा करता है, जैसे 1 किलो 2 किलो 3 किलो और टोकन इकट्ठा करता है। तो उसने एक बार रिक्वेस्ट किया था कि सर 1 टोकन मिलता है मान लीजिए मेरे को तो मैं अकेले खाना चाहता हूँ, क्या मैं 3-4 दिन इकट्ठा करके 5-7 टोकन कर लूं और अपने परिवार बच्चे लोगों को लेकर के आ जाऊं, तो मेरे बच्चे लोगों को मैं कभी रेस्टोरेंट नहीं ले जा पाता, तो ऐसा क्या मैं कर सकता हूं? बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। 7 दिन टोकन की वैलिडिटी वाला जो कॉन्सेप्ट आया, पहले तो एक ही दिन था कि आज आप लोग जाओ खाओ चले जाओ, फिर उसमें उन्होंने कहा नहीं 7 दिन तक आपका टोकन वैलिड रहेगा। तो ये हो गया कि मतलब वो भी अब अपने फैमिली को रेस्टोरेंट लेकर के आ सकता है। ऑलरेडी हम लोग घरों से भी प्लास्टिक कलेक्ट करते हैं, डोर टू डोर कलेक्शन में प्लास्टिक मिल रही, सारे की प्रोसेसिंग कर रहे हैं। एक मोड ये भी है कि इसके माध्यम से प्लास्टिक भी हमको मिल जा रहा है और साफ सुथरी प्लास्टिक जहां प्लास्टिक को जाना चाहिए, जो उसका वैधानिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में हम डिस्पोजल कर पा रहे हैं।
1: ये जो पानी भी आप देते हैं तो स्वच्छ पानी
0: जी
1: वो लोगों को उपलब्ध कराते हैं?
0: स्वच्छ पानी उपलब्ध कराते हैं, यहाँ पे आरओ भी लगा हुआ है इनके पास।
1: सनी जी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि इस पहल को प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में पूरे देश के समक्ष किया, प्रभाव यह पड़ा कि विदेशों में भी इसकी चर्चा हुई, और कोई शहर महानगर इस अवधारणा को स्वीकार करते हैं और आपसे सहयोग चाहते हैं,
0: बिल्कुल
1: ऐसा कोई मामला सामने आया, ऐसा कोई विषय सामने आया कि जो और कोई शहर के भी लोग आपसे कांटेक्ट किए?
0: जी बिल्कुल, दिल्ली जो है भारत की राजधानी है और दिल्ली में शायद 27 से 28 गार्बेज कैफे आज के डेट में हो चुके हैं। तो 2019 में जब हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया था, दिल्ली से यहाँ एक्सपोजर विजिट के लिए भी आए थे, वहां पे दिल्ली में भी उन्होंने गार्बेज कैफे चालू किया है। इसके अलावा और भी कुछ कुछ ऐसे शहर हैं जो गार्बेज कैफे के बारे में बहुत सारी डिटेल्स हमसे ली, यहाँ तक कि जो हमारे सीएजी होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जब इस डिपार्टमेंट को पता चला कि ऐसा कोई इनिशिएटिव चल रहा है तो फाइनेंशियल इसके क्या सिचुएशन है, क्या ये सस्टेन हो पाएगा कि या इसको सब्सिडाइज करके करना है और जगहों पर लागू करना, तो सीएजी ने भी इसमें विस्तृत हम लोगों से पूरा जानकारी लिया और पूरा ऑडिट किया इन सारे चीजों का कि कैसे कैसे होता है, कैसे टेंडर किया गया, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थे। तो सीएजी ने भी इन सब चीजों को ऑडिट करके आगे लोगों के लिए एक मॉडल के रूप में, गाइडलाइन के रूप में गार्बेज कैफे का दिया हुआ।
1: गार्बेज कैफे का जो सबसे अधिक लाभ, या कहें कि ये जो पहल आपने की, सबसे अधिक लाभ किस वर्ग को मिला, किसे मिला?
0: समाज के उस तबके को मिला जो ऑलरेडी प्लास्टिक पे काम कर रहे हैं, अब पहले भी करते थे, रैक पिकर लोग अभी भी दुकानों से ले रहे हैं, बेच रहे हैं, लेकिन उनको ये समझ में आया कि मैं दिन भर इकट्ठा करके, क्योंकि एक किलो बोलने में बहुत हमको हल्का लगता है, लेकिन जब आप प्लास्टिक की बात करेंगे, एक किलो लोहा और एक किलो प्लास्टिक में बहुत अंतर होता है। एक किलो प्लास्टिक जब हम इकट्ठा करने जाएंगे तो पता चलेगा आधा बोरा भर गया, और साफ सुथरी प्लास्टिक लानी है। मेन हमारा ये इनिशिएटिव है कि सड़कों से उठाना या नालियों से उठाना वो नहीं है, प्लास्टिक को आप फेंके ना, आप प्लास्टिक का यूज किए, आप प्लास्टिक को स्टोर कीजिए, एक किलो हो गया गार्बेज कैफे में डिपॉजिट कीजिए, टोकन लीजिए, खाना खाइए।
1: जैसे एक किलो का हो गया, आधे किलो का हो गया, क्या क्या चीज आप यहाँ पे देते हैं?
0: यहाँ पे गार्बेज कैफे में जो आते हैं उनके साथ साथ जो पब्लिक बस स्टैंड में आ रहे हैं यात्रीगण, उन यात्रीगणों के लिए भी यहाँ पे सुविधा है। तो यात्रीगणों के आधार पे वेंडर को जो लगता है कि यहाँ पे जैसे गर्मी का सीजन है तो लस्सी होना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक होना चाहिए, या लंच में और कुछ कुछ आइटम है तो सारे आइटम ये बनाते हैं। तो जो गार्बेज कैफे का मेनू है तो फिक्स है कि उसमें आपको खाने में क्या क्या देना है, नाश्ते में क्या क्या देना है। उसके अलावा जो अलग से आ रहे हैं यात्रीगण वो जो यहाँ अवेलेबल है उसको ऑर्डर देकर के ले सकते हैं।
1: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया
0: जी,
1: उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा गार्बेज कैफे में?
0: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि एक तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए। मन की बात में आने के बाद और लोगों को पता चला कि गार्बेज कैफे
1: पड़ा,
0: बिल्कुल
1: असर वृद्धि हुई है,
0: वृद्धि हुई है, उससे भी वृद्धि हुई है। दूसरा इनके प्रति सपोर्ट भी पड़ा कि एक हमारे शहर की का जो एक सम्मान की बात है कि शहर के बारे में प्रधानमंत्री जी अगर चर्चा कर रहे हैं तो उससे लोगों के मन में भी एक आया कि नहीं ये अच्छी इनिशिएटिव, इसको और बढ़ाना चाहिए। ये भी बात आई कि शहर के और दूसरे हिस्सों में भी हम चाहें तो अगर स्पेस अवेलेबल हो तो चालू कर सकते हैं इसको।
1: तो क्या क्या आइटम रहता है यहाँ पे खाने में, क्या क्या देते हैं?
0: रोटी, चावल, दो प्रकार की सब्जी, अचार, पापड़, ये जो है वो तो खाने का हो गया। नाश्ते में जैसे अगर ये आज समोसा बनाया तो समोसा, अगर आज ये इडली बना दिए तो इडली, अगर किसी दिन बड़ा बना दिए तो बड़ा, तो उसमें वेरिएशन होता रहता है। सब्जियों में वेरिएशन होता है कि आज किसकी सब्जी बनी है, जिसकी सब्जी।
1: मैं देख रहा हूँ कि अगल बगल भी होटल है, कई जो पुराने होटल है, बड़े होटल वो स्थापित है, उसके बाद भी आपका ये अच्छे से चल रहा है होटल। तो जनता का जो भरोसा है, मेहनत कश लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उन्हें भी एक भरपेट भोजन मिल जाता है कि या कहें कि एक ऐसे शहर में आके कि कचरा इकट्ठे कर लो तो उन्हें खाने के कम से कम दिक्कत नहीं होती।
0: सबसे बड़ी बात यह होती है कि उनके मन में एक तो जो हेजिटेशन रहता है कि रेस्टोरेंट में कैसे जाएंगे या क्या करेंगे, जब उनको पता चला कि ये रेस्टोरेंट हमारे ही लिए बना है, गार्बेज लाना है, गार्बेज देकर करना है, तो एक उनका भी हेजिटेशन भी वो हो रहा। दूसरा चीज, रेस्टोरेंट को मेंटेन रख रहे हैं वेंडर, नगर निगम से भी निरीक्षण हो रही है, हाइजीन मेंटेन रख रहे हैं, साफ सफाई मेंटेन रखना है सारा चीज, तो यहाँ पे खाने में किसी कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा है कि किसी प्रकार की कोई गंदगी है,
1: पूरा साफ सुथरा है। पीछे ये पानी की बोतल लगी हुई है, खाद्य सामग्री पैक करने के लिए इको फ्रेंडली पैकेजिंग को प्राथमिकता देने की बात भी कही गई है। तो जो छोटे छोटे ये जो पोस्टर हैं, इनके माध्यम से भी एक बृहद संदेश देने की जो है ये कोशिशें हो रही है। और ये जो बता रहे हैं सैनी जी, ये इसके इंचार्ज है, यहाँ पे पूरा देख रेख करते हैं, और ये बता रहे हैं कि दिनों दिन ये लगातार बढ़ते ही जा रहा है। इससे सबसे बड़ा जो लाभान्वित वर्ग है वो गरीबों का है, जो दिन भर मेहनत कश जो मजदूर हैं, श्रम करते हैं, और जो अपने परिवार को भी लेके जाना चाहते थे होटलों में, लेकिन उनकी कल्पना साकार नहीं हो पाती थी। तो सबसे बड़ी बात है कि देखिए, गार्बेज कैफे से उनके उनके परिवार को भी एक बैठने का, एक जो उचित वातावरण में, स्वच्छ वातावरण में जो बड़े बड़े शहरों पे वो देखा करते थे, तो वो भी उनकी कल्पना साकार हुई। श्रोताओं, आज एक बहुत अच्छा विषय रहा, और ये जो गार्बेज कैफे की यात्रा है, उस यात्रा के ये सबसे प्रमुख एक जो व्यक्ति हैं, इनकी देखरेख पे ये कुशलतापूर्वक चल रहा है। आगे और इसे उन्नत रूप देने के लिए और क्या क्या योजनाएं हैं आपकी?
0: अभी हम लोग इसमें जैसे जैसे रिसाइकलिंग बढ़ती जा रही है, हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट पे इतने साल से काम कर रहे हैं, तो नगर निगम अंबिकापुर एक अनुभवी नगर निगम हो गया है वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर। और सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ की स्वच्छता दीदियां हैं, उनका जो योगदान है, मतलब वो घर घर जाकर डोर टू डोर कलेक्शन कर रही है और इस गुणवत्ता के कचरा को लेकर के आ रही है कि एकदम साफ सुथरा, तो उस स्तर का कचरा हमारे पास आ रहा है दीदियों के माध्यम से। तो अब हम लोग ये एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं कि क्या और ऐसा कचरा क्या है जिसकी वैल्यू अच्छी हमको मिल सकती है, तो हम सिटीजन्स के लिए भी कुछ ऐसा और ला सकते हैं कि अगर इस कचरे को आप स्टोर करके साफ सुथरा अगर हमको दे रहे हैं तो हम आपको उसके बदले में कुछ इंसेंटिव दे सकते हैं, ना केवल खाना ही, कुछ और भी इंसेंटिव दे सकते हैं, कुछ हम कूपन इशू कर सकते हैं, कुछ टोकन इशू कर सकते हैं जिसके माध्यम से आप कोई यदि सरकारी योजना का लाभ लेना चाहें, या हम ऐसा टोकन इशू कर दें कि आप टॉकीज में जाकर के फिल्म देख सकें, या उनको कुछ उनके एजुकेशन से रिलेटेड अपन कॉपी देना चाहें।
1: तो उससे कई अच्छे परिवार के भी जो बच्चे हैं वो भी जुड़ेंगे, मध्यम वर्गीय हैं वो भी जुड़ेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो पहल है ये हर वर्ग के लिए अनुकरणीय हो सकती है। जो छोटी सी पहल इस शहर से निकली और देश और विदेश में चर्चा का विषय बनी। दोस्तों, आज इस महत्वपूर्ण विषय के साथ एक जो यहाँ से यात्रा शुरू हुई गार्बेज कैफे की, और कई अनछुए पहलुओं का भी इन्होंने पूरा विवरण दिया जो काफी रोचक है। तो आज मुझे यानी आलोक शुक्ला को अनुमति दीजिए। जय हिंद।
2: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अंबिकापुर के गार्बेज कैफे के संचालक रितेश सैनी से हमारे सरगुजा संवाददाता आलोक शुक्ल की ये भेंट वार्ता। अब हम आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार। बातों बातों में इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विश्व पर्यावरण दिवस पर अंबिकापुर में संचालित गार्बेज कैफे के संचालक रितेश सैनी से ली गई भेंटवार्ता। प्रस्तुति विकल्प रंजन शुक्ला की थी। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ पर, और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। और अब समय है चित्रपट संगीत का। चित्रपट संगीत का पहला गीत जिसके लिए आवाजें हैं लता मंगेशकर और आशा भोसले की। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत के लिए संगीत तैयार किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम है आए दिन बहार के।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से इस समय आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और मुकेश के युगल स्वरों में आनंद बख्शी की लिखी ये रचना। धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत पैरेलाल ने। फिल्म का नाम है गोरा और काला।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से जारी है चित्रपट संगीत।

लता मंगेशकर की आवाज़ में लीजिए सुनिए राजेंद्र किशन की ये रचना। संगीत हेमंत कुमार का है। फिल्म का नाम है नागिन।

0: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनिंग फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्टेशन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फरमाए।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को दी गया कोई।
0: कभी कोई किस्सा याद आता है।
4: यादें।
0: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
5: मुझे कुछ कहना है,
6: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
7: सुनिए

0: एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: आइए अब हम आपको सुनवाते हैं अनवर की आवाज में आनंद बख्शी की रचना, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है, फिल्म का नाम है अर्पण।

इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वीव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:40 हुए हैं, समय है लोक संगीत के कार्यक्रम का। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं फिरित पटेल और साथी। पहले सुनते हैं फिरित पटेल और साथियों के स्वर में अशोक देवांगन का लिखा ये कर्मा गीत।

0: समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से इस समय आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं फिरित पटेल और साथी। आइए सुनते हैं फिरित पटेल और साथियों के स्वर में नानूराम पटेल का ये श्रृंगार गीत।

0: इस गीत के साथ ही लोक संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में कलाकार थे फिरित पटेल और साथी। फिरित पटेल और साथियों को आप रात 8:15 पर इसी कार्यक्रम में एक बार फिर सुन सकते हैं। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:55 होने को है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी रायपुर है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ की जल प्रबंधन पहल को राष्ट्रीय स्तर पर

0: सराहना। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पौधारोपण अभियान के तहत प्रदेश में 21 लाख पौधे रोपे जाएंगे और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा आज से शुरू हो गई है। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ की जल प्रबंधन पहल को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने सिंचाई दक्षता बढ़ाने और जल संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए राज्य में लागू कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन आधुनिकीकरण यानी MCAD मॉडल की प्रशंसा की है। मंत्रालय ने अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी छत्तीसगढ़ की तर्ज पर इस मॉडल को अपनाने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे किसानों, जल संसाधन विभाग और सुशासन के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता का सम्मान बताया है। विश्व पर्यावरण दिवस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल रायपुर के राजीव स्मृति वन में एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने बरगद का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण जन भागीदारी से ही सफल हो सकता है और प्रत्येक नागरिक को अपनी माता के नाम एक पौधा लगाना चाहिए। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष प्रदेश में 3.5 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए थे। वन मंत्री केदार कश्यप भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए एक वृहद पौधारोपण अभियान की शुरुआत की जा रही है। इसके तहत पूरे प्रदेश में 21 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भाजपा प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी ने बताया कि प्रदेश के सभी बूथों में अनिवार्य रूप से पौधारोपण का कार्य किया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में आवास और पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रकृति का संरक्षण भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है और पर्यावरण की रक्षा सभी की जिम्मेदारी है। श्री चौधरी ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए औद्योगिक उत्सर्जन की ऑनलाइन निगरानी और फ्लाई ऐश प्रबंधन की व्यवस्था को मजबूत किया गया है। उन्होंने बताया कि नवा रायपुर में 20,000 से अधिक पीपल के पेड़ लगाकर इसे पीपल सिटी के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने 4 दिवसीय बस्तर प्रवास के पहले दिन कल कांकेर जिले में विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने बड़े गौरी में जल जीवन मिशन के कार्यों का जायजा लिया और निर्माणाधीन नालंदा परिसर तथा अमोड़ा नरहरपुर सड़क का निरीक्षण किया। सड़क निर्माण की धीमी प्रगति पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। श्री साव ने कहा कि गुणवत्ता और समय सीमा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वे 4 दिन बस्तर संभाग में योजनाओं के क्रियान्वयन और निर्माण कार्यों की समीक्षा करेंगे। सुशासन तिहार के तहत उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कल कबीरधाम जिले के बोड़ला नगर पंचायत में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को इसके निराकरण के निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने तरेगांव में 2.5 करोड़ रुपए की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और राजा नवा गांव में 75 लाख रुपए की लागत से उप स्वास्थ्य केंद्र के उन्नयन की स्वीकृति दी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा आज से शुरू हो गई है। ये परीक्षा 9 जून तक चलेगी। परीक्षा 2 पालियों में हो रही है। पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। मौसम विभाग ने आज प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और अंधड़ चलने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून के 12 जून तक छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ की जल प्रबंधन पहल को राष्ट्रीय स्तर पर मिली सराहना। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पौधारोपण अभियान के तहत प्रदेश में 21 लाख पौधे रोपे जाएंगे और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा आज से शुरू हो गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: मीडिया वेव और FM बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम नई फिल्मों से। इसमें हम आपको सबसे पहले सुनवाने जा रहे हैं मास्टर सलीम, नीरज श्रीधर और सुजैन क्यू की आवाज़ों में इरशाद कामिल की लिखी है रचना। संगीत प्रीतम का है। फिल्म का नाम है लव आजकल।

अलका याग्निक के सर में आई अब सुनते हैं इरशाद कामिल की रचना। संगीत ए आर रहमान का है। फिल्म का नाम है तमाशा।

सुनिधि चौहान की आवाज़ में लीजिए सुनिए फन्नेखा फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा है इरशाद कामिल ने, संगीत तैयार किया है तनिष्क बागची ने।

ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत। आवाजें हैं विशाल ददलानी और श्रेया घोषाल की। अमिताभ भट्टाचार्य ने इस गीत को लिखा है, संगीत तैयार किया है अजय अतुल ने।

ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं आतिफ असलम की आवाज़ में इरशाद कामिल की रचना, संगीत विशाल शेखर का है, फिल्म का नाम है टाइगर जिंदा है।

बाहुबली 2 इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे हैं, जिसके लिए आवाज़ है मधुश्री की। मनोज मुंतशिर ने इस गीत को लिखा है, संगीत तैयार किया है MM क्रीम ने।

बाहुबली 2 इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना और इस गीत के साथ ही नई फिल्मों से कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्स और FM बैंड 102.8 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आप हमारा प्रसारण मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी सुन रहे हैं। और अब समय हो चला है चित्रपट संगीत का।

90-90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाश

0: شروطك.
1: आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत। श्रोताओं, आज प्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता, निर्देशक सुनील दत्त जी की जयंती है। हम उन्हें सादर श्रद्धांजलि देते हैं। आइए उनकी फिल्मों के कुछ गीत सुनते हैं। सबसे पहले सुनते हैं तलत महमूद की आवाज में सुजाता फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया है सचिन देव परमन ने।

AIR at 90. आइए सुनते हैं अब महेंद्र कपूर की आवाज में साहिर लुधियानवी की रचना। संगीत रवि का है, फिल्म का नाम है गुमराह।

0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से जारी है चित्रपट संगीत। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं मन्नाड़ी की आवाज़ में वक्त फिल्म का गीत। साहिल लुधियानवी ने इस गीत को लिखा है और संगीत तैयार किया है रवि ने।

0: क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक, हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से इस समय आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत खानदान। लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। राजेंद्र किशन के लिखे इस गीत के लिए संगीत तैयार किया है रवि ने।

अभी आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर की आवाज में फिल्म हमराज का ये गीत। इस गीत को लिखा था साहिर लुधियानवी ने और संगीत तैयार किया था रवि ने। इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आज का चित्रपट संगीत केंद्रित था प्रसिद्ध अभिनेता निर्माता निर्देशक सुनील दत्त की फिल्मों पर। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

हम अपने श्रोताओं को एक बार फिर याद दिला दें, केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम युवा शक्ति आप सुनेंगे आज रात 9:25 पर। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज रात 10 बजे सुनिएगा ऋषिकेश गागोड़े का ख्याल गायन। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11 बजने को है हिंदी समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
1: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। वे 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। उद्योग जगत के अग्रणी और बड़े निवेशक भी आयोजन का हिस्सा होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और इन देशों के बीच व्यापार तथा निवेश के नए अवसर खोलना है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के लिए सत्र आयोजित होंगे। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
3: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
1: आंध्र प्रदेश में जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए लिंगमनेनी रमेश को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में ये घोषणा की गई। लिंगमनेनी रमेश आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कई दशकों बाद दुर्लभ जंगली बिल्ली कैराकल दिखाई रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे वन्यजीव संरक्षण की दिशा में बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत कूनो राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव संरक्षण का एक सफल मॉडल बनकर उभरा है और कैराकल की वापसी इसी का प्रमाण है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया यह अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। ये खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान के साथ खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तर पूर्वी भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ हिस्सों में भी आज मूसलाधार बारिश की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं। 11:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।
4: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
5: बिंदिया शहरी महिलाओं का अनोखा कार्यक्रम सुनना ना भूलिए। प्रत्येक रविवार, सोमवार और गुरुवार को 1:30 से 2:00 तक महिला समस्याओं का समाधान है बिंदिया। मीठी मीठी बातों का गुणगान है बिंदिया। डॉक्टर की सलाह, परिचर्चा, वार्ता और गीत संगीत की बहार है बिंदिया। हेलो बिंदिया में बहनों के विचारों और गीतों का संसार है बिंदिया।
0: सदा बहार नगमे। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में खलनायक फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत तैयार किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। लीजिए सुनिए अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में आनंद बख्शी की लिखी ये रचना। संगीत ए आर रहमान का है, फिल्म का नाम है ताल।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से जारी है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। राम लखन, लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत तैयार किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अंत में सुनते हैं अलका याग्निक, उदित नारायण और साथियों की आवाजों में नरसिम्हा फिल्म का गीत। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत तैयार किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

इस गीत के साथ ही सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में विदुषी गिरिजा देवी का गाया दादरा। आपके साथ सारंगी पर संगतकार हैं साबरी खां,

अभी आप सुन रहे थे विदुषी गिरिजा देवी का गाया दादरा। आपके साथ सारंगी पर संगतकार थे साबरेखा, तबले पर थे प्रेम बल्लभ और ढोलक पर थे चुन्नी लाल। इसी के साथ उपशास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है, थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।

0: आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 11:55 होने को हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने के लिए एकीकृत आजीविका कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई नेशनल यूथ म्यूथाई चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ ने 7 स्वर्ण पदक सहित 17 मेडल जीते। और मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिन प्रदेश के कुछ जिलों में तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने के लिए एकीकृत आजीविका कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। मुख्य सचिव विकासशील ने इस संबंध में अधिकारियों को विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। ये कार्यक्रम बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिलों में शुरू किया जाएगा। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने राज्य के सभी 194 नगरीय निकायों में शहरी विकास योजनाओं की निगरानी और सशक्त करने का निर्णय लिया है। विभाग की सचिव संगीता आर ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, स्वच्छ भारत मिशन और अमृत मिशन सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि आज 6 जून को सभी राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी अपने अपने जिलों में पहुंचकर योजनाओं की प्रगति और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए एक वृहद पौधारोपण अभियान की शुरुआत की जा रही है। इसके तहत पूरे प्रदेश में 21 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भाजपा प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी ने बताया कि प्रदेश के सभी बूथों में अनिवार्य रूप से पौधारोपण का कार्य किया जाएगा। दुर्ग जिले में अफ्रीकी देशों से आए 4 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को एहतियात के तौर पर 21 दिन के लिए होम आइसोलेशन में रखा गया है। इनमें कांगो, इथोपिया, युगांडा और सूडान से आए यात्री शामिल हैं। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज दानी ने बताया कि सभी यात्रियों की प्रतिदिन स्वास्थ्य निगरानी की जा रही है। फिलहाल 4 यात्री पूरी तरह स्वस्थ हैं और उनमें किसी प्रकार के लक्षण नहीं पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई नेशनल यूथ म्यूथाई चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ ने 7 स्वर्ण पदक सहित 17 मेडल जीते हैं। इस चैंपियनशिप में 26 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 900 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ से 36 सदस्यीय दल इस चैंपियनशिप में शामिल हुआ। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा आज से शुरू हो गई है। ये परीक्षा 9 जून तक चलेगी। परीक्षा 2 पालियों में हो रही है। पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिन प्रदेश के कुछ जिलों में तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। आज प्रदेश में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और अंधड़ चलने की चेतावनी दी गई है। भारत सरकार की राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन दंतेवाड़ा स्थित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई में 8 जून को सुबह 10 बजे से किया जाएगा। मेले में जिले के समस्त आईटीआई के वर्तमान प्रशिक्षणार्थियों, पूर्व प्रशिक्षणार्थियों और अन्य इच्छुक युवाओं को आमंत्रित किया गया है। गौरेला पिंड और मरवाही जिले के कोटमीकला साप्ताहिक हाट बाजार में ज्वेलरी व्यवसायी की हत्या और लूट मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी राहुल उर्फ मनीष मंडल को झारखंड के देवघर से गिरफ्तार कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने के लिए एकीकृत आजीविका कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई नेशनल यूथ म्यूथाई चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ ने 7 स्वर्ण पदक सहित 17 मेडल जीते। और मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिन प्रदेश के कुछ जिलों में तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
0: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। मीडियम वेव 305.8 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सरायपाली केंद्र है। ये प्रसारण आप मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी सुन रहे हैं। 12 बजे हैं। आकाशवाणी संग्रहालय से अब प्रस्तुत है गाथा झरोके से का भाग दूसरा, सत्यवर्ती राजा मोरध्वज। लेखक हैं परदेशी राम वर्मा और प्रस्तुतकर्ता हैं मोहन सी रामानी।
2: प्रस्तुत है सॉफ्टवेयर रूपक श्रृंखला गाथा झरोके से। गाथा।

लीजिए सुनिए रूपक सत्यवर्ती राजा मोरध्वज, लेखक डॉक्टर परदेशी राम वर्मा और प्रस्तुत करता है मोहन सी रामानी।

0: छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में स्थित आरंग अब एक जाना पहचाना शहर है। आरंग शब्द में आरा और अंग दो शब्दों की ध्वनि है।
1: आरे से पुत्र के अंग को दो भागों में चीरकर दान करने के लिए संकल्पित दानवीर राजा मुरध्वज का आख्यान जन जन में प्रसिद्ध है।
0: मुरध्वज उर्फ शेर का भोजन, इस नाम से प्रसिद्ध इस नाटक में द्वापर युग के पात्रों की कहानी है। भगवान श्री कृष्ण के भक्त और सखा अर्जुन की हार और मुरध्वज के बेटे ताम्रध्वज की जीत की कथा है।
1: कथा पांडवों के द्वारा राजसूय यज्ञ के घोड़े से शुरू होती है। दिग्विजय की कामना से घोड़ा छोड़ा जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के आरंग में एक युवक ने उस घोड़े को पकड़ लिया। ये युवक राजा मुरध्वज का बेटा ताम्रध्वज है। अर्जुन घोड़े के पीछे सेना लेकर चलता हुआ आता है और इस तरह कैसे नाटक में कलाकार एक युग के द्वंद्व को सजीव करते हैं।

आज सिरकाल तेरो छायो है। गजपुरवासी पांडव को कह नाम ना सुत पायो है। दक्षिण दिशी में किसी भूप ने बाज ना ठहरायो है। तू ही अनोखी क्या दुनिया में छत्री को जायो है।

0: ये कथा द्वापर की है। कौरव पांडव के बीच युद्ध समाप्त हो गया। दिग्विजय की कामना से पांडवों ने यज्ञ किया। यज्ञ के घोड़े को आरंग के राजा मोरध्वज के बेटे ने पकड़ लिया। युद्ध हुआ। दोनों के द्वंद्व में अर्जुन हार गया। ताम्रध्वज उसे पकड़कर अपने पिता के पास ले आया। पिता मोरध्वज ने अर्जुन को पहचान लिया। उसने ताम्रध्वज से कहा कि कुंती पुत्र अर्जुन को ससम्मान छोड़ दे। छूट जाने पर भी अर्जुन की ग्लानि कम ना हुई। वो श्री कृष्ण के पास पहुंचा।
1: श्री कृष्ण के पास पहुंचकर अर्जुन ने व्यथित होकर कहा, कृप

प्रभर है वही धनुष गांडी वही यह लख संधानी सर है। मोरज ध्वज फल जंद वीर कुछ मुझसे नहीं जबर है। दीनानाथ कौन

0: इस तरह अर्जुन को श्री कृष्ण जवाब देते हैं कि भक्तों के लिए कुछ भी संभव है। तब अर्जुन चाहते हैं कि मूरध्वज की परीक्षा ली जाए कि कैसे वो इतना बड़ा भक्त है।
1: श्री कृष्ण तब यमराज को तलब करते हैं और उससे कहते हैं कि तुम शेर बनो। उस एक शेर को लेकर कृष्ण और अर्जुन अरंग नरेश मूरध्वज के यहाँ साधु के वेश में पहुंचते हैं।
0: साधु वेश में उन्हें देखकर द्वारपाल कहता है कि जो कुछ आपको चाहिए मांगिए, हम सादर भेंट करेंगे। यही इस नगर के राजा की आज्ञा है, यही यहाँ की रीत भी है।
1: श्री कृष्ण तब नाराज होकर कहते हैं कि तू द्वारपाल है, तुझसे क्या मांगेंगे? मांगेंगे राजा से, जा उसे बुला।
0: तब राजा के पास द्वारपाल जाता है और ये सब किस्सा उसे बताता है कि एक शेर के साथ दो साधु आए हैं। राजा स्वयं उपस्थित होता है, वो साधुओं का सम्मान करता है और कहता है कि कहिए क्या आज्ञा है।
1: तब साधु रूपी कृष्ण कहते हैं कि शेर भूखा है, इसे भोजन चाहिए।
0: राजा कहता है कि मैं तुरंत भूखे शेर के भोजन का प्रबंध किए देता हूँ। तब साधु एक विचित्र शर्त रखता है।

महाराज रही हमको अति भूख सताए, सत हारो या सुत हारो क्यों राखी देर लगाए, देना ना होए तो

0: इस तरह ये द्वंद्व राजा मोरध्वज के आगे खड़ा हो जाता है कि सत्य को त्यागें या सुत अर्थात पुत्र को त्यागें।
1: सत की धरती है छत्तीसगढ़। मोरध्वज छत्तीसगढ़ के आरंग के राजा थे। उन्होंने पुत्र से अधिक महत्व सत्य को दिया। दिए हुए वचन का पालन करते हुए वे रानी के पास गए।
0: रानी भी राजा की तरह सत्य के प्रति निष्ठा रखती थी। उसने कहा कि सत्य की रक्षा कीजिए, पुत्र ही दे दीजिए।
1: फिर एक ये भी शर्त रखी गई कि राजा और रानी अपने पुत्र को आरे से बीचों बीच चीरेंगे, मगर एक आंसू भी न गिरे, तभी शेर खाएगा।
0: इस विचित्र शर्त पर राजा रानी स्तब्ध रह जाते हैं, मगर संभलते हैं। तब ताम्रध्वज उनसे उनकी उदासी का कारण पूछता है। रानी बताती है कि अपने हाथों अपने इकलौते पुत्र को चीरकर शेर को देना है। ताम्रध्वज भी माता पिता का असली वारिस था। उसने समझाते हुए कहा,

0: इस तरह मोरध्वज और रानी दोनों ही जी कड़ा कर शेर के लिए बेटे को आरे से चीरने लगे।
1: यह अद्भुत आख्यान है। पंडवानी में भी ये प्रसंग आता है, किंतु इतने विस्तार से नहीं। ये वचनबद्धता और सत्यनिष्ठा का अनूठा प्रसंग है।
0: धरती हिल उठती है, आकाश में घटा घोप छा जाता है, जब एक पिता और एक माँ अपने जिगर के टुकड़े को चीरते हैं। साधु बने श्री कृष्ण और अर्जुन भीतर ही भीतर महाराज मोरध्वज की सत्यनिष्ठा देख चकित रह जाते हैं। शेर बना यमराज भी इस दृश्य को देख विस्मय में पड़ जाता है, लेकिन आरा चलता रहता है।
1: एक और मार्मिक प्रसंग इस कथा में है। राजा रानी तो आंसू नहीं बहाते, लेकिन अब बेटे ताम्रध्वज की एक आंख से आंसू टपक पड़ता है। तब साधु पूछता है कि सिर्फ एक आंख से क्यों आंसू गिरा। ताम्रध्वज कहता है कि मेरे शरीर का केवल एक हिस्सा ही आप मांगते हैं, दूसरा हिस्सा व्यर्थ रह जाएगा, ये सोचकर मैं दुखी हो रहा हूं।
0: इस कथन में जो उदात्तता है, चिंतन की पराकाष्ठा है, दान के प्रति समर्पण है, साहस का प्रमाण है, वो अद्भुत है।
1: अंत में पुत्र को दो भाग में विभाजित कर राजा रानी आग्रह करते हैं कि अब एक भाग आप शेर को दे दीजिए।
0: तब साधु कहता है कि अब दाहिना अंग शेर को दे दो और बायां अंग लेकर रानी महल चली जाए।
1: तब दोनों साधुओं को भोजन के लिए आमंत्रित किया जाता है। भोजन के लिए बैठे साधु कहते हैं कि आप दोनों तो यहाँ हैं, घर के सभी लोग नहीं हैं। तुम्हारा पुत्र भी आकर बैठे तभी भोजन करेंगे, वरना नहीं।

0: इस तरह इस कथा में नाटकीय तत्व हैं। साधु के कहने पर अंततः राजा मोरध्वज पुत्र को पुकारता है कि आजा, वरना मेरी सत्य निष्ठा नहीं निभेगी, साधु बिना खाए चले जाएंगे।
1: तभी उसका पुत्र वहां सशरीर आकर लिपट जाता है। ये चमत्कार उसकी सत्यनिष्ठा की जीत के कारण ही संभव होता है।
2: सत्य

0: अर्जुन की बातों में आके मुझे तू प्यारे वृथा ही सताना पड़ा, तेरे द्वारे पे बन संत आना पड़ा, मुझे भूखे भिखारी कहाना पड़ा, सारा अभिमान इसका घटाना पड़ा, धर्म अपना तुझे भी निभाना पड़ा, तूने मांगे जो वर सोई दीना नृपति, बस इसी हेतु किस्सा बढ़ाना पड़ा।
1: इस तरह राजा मूरध्वज को वरदान और आशीष देकर श्री कृष्ण और अर्जुन वहां से विदा होते हैं। इस कथा में अहंकार की हार और विनय की जीत को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। राजा मूरध्वज एक सत्यनिष्ठ सरल हृदय धर्मध्वजी राजा थे, जिसके प्रभाव से उनका पुत्र ताम्रध्वज अर्जुन जैसे महारथी को भी परास्त कर सका।
2: एक और संकेत है कि निरंतर विजय से अभिमान और अहंकार से अर्जुन ग्रस्त हो गए, इसलिए श्री कृष्ण ने इस लीला के माध्यम से बताया कि जीत के साथ हार भी जीवन का हिस्सा है, सदा एक जैसी स्थिति नहीं रहती। इसीलिए तुलसीदास जी ने भी लिखा है, धरा को प्रमाण यही तुलसी, जो भरा सो झरा, जो बरा सो बुताना।
1: कथाओं में छुपे संकेतों का अपना ही महत्व है। लगातार विजय से भी अहंकार न आए और कठिन परीक्षाओं में भी व्यक्ति अपने कर्तव्य और धैर्य से न डिगे, यही संदेश इस कहानी में है।
2: कथा छत्तीसगढ़ के नगर आरंग की है। यहाँ सदैव सत्य का महत्व प्रतिपादित किया गया है। इस कथा में भी सत्य के पक्ष की जीत की रोचक प्रस्तुति है।

सत्यवर्ती राजा मोरध्वज। अभी आप ये रूपक सुन रहे थे। लेखक थे डॉक्टर परदेशी राम वर्मा, वाचक स्वर गौसुल रशीद और ज्योति ठाकुर के थे। गायक स्वर कुलेश्वर ताम्रकार, पुरानिक राम साहू और साथियों के। शीर्षक गीत के गायक थे सुनील सोनी और अंजलि शुक्ला। वाद्य पक्ष के कलाकार थे मोहम्मद सिराज, मोहम्मद आरिफ, महेंद्र चौहान, शिव कुमार गोंड, विवेक टांक और सत्यरंजन कंगेले। रूपक के प्रस्तुतकर्ता थे मोहन सी रामानी।

आकाशवाणी संग्रहालय से अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक गाथा झरोखे से का दूसरा भाग, सत्यवर्ती राजा मोरतज। लेखक थे परदेशी राम वर्मा और प्रस्तुतकर्ता थे मोहन सी रामानी। ये आकाशवाणी रायपुर है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।

आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आप हमारा प्रसारण मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी सुन रहे हैं। 12:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपके मीत ये गीत।

आपकी मीत ये गीत कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ तारकेश्वरी, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाजों में फिल्म लाल सिंह चड्ढा से। गीत लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत प्रीतम का है और इस गीत को सुनवाने की फरमाइश अपने पोस्ट कार्ड में की है हमारे इन श्रोताओं ने। धवलपुर गरियाबंद से गेंदलाल मिश्रा, चंद्रकांती मिश्रा, अर्चना प्रतीक्षा, धनंजय मिश्रा। अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल और दिव्यांश श्रीवास्तव। महामाया पारा ग्राम दरचुरा से फिरंता साहू, दुलोरिन साहू, कामेश्वरी कुमारी और प्रीतम कुमार साहू। भाटापारा से बचकामल, मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत भृगु, विनय ठाकुर। सोनाडी से सुब्रत चौधरी। सिर्री गातापार से धनेश्वरी साहू, ओम प्रभा, बिंदेश्वरी, नागेश्वरी, चमेली, भूमिका साहू, मोनिका साहू और पूनम साहू।

बिमेतरा मुलमुला से नेतराम साहू, मनीराम, लक्ष्मी, बिंदु, डिंपल, रामेश्वर साहू, यहीं से सेखन राम साहू, अमरिकाबाई लेखनी, रोशनी और चहक साहू, हटरी बाजार भाटापारा से मोहम्मद जावेद, एकता यदु, पूजा यदु और रेशमा निषाद, भाटापारा से हमारे ये साथी हैं नारायण यदु, पुनिया यदु, राकेश यदु, आरती यदु, सिरमुंदा से सूरज कुमार दामले, हेमा दामले, कांतिबाई दामले और राजेंद्र कुमार दामले। फिल्म लाल सिंह चड्ढा के इसी गीत को सुनवाने की फरमाइश हमारे इन श्रोताओं ने अपने ईमेल में की है। कुढ़ाराज से मनोज साहू, चित्रलेखा साहू, देवेंद्र, लवीना, चंचल, वासनी, गरिमा साहू, पोटियाकला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता, शशांक और सीमा साहू, भीमखोज तरपोंगी से संतोष गुप्ता, हितेश, होमेश, लक्ष्मी, प्रतिभा, शीतल गुप्ता, धरसीवा बस स्टैंड से छेदूलाल यादव, सीता यादव, अर्चना, अरुणा, अनुराधा, अल्पना, रानू खुशी, प्रवीण कुमार साहू, इकबाल कुरैशी, दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से छन्नूलाल यादव, पुष्पलता, अर्पिता, अभिनव, बलदाऊ, राजेश्वरी, आस्था, प्राची, प्रियल, अनुराग, अभिषेक, डुगू, कान्हा यादव, टिकापार बालोद से चिंताराम यादव, रवि प्रकाश यादव, गंडई टिकरीपारा से जागेश्वर देवांगन, कचरीबाई देवांगन, दीपक कुमार, जयश्री, ऋषभ, ऋचा देवांगन, रोहासी से डगेश्वर राम साहू, नूतन, घनश्याम, गौरव साहू, खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाई और राजकुमार बोड़ाना, चरडोंगरी पिपरिया कबीरधाम से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार, कुमारी साहू, जय किशन, इंद्राणी, माया साहू, सहसपुर लोरमी से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश, रामकिशन, दुल्लीचंद और सतीबाई साहू, भूतकछार लोरमी से दुर्गेश मरकाम, निर्मला, दीपक, प्रीतम, धनराज मरकाम, मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू, आप हैं अंशु साहू, दामिनी साहू, पार्वती साहू, सतीबाई, उर्वशी, माही, आपने अपना पता नहीं लिखा है, मेघापारा चिल्फी से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दिव्यांशु, दीपांशु, दिव्या, दीपांजलि, दीपक, टेकलाल पटेल, अंबागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा सबिया, अनस और रिहान, नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह, बनियापारा धमतरी से रामचंद माखीजा, सविता माखीजा, स्वाति माखीजा, माही, पूजा चुटकी, शरद कुमार डोडवानी, लगान पंढरिया से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल, हिच्छा महासमुंद से अदालत दास वैष्णव, मानस, शांति वैष्णव, ऋचा गायत्री वैष्णव, गणेशधाम परसुली से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलौदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतन बाई और मोतिमबाई मानिकपुरी, नागरकोहरा राजनांदगांव से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, आराध्या साहू, खैरागढ़ राज लालपुर से मोतीलाल भीमटे, सुशीला भीमटे, मेघा नेहा येशु भीमटे। आप सब की फरमाइश पर आइए सुने अरिजीत सिंह की आवाज में लाल सिंह चड्ढा का ये गीत।

अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की गाए फिल्म लाल सिंह चड्ढा के इस गीत के बाद आइए अब आपको सुनवा दें खानदानी शफाखाना। इस फिल्म का गीत जुबीन नौटियाल और तुलसी कुमार की आवाजों में। शब्बीर अहमद ने इस गीत को लिखा है और संगीत है पायल देव का। इस गीत को सुनवाने के लिए पोस्टकार्ड भेजा है हमारे इन श्रोताओं ने। सिहावा पर्वत अंचल बेलर गांव से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु अंकित देवांगन, दतरिंगी से विश्राम यदु, पार्वती प्रतिमा, रीना लक्ष्मीना यदु, पटपर डूंगरगढ़ से राम गोपाल ध्रुव, नरेंद्र कुमार ध्रुव, कविता और जयंती ध्रुव, शांतिनगर भाटापारा से रमजान खान सिकंदर, अशरफ खान, अयाज खान, अल्फैज खान, बिल्हा से शेख नासिर, महजबीन बानो, बुड़गहन से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार चंद्रकाला और शशिकांता प्रजापति, चनागांव धमतरी से नंदलाल मरकाम, कोमल शोरी, सोहन यादव, आशीष नेताम, विष्णु साहू और गजानंद नेताम, भाटापारा से राधेश्याम और जितेंद्र साहू, करहीबतर से पुरुषोत्तम भाई निर्मलकर, श्रद्धा देवी निर्मलकर, शारदा देवी, लोचन कुमारी विद्यार्थी, गिन्नी लल्ली। इसी गीत को सुनवाने के लिए ईमेल भेजा है हमारे इन श्रोताओं ने। शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कनौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, पलारी से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग, पूनाराम देवांगन, कृष्णा देवांगन, फुलजर घटारनी गरियाबंद से योगेश्वर साहू, डूमेश्वरी, यामिनी मुस्कान, हर्षिता साहू, बाघामुड़ा कोमाखान से प्रज्ञानंद देवांगन, नंदिनी, प्रकाश, गायत्री, यशवर्धन, यशस्वी देवांगन, कवर कॉलोनी बड़वाह खरगोन से प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली, पहंदा पलारी से नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत लखनलाल और सावित्रीबाई देवांगन, देवरी भाटापारा से गनूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश राम मिस्त्री, नांदघाट कार्तल बोर्ड से भागसेन राजपूत, भाग्यश्री, टिकेश्वर, ऋतु राजपूत, पुरानी भिलाई 3 पदुमनगर चरौदा से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, हमीदुन सिद्दीकी, जीशान अहमद सिद्दीकी, शाहनवाज अहमद सिद्दीकी, जनवानी दुर्ग से सुरित रमेश साहू, तारा विद्या साहू, जितेंद्र किशन साहू, सुनीता ऋषिवन, हीरेंद्र नीलकंठ, चंद्रहास संजीव और त्रिलोक साहू, भिलौरी बावनलख बेमित्रा से देवव्रत राघवेंद्र साहू, विधि दीपिका, कविता सृष्टि, सिद्धि हेमंत कुमार साहू, भानबेड़ा मंगवाल से रूप नारायण हुपेंडी, कमला हुपेंडी, चिमरोबाई हुपेंडी, पवित्र हुपेंडी, भाटापारा से दान सिंह रावत दानू, पद्मिनी रावत, शुभम सौरभ रावत, हरदेव लाल पारा वार्ड सिमका से रमेश कुमार यादव, माया यादव, रिंकू सन्नी, कोमल यादव, सिंगारपुर पैलीमेटा से चिंताराम धुर्वे, कामिन चंद्रध्वज, सानू धुर्वे, मेचका सोनढूर नगरी से भूपेंद्र नाग, पूर्णिमा नाग, लिखिल और तरुणदीप नाग, कोरासी भैसा रायपुर से पवन कुमार साहू, क्रांति देवी, पंकज, सुस्मिता, दीपिका साहू, नेहरू वार्ड भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र, दुष्यंत राघवेंद्र साहू और रसेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या, कीर्ति कुमार और डिकेश साहू। आप सबकी फरमाइश पर फिल्म खानदानी शफाखाना का ये गीत।

रानी शफा खान इस फिल्म का गीत अभी हमने सुना जुबिन नौटियाल और तुलसी कुमार की आवाज़ों में, और अब बारी है शादी में ज़रूर आना इस फिल्म के गीत की, जिसके लिए आवाज़ अरिजीत सिंह की है। गीत लिखा है शकील आज़मी ने, संगीत जांब का है। इस गीत को सुनवाने के लिए पोस्टकार्ड भेजा है हमारे इन श्रोताओं ने, अमली पदर देवभोग से निकुंज तिवारी, लाची तिवारी, ममता तिवारी, डोंगरगांव राजनांदगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, अनिष्का और तन्मय गजभिये, शिक्षक नगर दुर्ग से राकेश वर्मा, सचिन वर्मा, वाणी वर्मा, गोल्डन चौक धनोरा दुर्ग से छगन लाल नागवंशी, मीना नागवंशी, कंचन आराधना, हिमांशु, सिर्री गातापार से लावण्या साहू, उपासना देवराज, ओमपुकार पुष्पराज और प्रभुराम साहू, दरचुरा से ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा मोतीलाल साहू, भाटापारा दत्रेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा, बेमित्रा से पूर्णिमा सारथी, पूजा आरती भाव्या और सुषमा सारथी। इसी गीत को सुनवाने के लिए ईमेल भेजा है हमारे इन श्रोताओं ने, भड़गा कोदवा गोडान से श्याम से मरावी, राजकुमारी रानी, रजनी, राहुल, पूजा मरावी, सुंदरनगर बिलाईगढ़ से जगदीश देवांगन, पुष्पांजलि, जया जानवी, तृप्तेश देवांगन, बाजारवाड महासमुंद से भीष्मदास, नर्मदा कोई ग्राम भंगीटोला से ननकाराम ध्रुवे, जामनबाई ध्रुवे, फिरत राम, मालती ध्रुवे, जसवाड़ी खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु गोलू कुसुमबाई, कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, सचिन वायल, प्रथमेश प्रणाली, सर्वत सानवी और कल्पना देशमुख, पांडरकवाड़ा यवतमाल महाराष्ट्र से अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे और धनश्री बुरांडे, कोयलारी कवर्धा से कैलाश चंद्राकर, मुकुंद चंद्राकर, पूर्णेन्द्र साहिल चंद्राकर, दतरेंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि और नोखेलाल वर्मा, कोका भिलाई से प्रताप पांडे और रेखा पांडे, जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े, बोड़सरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोट, कोटवा नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार और हैप्पी राय, टोरोवाल नमहा शहर पंजाब से गगनदीप, तृप्ता कुमारी, प्रियंका प्रशांत, प्रियम वामिका और वाणी थांदी, दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय, तखतपुर से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदयबान पाल, जयहिंद पाल, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश, दिव्यांश बघेल, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता, रुद्र वर्मा, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना और राजेंद्र सिंह ओबेराय, बुटगहन से रामदुलारी प्रजापति, आर्यनगर कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल मोरस, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष और नंदली जंघेल, पुतकी कला कवर्धा से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर और नयन पांडे, सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंघेल, लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू, हटरी चौक बिलाईगढ़ से खीकराम देवांगन, रेणु, रजनी, प्रियंका देवांगन, धरदेई सरगांव से चंदूलाल पटवा, सुनीता, हर्ष कुमार, विनीत कुमार, कृष्टि पटवा, उच्चभट्टी बिलासपुर से मुकेश गोस्वामी, मधु, आशी, शिवन्या, अन्नू गोस्वामी, पीपरपारा पालचुआ मुंगेली से उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी, भानुप्रिया, योगिता, नितिन, वंशिका दिवाकर, रानीगांव नगरी धमतरी से खिलेश कुमार, चित्ररेखा, शुभम सेजल साहू, चरडोंगरी पिपरिया कबीरधाम से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार, जयकिशन, योगेश वासु, हेमा, राधिका साहू और धुर्राबंधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार, नवीन कुमार और युवराज साहू। आप सबकी फरमाइश पर शादी में जरूर आना इस फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम के आखिरी गीत के लिए फरमाइशी पोस्टकार्ड भेजा है हमारे इन श्रोताओं ने। नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा, शीतला नगर दुर्ग से शिवचंद्राकर, भगवान चंद्राकर, हथनीपारा भाटापारा से चोराम वर्मा, मुकेश दुलारी, दुर्गा दुर्गेश्वरी वर्मा, मगरलोड से पुनूराम साहू, तेजेश्वरी राजश्री, राजवीर साहू, धामणी मानोरा से तुलसीराम डेरे, मायावती, संदेश, आदेश, किरण, प्रज्वल, अनुत डेरे, कोरदा से कलीराम यादव, छतराम यादव, शेषराम यादव, चूड़ी लाइन भाटापारा से अब्दुल मजीद कुरैशी, रेहाना बेगम, मोहम्मद साजिद और चटौद सारागांव से सुजान वर्मा, सौद्रा वर्मा, आयुषी, कृत वर्मा। इसी गीत को सुनवाने के लिए फरमाइशी ईमेल भेजा है हमारे इन श्रोताओं ने। बलौदा बाजार से नंद कुमार ठाकुर, प्रमीला, प्रियंका, दीपक, खुशबू, ज्योति ठाकुर, पिनौरी फिंगेश्वर से टीकम राम साहू, हेमलता, योगेश्वर, बागबारा भदरसी से पन्नालाल सेन, खुशबू, तारा, कौशल सेन, भिलाई नगर से अशोक श्याम कुंवर, प्रमीला श्याम कुंवर, चीनू आसमा, करनाल से सुधीर नूतन, संदीप बुगलानी, जगमोहन प्रजापति, बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक, समर्थ, शौर्य नामदेव, रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी, नोमेश, नेहा, वानिया सिंगरौल, लोरमी तिलकपुर से चंद्र कुमार मरावी, चंद्रेश कुमार, मालती मयंक मरावी, भाटापारा से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल, चंपा साहू, पीपरलोड सरगांव से दीपेश, पूनम, ज्योति और शिवांश वर्मा, बठेना पाटन दुर्ग से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, देवरी भाटापारा से गनुला रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश राम मिस्त्री, हुईनापौर लाटोपोर से टोकेश कुमार साहू, दुलेश्वरी, गंगाराम साहू, सांकरा सोमनी, राजनांदगांव से नारायण लाल साहू, कुलवंतिन देवी, दीवेंद्र प्रताप, नेहा देवी, मिलिंद कुमार, प्रणय कुमार, रुद्रांश प्रताप साहू, अडार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी, गोपी, भूपेश, दीपेश वर्मा, हटौत बाजार लाहौर से कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार, समीर, राजकुमारी पटेल, डोंडी लोहारा बालोद से देवशंकर, अजय कुमार, तुषार, डॉली बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी और राजा दास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी। आप सबकी फरमाइश पर फिल्म मलाल का ये गीत श्रेयस पुराणिक की आवाज़ में।

0: श्रेयस पुराणिक के गाए फिल्म मलाल के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी मीत ये गीत यहीं समाप्त करने की आप अनुमति दीजिए। आप सभी को तारकेश्वरी का नमस्कार। आपके मीत ये गीत फिल्मी गीतों का ये फरमाइशी कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1 बजने को है हिंदी में समाचार। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
1: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। वे 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज स्लोवेनिया के नवनियुक्त विदेश मंत्री टॉन काजर को बधाई दी और उनके साथ मिलकर काम करने की इच्छा व्यक्त की। पूर्व राजनयिक टॉन काजर ने स्लोवेनिया में प्रधानमंत्री जिनेश जानशा के नेतृत्व वाली नवगठित दक्षिणपंथी गठबंधन सरकार में आधिकारिक तौर पर शपथ ली। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई थी और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। उद्योग जगत के अग्रणी और बड़े निवेशक भी आयोजन का हिस्सा होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और इन देशों के बीच व्यापार तथा निवेश के नए अवसर खोजना है। भारत अमेरिका सेना के अधिकारियों की वार्ता को 29वां चरण हवाई में आयोजित किया गया। इसकी सह अध्यक्षता सेना प्रमुख रणनीतिक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और अमेरिकी सेना के उप कमांड जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल वोवेल ने की। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल में आज भारतीय आम के प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 100 से अधिक प्रमुख भारतीय फल आयातकों ने हिस्सा लिया। इसमें महाराष्ट्र के अल्फांसो और केसर, आंध्र प्रदेश के बंगनपल्ली और हिमायत, उत्तर प्रदेश के लंगड़ा दशहरी और गुजरात के पके राजपुरी आम शामिल हैं। अमरीका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों की का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरतें ही पूरा नहीं करता की ये मजबूत व्यापारिक आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। भारतीय वाणिज्य दूतावास ने पिछले वर्ष जुलाई में सिएटल में भारतीय आम की शुरुआत की थी। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। चित्रपट संगीत के इस कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए कुमार सानू की आवाज में। फिल्म का नाम है दिल का क्या कसूर।

कुमार सानू और साथियों की आवाज़ों में दिल का क्या कसूर। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, गीत लिखा था नवाब आरजू ने, संगीत नदीम श्रवण का था।

Akashwadi at 90. चित्रपट संगीत के इस कार्यक्रम में आइए अब सुने साजन का घर। इस फिल्म का गीत कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में। समीर और पी दिवाकर ने इस गीत को लिखा है, संगीत है नदीम श्रवण का।

साजन का घर। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू अलका याग्निक की आवाजों में। चित्रपट संगीत के इस कार्यक्रम में आइए अब सुने अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाजों में समीर का लिखा गीत। संगीत नदीम श्रवण का है, फिल्म का नाम है आशिकी।

चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों का प्रसारण। 1:25 हुए हैं, समय है कार्यक्रम विवरण का।

कार्यक्रम विवरण में आइए अब आपको बताएं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। रात 8:30 पर सुनिएगा स्पोर्ट्स स्कैन और रात 10 आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। इसमें सुनिएगा ऋषिकेश गागोडे का ख्याल गायन। ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम युवा शक्ति सुनिएगा आज रात 9:25 पर। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 1:30 पर होगा महिलाओं का कार्यक्रम का रंगन। इसमें आज के कोर्ट में चर्चा होगी खाद्य सुरक्षा और हमर जिम्मेदारी। साथ ही सुनिएगा फरमाइशी लोकगीतों का क्रम सुर सरिता। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट होगा शाम 5:00। शाम 5:10 पर युवाओं का कार्यक्रम युववाणी सुनिएगा छत्तीसगढ़ी में। इसमें आज अपन गोट का विषय होगा शिक्षा के निर्णय खुद ही ले लो। और क्रम आपन की चिट्ठी और माटी के गीत भी आप सुनेंगे। लोक संगीत के कार्यक्रम में शाम 6:30 पर सुनिएगा छाया शर्मा और साथियों के गाए कुछ लोकगीत। लोक संगीत के ही कार्यक्रम में रात 8:15 पर कलाकार होंगे फिरित पटेल और साथी। चौपाल में शाम 7:21 पर आज की बात में चर्चा खेती मां प्लास्टिक प्रदूषण के प्रभाव। 7:30 पर किसान वाणी में क्रम आज की सलाह में श्रीमती पुष्पा साहू बताएंगी घर के छत मां जैविक विधि ले सब्जी और फल उत्पादन के बारे में। चित्रपट संगीत सुनिएगा दोपहर 2:00, 2:30, शाम 7:00, रात 8:00 और रात 9:15 पर भी। श्रोताओं हम आपको एक बार फिर बता दें आज रात 8:30 पर आप सुनेंगे स्पोर्ट्स स्कैन और रात 10:00 सुनिएगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। इसमें आप सुनेंगे ऋषिकेश गागोडे का ख्याल गायन। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम युवा शक्ति सुनिएगा आज रात 9:25 पर। युवाओं का कार्यक्रम युववाणी शाम 5:10 पर आज आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में। इसमें अपन गोट का विषय होगा शिक्षा के निर्णय खुद ही ले बाओ। और आप सुनेंगे क्रम आपन की चिट्ठी और माटी के गीत भी। चौपाल में शाम 7:21 पर आज की बात में चर्चा खेती मां प्लास्टिक प्रदूषण के प्रभाव। 7:30 पर किसान वाणी में क्रम आज की सलाह में श्रीमती पुष्पा साहू बताएंगी घर के छत मां जैविक खेती जैविक विधि ले सब्जी और फल उत्पादन के बारे में। लोक संगीत के कार्यक्रम में शाम 6:30 पर कलाकार होंगे छाया शर्मा और साथी और रात 8:15 पर कलाकार होंगे फिरित पटेल और साथी। चित्रपट संगीत सुनिएगा दोपहर 2:00, 2:30 पर शाम 7:00, रात 8:00 और रात 9:15 पर भी। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन।

0: सबो बहनी मन ल आशा के राम राम। बहनी हो, जब हम छोटे रहें ना तो हमर महतारी और डोकरी दाई मन खाद बेरा यही चेतातिन कि थारी बटकी माँ थोर को सीधा नहीं छोड़ना है, बने रपोट के खाना है। अपन सियान मन ला हम ऐसन करा तको देखे हवन कि जेन थारी माँ मन भोजन करतीन वो थारी माँ आखिर माँ पानी रार के बने रपोट के पीतीन। तो एकर माने यही रीस न बहनी हो कि अन्नपूर्णा माता के अपमान नहीं करना है और अन्न ला ब्रह्म तको माने गए है। तो अन्न के अपमान माने भगवान के अपमान, और ये बात हमार लोग लेका और अवैया पीढ़ी ला तको जानबा होना चाहिए कि एक एक दाना माँ धरती के बेटा किसान के दिन रात के मेहनत लकलकावत घाम तो कड़कड़ावत जाड़ तो बरसत पानी माँ करेगे मेहनत के फलाए। और संग माँ धरती माँ तारी के मया और प्रकृति के आशीर्वाद तको हरे। और इन्हें वो अन्न सिर्फ पेट भरे के साधन नो है, ये तो प्रसाद आए प्रकृति के। और जब एक गरीब भूख ले व्याकुल मन के भोजन करते ना तो अगर चेहरा में जो संतोष के भाव दिखते वो बेरा माँ वो अन्न के महत्ता और ज्यादा समझ में आते। और यह बात सही आए कि यही अन्न हमला जिए के शक्ति दे थे, परिवार ला जोड़ के राख थे और समाज में खुशहाली लान थे। तो आज जरूरत ये बात की हवे कि हम अन्न के बर्बादी रोकन, अन्न उपजैया के मान गौन करन और हमर अवैया पीढ़ी पर अन्न ला बचा के राखन, तभी हर घर में भोजन पहुंची और कोनो भूखे पेट नहीं सुधे। अब इन्हीं आज जनसंख्या बढ़त है, मौसम में कतका बदलाव देखब में आते, कोनो मेरा काल दुकाल बाढ़ जैसन समस्या बढ़त है और ये सब के प्रभाव हमार खेती किसानी ऊपर पड़त है। तो एकर ले खाद्यान्न सुरक्षा के महत्ता और ज़्यादा बढ़ जाते। और खाद्यान्न सुरक्षा सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी नो है, सरकार तो अपन स्तर में जोन करना है तो उन करते छे, ये हम सबके तको जिम्मेदारी आए। तो एकर बार हमला का करना है, बस छोटे छोटे प्रयास, जैसे कि जत का हमला खाना है ओतके छम थारी में भोजन लेवन और कहूँ भोजन बाँचा थे ओला फेंकन डारन झन, जरूरतमंद मनखे मन ला भोजन करावन और संग माँ पानी ला तको बचावन, खेती की जमीन ला बचावन और अन्न उपजैया किसान मन के कदर करन। अन्न तो हमार जिंदगी के आधार है बहनी हो, और जिन घर में अन्न रही थे वहाँ खुशहाली तको रही थे। काली 7 तारीख के है खाद्यान्न सुरक्षा दिवस, तो हम ये बेरा माँ परन करन कि हर मन खेला समय में भर पेट साफ सुथरा और पुष्टि के भोजन मिले जेखर ले वो स्वस्थ और सुखी जिंदगी जी सकें। और जब पेट भरा और स्वाद के पुष्टि भोजन मिलते ना बहनी हो तो हमार मन तो को खुश हो के जिंदगी के सबो सुख के मजा उठाते, गीत संगीत सुनते, अपन फरमाइश भेजते, गाना सुने खातिर अपन मनपसंद कार्यक्रम घर आंगन माँ क्रम सुर सरिता माँ। और हम हमेशा तैयार रहन हमार श्रोता बहनी मन के फरमाइश पूरा करे बर, तन नेक काज माँ देरी काबर, आवो सुनवा थन आप मन के पसंद के ये पहले गीत ला जिन ला स्वर दे हैं भगत साहू ओंकर संगवारी।
1: दही

बहनियों, ये सुघर गीत पर फरमाइश आप सब श्रोता बहनीमन के रही से लुकाओ पाली छतवन ले निर्मला सिंह, निहारिका सिंह, जया सिंह, सूर्यवंशी रानीगांव नगरी ले हैं चित्ररेखा साहू, उर्वशी साहू, राधाबाई साहू, चंद्रा, वीणा और कुमारी सेजल साहू। सरसपुर लोरमी ले हैं सतीबाई साहू, उर्वशी, माही, अंशु, दामिनी और पार्वती साहू। गांव तेंदुभाटा मगरलोड, जिला धमतरी ले श्रीमती मोहेश्वरी निसार, देविका, नूतन, लक्ष्मी निसार। नागर कोहरा जिला राजनांदगांव ले जामुन देवी साहू, पूजा देवी, निशा, वैजंती, समीक्षा, श्वेता और आराध्या साहू। लक्षनपुर ले हैं गीताबाई साहू, रश्मि, निम्मी, श्रुति साहू। आर्यनगर कोका ले श्रीमती मोरस जंघेल, गायत्री सकून, योगेश्वरी, आरुषी, ओसिका, अंजलि और नंदनी जंघेल। और बनबघेरा जिला राजनांदगांव ले हैं अंजलि और रोशनी सारवा। अब इन्हीं हो देखो ए दे आज हो गए जून महीना की 6 तारीख। 10 दिन बाद हमार पढ़ैया लिखैया स्कूल जबैया लोग लेकर मन के स्कूल खुल जाए तो भाई एकर बार तैयारी तको करना जरूरी है। जैसे उमर नवा कक्षा जात हैं तो उनकर बार कापी, किताब, बैग, पेन, पेंसिल और दूसर जरूरी जिनिस के तैयारी उमर ला करवा लेवन। कापी पुस्तक में जिल्द चढ़ाए बार कही देवन, नान्हे लड़का है तो हमें चढ़ा देवन। और सबले बड़े बात छुट्टी के बाद पढ़ाई की आदत छूट जा रही थे तो भाई पढ़ाई की आदत बनी रहा है एकर बाद धीरे धीरे थोड़ थोड़ अपन लोग लेकर ला पढ़े की आदत डारन। बेरा में सुते के उठे के आदत बनाए बर लगी। उनकर खान पान, उनकर तबियत पर ध्यान देना जरूरी है जेकर ले स्कूल के पहले दिन लेका बने चंगा रहा है और पढ़े में मन लगाए। और लोग लेका के तैयारी के संगे संग आप मन अपन पसंद के ये दूसरे या गीत ला सुने बर झन छोड़ो काबर की दुनियादारी निभावत हमला अपन शौक ला तको तो पूरा करना है ना। तो आओ सुनन ये गीत ला जो ला स्वर दे हैं विदुषी ममता चंद्राकर।

बेनी हो, ये गीत पर आप सबो बहनी मन के ईमेल आए हवे। अंजनी अंगारे, त्र्यंबिका, लीना, अंशुमाला, अनु अंगारे, आप बहनी मन हो बंगला मटिया बालोद, और सुनंदा शर्मा बहनी हैं भनपुरी ले, और आप बहनी मन हो गांव फुलझर घटारानी जिला गरियाबंद ले, डुमेश्वरी साहू, यामिनी साहू, मुस्कान, हर्षिता, पूर्वी साहू, धरसीवा बस स्टैंड ले है श्रीमती अर्चना, अरुणा यादव, अनुराधा, अल्पना यादव और राबिया कुरैसी, दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर ले है श्रीमती पुष्पलता यादव, नीतू, अर्पिता यादव, राजेश्वरी यादव और रानू साहू, खुशी साहू, अटल रेडियो श्रोता संघ सांकरा सोमनी ले कुलवंतीन देवी साहू, यशोदा देवी साहू, नेहा देवी, डिलेश्वरी देवी साहू। ये गीत ला आप सबो बहनी मन पसंद कर रहे हो और यहू बहनी मन ईमेल भेजे हैं। कुंती देवी यादव, गंगोत्री देवी, मानिकपुरी, कन्हारपुरी, राजनांदगांव ले आप मन हो कुमारी देवी साहू, दीपाली, हेमलता और कुमारी भेविका साहू, और ये बहनी है अरमरी खुर्द बटरेल दुर्ग ले जैनी वार्डे, नेहा वार्डे और कुमारी त्विशा वार्डे। और बहनी हो देखो, जब जिम्मेदारी के बात आते ना तो ऐसा काम आए जिनला हमला हृदय ले करना चाहिए, काकरो कहे बेले की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, चाहे वो घर परिवार भर हो, समाज भर हो, देश भर हो या फिर प्रकृति भर हो। जैसे कि हम घर में ना नान नान काम करके पर्यावरण ला हम बचा सकते हैं। पहली बात तो पानी की बचत करना है, दूसरा बिजली ला बने चेतलब होके बउरन, प्लास्टिक के झिल्ली है, डिस्पोजल गिलास है, इला हम काम में लाए बर बंद करन, और अपन घर द्वार के संगे संग गली खोर मोहल्ला ला बने साफ सुथरा रखन, अपन लोग ले का संग मिलके पेड़ पौधा लगावन बहनी हो, और चिरई चिरगुन बर भोजन पानी की व्यवस्था करके उनकर जीव ला बचावन। काबर की भाई जैन संस्कार हम अपन लोग लेकर देबू ना, वही संस्कार समाज के भविष्य बने, और उज्जर भविष्य हमार जिंदगी में उछाल आई, और ये उछा और तब बाढ़ जथे जब हम क्रम सुर सरिता माँ आप मन के पसंद के ये गीत ला सुनवा थन। तो आवो सुनन ये अवैया अगला गीत ला जो ला स्वर दे राकेश तिवारी और उनकर संगवारी।

0: दुखदाई झन काटोगा, बुझही दुखदाई झन काटोगा,
1: पेड़ रुख राई झन काटोगा, बुझही दुखदाई झन काटोगा।
2: बेनी हो पर्यावरण के संदेश देवर ये सुघर गीत ला आप सब बहनी पसंद करे रहे हो। गांव परसा टोला अंबागढ़ चौकी ले सिलोचनी मसिया तुसारणी सीला पायल गरिमा दीपिका रोहिणी काजल मेधा वर्षा और झुनियाबाई मसिया गंडई टिकरी पारा ले आप बहनी बन हो श्रीमती कचरीबाई देवांगन श्रीमती जयश्री देवांगन कुमारी हिमांशी देवांगन गांव नेवई उतई ले श्रीमती उर्वशी देवांगन कुनिका दीपशिखा देवांगन और करही भदर ले शारदा निर्मलकर जमुना निर्मलकर चंद्रिका और राधा निर्मलकर और ये आप बहनी मन हो महामाया पारा ग्राम दरचूरा ले भूरीबाई साहू संतोषी दुलोरीन कामेश्वरी कुमारी और मोतीमबाई मानिकपुरी धनवंतीन बाई योगिताबाई मानिकपुरी गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार तहसील डौंडी लोहारा ले और छत्तीसगढ़ रिंगनी ले करुणा वर्मा प्रियंका बंछोर नर्मदा धाम सुरसुली ले आप बहनी मन हो बिंदु यादव सरस्वती यादव कविता यादव और ममता यादव और आप बहनी मन हो जिनवानी रेडियो श्रोता परिवार सिमगा ले श्रीमती सविता जैन और मोनिका जैन और बहनी हो देखो हम जब बात करता ना अपन स्वास्थ्य के तो यही कहे जाते कि सबले बड़े सुख निरोगी काया दूजा सुख घर में माया माने हम स्वस्थ रहबो तभी तो सुखी रहबो और माया लबोर पाबो तो एकर बर बने खान पान के संगे संग योग और प्राणायाम के बहुत महत्ता हवे काबर सिर्फ ये एक व्यायाम नो है बल्कि स्वस्थ और जिंदगी जिए के एक ढंग आय कहान ऐसे माने जाते कि रोज योग करेले हमर तन स्वस्थ रहे थे मन शांत होते और शरीर में नवा उछा और जोश बार थे योग है तनाव लतको कम करते

हूँ और कतकोन प्रकार के बीमारी ले बचाए में मदद करते। तो योग करे के संगे संग सुघर गीत, आपके मन पसंद के गीत हम सुनवा था ना आपला, जो आप मन में उछाला और दुगुना बढ़ा दे। तो आवा सुनन ये गीत ला जो ला स्वर दे राधा साहू और रमेश यादव।

से कन्नेवाड़ा ले लक्ष्मीना सोनवानी, यशोदा ठाकुर, संगीता ठाकुर, अनीता तारम, चंद्रकला यादव। पोटिया कलादुर्ग ले श्रीमती सुजाता, सीमा साहू, सोनू और गुड़िया। लच्छनपुर ले हैं कुंती साहू, सरोजनी, आरू साहू। लोरमी गांव चचेड़ी ले प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, रिंझा तनु, राही मरावी। गांव जुनवानी दुर्ग ले श्रीमती तारा विद्या साहू, बेबी विधि, दीपिका साहू, बेबी कविता, सृष्टि साहू। नवागंज वार्ड भाटापारा ले हैं कुमारी वीरा साहू, कुमारी कुमकुम, श्रीमती योगेश्वरी साहू। भाटापारा ले हैं पद्मिनी रावत, शीला यादव, गुनगुन यादव, अदिति, खुशी और आप बहनी मन हो। चर डोंगरी पिपरिया कपीरधाम ले श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी साहू, श्रीमती मायावती साहू। गांव कोरदा ले हैं रेशमी यादव, जानकी यादव और अमरपुर पेंड्रा ले आप बहनी मन हो। रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, अंजुलता, दिशा, रूही और लवि श्रीवास्तव और छत्तीसगढ़ बेमेतरा ले आप बहनी मन हो श्रीमती पूर्णिमा सारथी, पूजा आरती, भाव्या सारथी और श्रीमती सुषमा सारथी। अब इन यू देखो भाई गर्मी के दिन है ना, अब ऐसन में का है मौसम है कोनो कोनो जगह कभू घाम दिखावत है तो कभू बादल छावत है और कतकुन जगह तो भाई पानी गिरे के तको समाचार मिलत है। तो ऐसन में कहावत है मौसम न देखत हुए अपन खान पान के हमला ध्यान रखना है, घाम में नहीं निकलना है, फिर रोजी रोटी तो लगे हुए बहनी हो। निकलना जरूरी है तो बने जोड़ जोड़ में निकलन, बने मूर काला तोंक के ढाक के निकलन है ना, और दही है, मही है, आमा के पना है, ये सब बोले पियन बहनी हो और अपन स्वास्थ्य के ध्यान रखन। और एक संग आज के कार्यक्रम ले होत है मर जाए के बेरा, तो देवो अपन बहनी आशा विदा हो ले हमार राम राम।

महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2 बजे हैं, लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। पहला गीत सुनिए आशा भोसले, आदित्य और ऋचा की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा हुआ। संगीत ए आर रहमान का है, फिल्म का नाम है ताल।

0: AIR at 90. आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम।
1: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
0: चित्रपट संगीत के इस कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए फिल्म लकी का गीत अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाजों में। समीर ने इस गीत को लिखा है, संगीत है अदनान सामी का। ता ता।

0: चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:15 होने को हैं। दोपहर समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। CBSE ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिल्का मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
3: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। RBI ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए पहले से लागू सामान्य और दीर्घकालिक निवेश सीमाओं को भी एक कर दिया है। नए दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। राज्य वित्त आयोगों के लिए डाटा सेट संबंधी समिति की रिपोर्ट 8 जून को जारी की जाएगी। केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ वी अनंता नागेश्वरन ने इस रिपोर्ट को जारी करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा है कि इस रिपोर्ट का जारी होना राजकोषीय विकेंद्रीकरण के लिए प्रमाण आधार को मजबूत करने की दिशा में सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मंत्रालय के अनुसार यह रिपोर्ट राज्य वित्त आयोगों के लिए आवश्यक प्रमुख डाटा सेटों का एक सुव्यवस्थित और व्यापक विवरण प्रस्तुत करती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधी सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्यों से आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह दौरा भारत और नेपाल के बीच विशेष साझेदारी को और मजबूत करेगा।
4: With Nepal, we have an expansive agenda.
5: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
4: Partnership that we have with Nepal.
1: भारत के तीन दिन के दौरे पर आए नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ोन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। CBSE ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 40 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता का दोगुना होना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रगति का भी प्रमाण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। श्री वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ कोलकाता के नबन्ना में आयोजित एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 10 अमृत भारत स्टेशन पहले ही पूरे हो चुके हैं, जबकि 9 वंदे भारत एक्सप्रेस और कई अमृत भारत रेलगाड़ियां चल रही हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्ष में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
6: मेट्रो के लिए 60 न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
1: मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं को लागू करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के निष्कर्षों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणियों का खंडन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि जन स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। श्री नड्डा ने बताया कि पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़कर 87.1% हो गया है, जबकि स्वास्थ्य बीमा कवरेज 4.9% से बढ़कर 60.2% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये प्रगति स्वास्थ्य सेवा, पोषण, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन और अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने में निरंतर निवेश का परिणाम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इसराइल से स्वतंत्र होकर निर्णय लेने, होर्मुज जल टमरू मध्य में नाकाबंदी समाप्त करने और ईरान की जब्त संपत्तियों को छोड़ने का आह्वान किया है। रेजाई ने एक टेलीविजन चैनल के साथ साक्षात्कार में कहा कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता गतिरोध में है और ट्रंप को इस गतिरोध को तोड़ना होगा। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
7: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
8: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
1: मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। मौसम विभाग ने केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में अगले दो दिन में तेज वर्षा हो सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर में बिजली चमकने और तेज हवाओं का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बीते दिनों की गर्मी के बाद सुहावने मौसम से जनजीवन को काफी राहत मिली है।
9: हिमाचल प्रदेश में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के रोहतांग और कुंजम दर्रों पर बीते रोज हल्का हिमपात तथा कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के लिए अंधड़, ओलावृष्टि, वर्षा और बिजली गिरने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। वैभव ने IPL 2026 में सर्वोच्च रन बनाए थे। प्रिंस यादव को भी टीम में जगह मिली है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। चायकाल तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 209 रन बना लिए थे। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा राष्ट्र की सच्ची शक्ति हैं और विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति हैं। नई दिल्ली में आयोजित मेरा भारत युवा सम्मेलन में डॉक्टर मांडविया ने ये बात कही। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल भारतीय आम का प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आज आयोजन किया गया। अमेरिका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरतें ही नहीं करता, बल्कि ये मजबूत व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। और श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत का कार्यक्रम।

0: इजाजत। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना आशा भोसले की आवाज में, गीत लिखा था गुलजार ने, संगीत राहुल देव बर्मन का था।
1: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
2: फोनिंग फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर।
3: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फराए।
1: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
4: गीत मेरे होठों को दे गया कोई।
1: कभी कोई किस्सा याद आता है। कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
5: मुझे कुछ कहना है,
6: मुझे भी कुछ कहना है।
1: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर। सुनिए।

लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में गुलजार का लिखा गीत। फिल्म लिबास के इस गीत की धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: कैसे वर्षा, प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी कर थसकाते हैं?
1: नहीं सुमित, ज्ञान बढ़ाए बर पढ़थो फिर पढ़ के भुला जाथो।
0: अरे तो सुने करना,
1: कैसे बात करत हस, किताब हथोड़ी न बोली मुर करा।
0: मैं किताब की बात नहीं करत हूँ वर्षा।
1: त काखर बात करत हस?
0: मैं बात करत हूँ युवाणी के, जिमा हर मंगलवार को होते तोर ज्ञान मा वृद्धि।
1: वो कैसे सुमित?
0: वैसे वर्षा, युवाणी मा तय सुनबे क्रम सवाल जवाब और संग माँ माटी के गीत, हमार गांव, आप मन के चिट्ठी और अपन गोठ मना नवा नवा विषय के बारे में जानकारी मिलते। और एकर असन कई ठन कार्यक्रम हवा जिला सुने बर ते बैठबे ना तो कब तोर बेला ढलंग जही ना पता नहीं चले। और मनोरंजन के तो का कहना भाई।
1: वाह, एक के कार्यक्रम में इतना कुछ, तब बेरा लग हलो बताना सुमित।
0: बेरा हवा है संझा कुन 5:10 ले जिन शुरू होते ना वर्षा, तेना 6 तक चलते, जेमा तह मंगलवार, गुरुवार और शनिचर के छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम सुनबे और बाकी दिन हिंदी में।
1: तब तो सुने ला पढ़ी
2: एक संग युवाणी।

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में लीजिए सुनिए गुलजार का गीत। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है, फिल्म का नाम है गुलामी।

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में। गुलजार का लिखा गीत अभी आपने सुना। अगले गीत से पहले श्रोताओ एक सूचना सुनिए। आगामी मंगलवार यानी 9 जून 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो किसान वाणी कार्यक्रम का विषय होगा वर्षाकालीन सब्जियों की नर्सरी। इस विषय पर आपकी जिज्ञासाओं और समस्याओं के समाधान के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर कमल नारायण वर्मा, विषय वस्तु विशेषज्ञ उद्यानिकी कृषि विज्ञान केंद्र पहांदा दुर्ग। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 4003482, दूसरा नंबर है 4003483 और तीसरा नंबर है 4003484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग 9 जून 2026 को दिन में 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार को ही शाम 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई और इस सूचना के बाद चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुने बप्पी लाहिरी और आशा भोसले की आवाजों में इंदिवर का लिखा गीत। संगीत बप्पी लाहिरी का है, फिल्म का नाम है प्रेम प्रतिज्ञा।

फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सरायपाली केंद्र है। 3 बजे हैं, हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। 5 बजे अपनी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ इसी मीटर पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

0: विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। आरबीआई ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए पहले से लागू सामान्य और दीर्घकालिक निवेश सीमाओं को भी एक कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में विशिष्टता बनाए हुए है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये दौरा भारत और नेपाल के बीच विशेष साझेदारी को और मजबूत करेगा।
1: With Nepal, we have an expansive agenda.
2: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
1: Partnership that we have with Nepal.
0: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने एक रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने के लिए जा रहे थे, तभी ये दुर्घटना हुई। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड

मामले में एक रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। श्री वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ कोलकाता के नबन्ना में आयोजित एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हर घर और खेत को ऊर्जा का केंद्र बनाने के संकल्प के साथ भारत 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है। मौसम विभाग ने केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 मेगाहर्ट्ज़ है। आइए साथियों, अब सुनते हैं एक फिल्मी गीत फिल्म छाया से। गायक हैं तलत महमूद और लता जी।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 मेगाहर्ट्ज। कुछ ही देर में साथियों, अब हम सुनने जा रहे हैं विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग। आइए सुनते हैं इस विशेष कार्यक्रम को।

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर उपेंद्र नाथ रैना जी, जो आकाशवाणी दिल्ली में उप निदेशक कार्यक्रम के पद पर कार्य कर चुके हैं। वे मूल रूप से जम्मू कश्मीर से हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी सक्रिय रहे हैं, साहित्यकार हैं, बहुत सी काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुकी है और पुरस्कृत भी हुई है। इन्होंने कश्मीर की संस्कृति, लोक कला, लोक संगीत और साहित्य को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आकाशवाणी में अपने लंबे कार्यकाल के दौरान उन्होंने अनेक सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों का सफल संचालन और निर्माण किया। आज हम उनसे आकाशवाणी की गौरवशाली यात्रा, उसकी सांस्कृतिक भूमिका और उनकी व्यक्तिगत स्मृतियों के बारे में बातचीत करेंगे। आपका हार्दिक स्वागत है सर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी से आपका जुड़ाव कैसे हुआ, अपने शुरुआती दिनों की कोई विशेष स्मृति जो हमारे श्रोताओं के साथ आज यहाँ आप साझा करना चाहें।
1: आकाशवाणी के जो 90 वर्षों का सफर है, मैं उसके लिए शुभकामनाएं दे रहा हूं। मूल रूप से आकाशवाणी का उद्देश्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी जो हम लोक सेवा करते हैं आकाशवाणी के माध्यम से, वो जन जन तक वो संदेश जाते हैं और सभी जो देशवासी है उनके लिए आकाशवाणी के कार्यक्रम बहुत ही लाभदायक होते हैं।
0: सर, जो आप अपने शुरुआती दिनों की कोई विशेष स्मृति जो आकाशवाणी से जुड़ी हो आपकी।
1: मैं मूलतः तो मैं कश्मीर से हूँ। मेरे जीवन के जो प्रारंभिक 30 वर्ष हैं वो श्रीनगर कश्मीर में बीते हैं और उन दिनों रेडियो कश्मीर श्रीनगर हुआ करता था, अब आजकल वो आकाशवाणी श्रीनगर हो चुका है। आकाशवाणी से मेरा शुरू से इसलिए रिश्ता है कि मेरे पिता रेडियो कश्मीर श्रीनगर में बहुत ही प्रसिद्ध प्रसारण कर्मी रहे हैं। उन्होंने अपना जीवन रेडियो कश्मीर से ही प्रारंभ किया है। तो चूंकि परिवार में मेरे पिता थे रेडियो में, तो मुझे भी वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे जीवन में भी उसका प्रभाव आ गया। मेरा डॉक्टरेट का विषय था, वो था साठोत्तरी हिंदी तथा कश्मीरी कविता में आधुनिक संवेदना, और साथ साथ में मैं चूंकि रेडियो आता जाता रहा है, कार्यक्रमों में मेरी कहानियां, कविताएं और अन्य जो वार्ताएं हैं रेडियो कश्मीर से प्रसारित होती रही है। इस तरह से शुरू में मैं श्रीनगर में आकाशवाणी से जुड़ गया।
0: हम ये भी जानना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है वो आकाशवाणी के माध्यम से आपको प्रस्तुत करने का अनुभव कैसा रहा?
1: रेडियो कश्मीर में मैंने व्यक्तिगत रूप से वहाँ पर कोई नौकरी नहीं की है, लेकिन जब कभी वहाँ के जो उत्सव है, वहाँ जो लोक संस्कृति है, वहाँ के जो लोक गीत है, उन पर बीच बीच में मैं अपनी वार्ताएं, अपने कार्यक्रम देता रहा है अलग अलग कार्यक्रमों में। शुरुआत में मैं जो युवाओं के लिए यानी युवा वाणी कार्यक्रम जो प्रसारित होते थे उनमें मैं भाग लेता रहा, तो उनमें उस तरह से मैं जुड़ता रहा। यानी ये तो कश्मीर की बात है, लेकिन 1983 में जब मैं आकाशवाणी में मैंने प्रवेश किया एज प्रोग्राम ऑफिसर, कार्यक्रम अधिशासी के रूप में मेरा सिलेक्शन UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से हुआ। मेरा पहला प्रवेश जो नौकरी के रूप में हुआ वो आकाशवाणी दिल्ली में हुआ था। उस दिन 28 फरवरी 1983 का दिन था, तो वो मेरा पहला दिन था आकाशवाणी के प्रसारण भवन में। वहां से मुझे अपने जीवन का और प्रसारण कर्मी के रूप में मैंने आरंभ किया है। और दूसरी बात थी, चूंकि दिल्ली राजधानी है और दिल्ली में बहुत सारे बड़े बड़े साहित्यकार, बड़े बड़े विचारक हुआ करते हैं, तो उनको वहां पर आने का अवसर मिलता था। वो अपने कार्यक्रम में यहाँ पर आकाशवाणी दिल्ली से भाग लेते थे और उनसे भी मुझे मिलने का अवसर मिला। उनके सानिध्य में मुझे बहुत प्रशिक्षण मिला और सीखने को मिला। इस तरह से वहां से मेरी आकाशवाणी की विधिवत रूप से यात्रा शुरू हुई।
0: समय है एक म्यूजिकल ब्रेक का, तो सर आपसे आपकी पसंद का कोई गीत सुनना चाहेंगे।
1: आप जानते हैं कि हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जो कल ही था, तो इसलिए इस अवसर पर मैं एक बहुत अच्छा गीत है, हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन।
0: बिल्कुल।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर उपेंद्र नाथ रैना जी। सर, आपने साहित्य विशेषकर काव्य लेखन किया है, बहुत सी पुस्तकें आपकी छप चुकी हैं, तो आकाशवाणी ने आपकी इस प्रतिभा को निखारने संवारने में कैसे मदद की?
1: देखिए, मैं मूलतः नाटकों में मेरी बहुत ही अभिरुचि थी। कश्मीर में मैंने कम से कम 10-12 साल थिएटर का काम भी किया, बहुत सारे नाटकों का निर्देशन किया, बहुत सारे नाटक लिखे, आकाशवाणी से भी वहां प्रसारित होते रहे। और कवि इसलिए मैं बना क्योंकि मेरे पिता कवि थे और उनका प्रभाव मेरे ऊपर बहुत आ गया। 1980 में मेरा पहला काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुका था, चीख भी एक भाषा है। वो दिल्ली से वो पुस्तक प्रकाशित हो चुकी थी और उसके बाद जब मैं 1983 में दिल्ली आया, उसके बाद मेरी वो काव्य यात्रा भी आकाशवाणी के कार्यों के साथ साथ वो चलती रही। आकाशवाणी के कविताओं के कार्यक्रम थे, उनमें बहुत सारे कवि, उनको हम आमंत्रित करते थे, उनके सानिध्य में आने का, उनके मार्गदर्शन में आने का मुझे मौका मिला। और सबसे बड़ी बात है कि कार्यक्रम अधिशासी के रूप में सर्वभाषा कवि सम्मेलन जो आकाशवाणी से हर वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या जिसका प्रसारण होता है, उसमें मैंने अनुवादक कवि के रूप में भाग लिया और साथ में कार्यक्रम अधिशासी के रूप में सर्वभाषा कवि सम्मेलन था उसका इंचार्ज होने का भी मुझे अवसर मिला है। कई वर्षों तक मैंने वो कार्यक्रम भी देखा है। इस तरह से साथ साथ में मेरी कविताओं की यात्रा भी चलती रही और 1990 में जब कश्मीर में निर्वासन हुआ कश्मीरी पंडितों का, मेरा एक काव्य संग्रह तैयार हो रहा था आत्मदाह, तो उसमें निर्वासन पर भी कविताएं हैं और 1991-92 में उसको फिर राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इस तरह से कविताओं की यात्रा भी मेरी चलती रही।
0: और साथ ही सर, हम आपसे कोई आपकी ही कविता सुनना चाहेंगे।
1: एक कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करूं, ये माँ को समर्पित है। इसका शीर्षक है, तुमने ही तो कहा था। तुमने ही तो एक दिन कहा था माँ, जब भी सदी का व्याकरण आदमी की भाषा में रद्द होने लगेगा तो अवश्य एक ऐसा हाथ उगेगा जिस पर रेखाओं के बदले लिखा होगा तदात्मानम सृजाम्यहम्। मगर इस भाषा में अभी तक कोई भी हाथ नहीं उगा माँ। हाथ उगे असंख्य कटे हाथ, नारों की शक्ल में ऊपर उठ उठ कर खोजते रहे अपने भाग्य को, क्योंकि उस पर न कोई भाग्य ही लिखा था, न ही इस सदी की कोई

0: भाषा, ये कविता मैंने आपके समक्ष रखी, ये मेरी पुस्तक में प्रकाशित हो चुकी है।
1: बहुत बढ़िया कविता है सर। आपने आकाशवाणी के बदलते स्वरूप को काफी करीब से देखा है, आपके अनुसार समय के साथ इसमें क्या मुख्य परिवर्तन आए हैं?
0: आकाशवाणी को मैंने श्रीनगर में भी देखा और मैं बहुत ही गर्व के साथ कहता हूँ, हालांकि मैंने रेडियो कश्मीर श्रीनगर में व्यक्तिगत रूप से काम नहीं किया है, लेकिन उन दिनों रेडियो कश्मीर श्रीनगर को पूरे आकाशवाणी सिस्टम में एक मॉडल स्टेशन के रूप में माना जाता था। बहुत बड़े बड़े प्रसारण कर्मी, विचारक, नाटककार और अन्य विभागों के जो कार्यक्रम अधिकारी थे रेडियो कश्मीर में, एक तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा और सही मायने में प्रसारण क्या होता है और लोगों के लिए जो जन जन तक पहुंचने के लिए प्रसारण का जो दायित्व है वो कैसा रहना चाहिए, किस तरह से कार्यक्रमों का निर्माण करना चाहिए। और उसके बाद दिल्ली में आकर मुझे एक बड़े फलक पर काम करने का मौका मिला, क्योंकि रेडियो कश्मीर में तो केवल कश्मीर के लिए वो कार्यक्रम हुआ करते थे, लेकिन जब मैं दिल्ली आया तो राजधानी के रूप में आकाशवाणी दिल्ली का रोल ये था कि दिल्ली के लोगों के लिए तो कार्यक्रम होते ही थे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के जो कार्यक्रम हुआ करते थे वो आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित होते थे, अब भी होते हैं, उसका स्वरूप इतना बड़ा था और उस स्वरूप में मुझे काम करने का मौका मिला और उसमें बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम राष्ट्रीय प्रसारण हुआ करते थे। और आपको मालूम है कि जो गणतंत्र दिवस परेड की जो कमेंट्री होती है या स्वतंत्रता दिवस की कमेंट्री होती है, ये बड़े बड़े जो राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम होते हैं उनका निर्धारण और उनका ब्रॉडकास्ट दिल्ली से ही होता है, तो इस तरह से उस आयाम में मुझे काम करने का मौका मिला। बीच में मेरे लिए सौभाग्य की बात रही कि एक दो साल मुझे आकाशवाणी मथुरा में जो एक स्थानीय रेडियो स्टेशन है उसमें व्यक्तिगत रूप से कार्यक्रम प्रमुख के रूप में काम करने का मौका मिला, तो ये मैंने सीखा है और ये स्वरूप बदलते हुए देखा कि किस तरह से जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके लिए किस तरह से कार्यक्रमों का प्रसारण और निर्माण करना चाहिए। तो इस तरह से हर पग पर आकाशवाणी का स्वरूप बदलता गया और खास करके जब तक FM गोल्ड और FM रेनबो नहीं हुआ करते थे, बहुत ही सीमित चैनल्स हुआ करती थी आकाशवाणी में। मुझे याद है उन दोनों दिल्ली ए, दिल्ली बी, इस तरह से विविध भारती तो था ही, या विज्ञापन प्रसारण सेवा उसका दूसरा स्वरूप था। और उसके बाद जब FM चैनल्स आने लगे तो उस तरह से कार्यक्रमों का स्वरूप और उनका आयाम और उनका जो टारगेट ऑडियंस है वो बदलने में, क्योंकि FM खास करके युवाओं के लिए बहुत ही लाभप्रद रहा, उसमें उनकी भागीदारी रही और व्यक्तिगत रूप में उनमें युवाओं को आमंत्रित किया गया कार्यक्रमों का प्रसारण करने में। इस तरह से चूंकि मेन उद्देश्य जो जैसे मैंने पहले कहा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है, ये पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग के लिए है, यानी हमारा उद्देश्य है कि जन जन को सूचित करना है, उनको संदेश देना है और उनके बेटरमेंट के लिए, उनको इसके माध्यम से शिक्षित करने के लिए कार्यक्रमों का निर्माण करना है, और चाहे वो FM हो या प्राइमरी चैनल हो या दिल्ली ए जो पहले हुआ करती थी, बाद में उसका नाम बदल दिया गया, इंद्रप्रस्थ चैनल वो अलग से फिर बन गया, लेकिन कार्यक्रमों के जो भीतर अंतर्निहित जो उद्देश्य है वो यही है कि हमें पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग करनी है।
1: समय है एक और पसंद के गीत को सुन लिया जाए, तो सर एक और आप अपनी पसंद का कोई गीत बता दीजिए।
0: जगजीत सिंह मेरे प्रिय गजल गायक हैं।

0: अब चलते चलते आकाशवाणी परिवार और देश भर के श्रोताओं के लिए आप सर कुछ कहना चाहेंगे?
1: आकाशवाणी का परिवार तो अब बहुत बड़ा हो चुका है, बदल चुका है। समय के साथ साथ जो पब्लिक की डिमांड है वो भी बदलती रहती है, और इसीलिए कार्यक्रमों के स्वरूप में भी बदलाव करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन मैं अपने मन की बात ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप टेलीविजन देख रहे हैं तो आप कोई काम नहीं कर सकते हैं, केवल आपको टीवी पर कंसंट्रेट करना है। लेकिन रेडियो, रेडियो मेरे लिए तो आकाशवाणी है, आकाशवाणी है, चाहे वो FM चैनल है या कोई भी।

0: यूट्यूब चैनल है, उसको सुनते रहिए, आप अपना लेखन भी करते रहिए, आप किचन में खाना भी बनाते रहिए, आप यात्रा भी करते रहिए, आकाशवाणी हमेशा आपके साथ है। मेरी कामना है कि ये 90 वर्ष जिस तरह से हमने गौरवमयी यात्रा के रूप में निकाले, और 190 वर्ष, 290 वर्ष, 390 वर्ष आगे जाके ये आकाशवाणी निरंतर उत्तरोत्तर विकास करती रहे, आगे बढ़ती रहे, यही शुभकामनाएं मेरी आप सभी मित्रों के साथ है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी हार्दिक शुभकामनाएं सभी मित्रों के साथ है। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग, और इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े थे पूर्व उप निदेशक कार्यक्रम डॉक्टर उपेंद्र नाथ रैना जी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। आरबीआई ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए पहले से लागू सामान्य और दीर्घकालिक निवेश सीमाओं को भी एक कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी विशिष्टता बनाए हुए है। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जनसंबंध सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्यों से आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये दौरा भारत और नेपाल के बीच विशेष साझेदारी को और मजबूत करेगा।
1: With Nepal, we have an expansive agenda.
2: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
1: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
0: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज तक ही निर्धारित थी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। श्री वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ कोलकाता के नबन्ना में आयोजित एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 69 ओवर में 3 विकेट पर 308 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल और ऋषभ पंत क्रीज पर मौजूद हैं। KL राहुल 100 रन बनाकर आउट हुए। ये टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। उधर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाले T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। मौसम विभाग ने केरलम और माही में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति बने रहने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Anucha Kumar. Prime Minister Narendra Modi today chaired a meeting with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the Economic Advisory Council discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. Various reforms to improve ease of living and ease of doing business were also discussed. The members also gave their assessment of the impact of West Asia conflict on India and the world. The Reserve Bank of India has simplified the rules governing investments by foreign portfolio investors or FPIs in government securities. The revised framework is aimed at making investments easier and reducing compliance requirements for foreign investors. More from our Mumbai correspondent.
4: Under the revised framework, FPIs investing through the general route will get greater flexibility as certain investment restrictions have been removed. The RBI has also merged the existing general and long-term investment categories into a single limit for government securities and state government securities. For financial year 26-27, the investment limit for central government securities has been fixed at 4,62,490 crore for the first half of the year and 4,77,006 crore for the second half. For state government securities, the corresponding limits have been set at 1,53,043 crore and 1,64,242 crore respectively. The revised directions have come into effect immediately. Ankita Apte, Akashwani News, Mumbai.
3: Defence Minister Rajnath Singh today said that India continues to stand out as the world's fastest growing major economy at a time when many countries are facing economic uncertainty. Referring to the registered GDP growth rate of 7.7% in the financial year 2025-26, Mr. Singh said in a social media post that the achievement underscores resilience and underlying strength of the Indian economy built over the last 12 years. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has extended their last date for submission of applications for verification of marks and re-evaluation till tomorrow. In a social media post, the board said students can now submit their applications till Sunday midnight. CBSE said that the decision has been taken in the interest of students to provide them with additional time to complete the application process. The earlier deadline for submission of applications was the 6th or today of this month. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will hold talks with Nepal Foreign Affairs Minister Shishir Khanal in New Delhi this evening. The Foreign Affairs Ministry of Nepal said during the meeting, both sides will discuss matters of mutual interest with a view to enhancing cooperation across key areas including trade, investment, connectivity, energy and people-to-people ties. Meanwhile, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said the visit will further strengthen the special partnership between India and Nepal. The India Meteorological Department or IMD has issued a red colour warning for very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Kerala and Mahe till tomorrow. Heavy to very heavy rainfall conditions are also expected over parts of Northeast India, Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal during the next 2 days. In men's hockey, Under-18 Asia Cup, the final match between India and Japan is underway in Kakamigahara, Japan. Earlier, India advanced into the final after defeating its arch rival, Pakistan 5-3 in the second semi-final.

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 मेगाहर्ट्ज है। आइए साथियों कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत सुनते हैं, और पहला गीत जो हम आपके लिए चुन कर लाए हैं वो फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई से है, जो 1960 पर रिलीज होती है सिल्वर स्क्रीन में। आइए सुनते हैं इस गीत को, गाया है लता जी ने।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
2: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
3: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
4: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
2: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

0: साथियों, वक्त हो चला है एम्प्लॉयमेंट न्यूज और रोजगार समाचार का, लीजिए सुनिए।
1: Welcome to Employment News, your ultimate gateway to career success. I am Lucy Gabriel and I'm here to guide you through the latest job vacancies across various sectors and government recruitment updates to help you navigate the competitive job market. We begin with Lady Irwin College, University of Delhi, has invited applications on a deputation basis for one post of an administrative officer and one post each of section officer, senior assistant and professional assistant. Eligible candidates should submit their applications in the prescribed format within 45 days from the release of this advertisement in the Employment News. Details and application forms available on the official website. Kindly refer to www.ladyirwin.edu.in. I repeat, it is www.ladyirwin.edu.in. The Inland Waterways Authority of India, IWAI, an autonomous body under the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, has extended the last date for submission of applications for one post of a director on a deputation basis. The appointment will be for a period of 3 years and eligible officers from government departments and organizations may apply. The last date for receipt of applications has been extended to 18th June 2026. Interested candidates should refer to the detailed vacancy notification available on the official website. For eligibility criteria and experience requirements and application procedures, do refer to the website. That is at www.iwai.nic.in. Micon Limited, a leading public sector consultancy and engineering company under the Ministry of Steel, Government of India, has invited applications for one post of junior officer administration on a regular basis. The position is in the EO grade with a pay scale of 30,000 to 1,20,000 rupees. Candidates possessing the prescribed qualifications and relevant administrative experience can apply. The detailed advertisement, eligibility conditions, selection process and application procedures available in the career section of Micon's official website. Do refer to the website, that is at www.miconlimited.co.in. Deen Dayal Port Authority, India's leading major port under the administrative control of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, has invited applications for one post of Assistant Manager, Library to direct recruitment on a regular basis. The post carries a pay scale of 40,000 to 1,40,000 IDA pattern and is intended for candidates with qualification and experience in library and information management. The last date for submission of online applications is 28th June 2026, while the hard copy of the application must reach the authority by 8th July 2026. Detailed eligibility conditions and application forms available on the Ports Authority's website. Do refer to www.deendayalport.gov.in. I repeat, it is www.deendayalport.gov.in. The Division of Environmental Sciences, ICAR, Indian Agricultural Research Institute, IARI, New Delhi, has invited applications for an online interview to fill one research associate, one young professional one, and one young professional two positions. The appointments are purely temporary and are linked to research projects on methane and nitrous oxide emissions from rice cultivation and the preparation of India's greenhouse gas emission inventory. These positions offer an opportunity to work on nationally significant climate change and agricultural sustainability projects. Detailed qualifications, enumeration and interview schedules are available on the Institute's website. Kindly look up www.iari.res.in.
2: And now we have the employment news in Hindi. आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। स्टाफ नर्स एक पद, प्रयोगशाला तकनीशियन दो पद, तैराकी प्रशिक्षक एक पद, नेटवर्क प्रशासक दो पद, कैमरामैन दो पद और एक्सरे तकनीशियन एक पद। प्रत्येक पद के लिए वेतन, आवश्यक योग्यताएं, अन्य पात्रता मानदंड संबंधी विवरण और आवेदन प्रपत्र अकादमी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, जिसका पता है www.svpnpa.gov.in। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान राजकोट के विभिन्न विभागों में भारत सरकार की रेजिडेंसी योजना के तहत 88 सीनियर रेजिडेंट गैर शैक्षणिक पदों के लिए पात्र और इच्छुक भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख है 8 जून 2026। पूरी जानकारी के लिए विस्तृत विज्ञापन अवश्य देखें, जो संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका पता है www.aimsrajkot.edu.in/recruitment। इस भर्ती से संबंधित आगे की सारी सूचनाएं, यहां तक कि अंतिम तिथि के विस्तार यदि हो तो सिर्फ संस्थान की वेबसाइट पर ही प्रकाशित की जाएंगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में उपप्रबंधक तकनीक 60 पद उपलब्ध हैं। आवेदन करने के लिए विस्तृत जानकारी हेतु देखिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की वेबसाइट www.nhai.gov.in। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख रहेगी 15 जून 2026। वाडिया हिमालयन भू विज्ञान संस्थान देहरादून में कनिष्ठ शोध अध्येता के एक पद के लिए रिक्ति उपलब्ध है। विस्तृत विज्ञापन जिसमें परियोजना का ब्यौरा, फेलोशिप, शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, वॉक इन इंटरव्यू की तिथि आदि की जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.wihg.res.in। निदेशक वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान के पास ये अधिकार सुरक्षित है कि वे बगैर कारण बताए पदों की भर्ती को निरस्त कर सकते हैं। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सैनिकपुरी डाक सिकंदराबाद में इन पदों के लिए रिक्तियां उपलब्ध हैं। सिविलियन मोटर चालक सामान्य ग्रेड एक पद, बावर्ची एक पद, मल्टीटास्किंग स्टाफ 5 पद, आशुलिपिक ग्रेड 2 एक पद। विस्तृत पात्रता मानदंड और आवेदन पत्र के प्रारूप की जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.indianarmy.nic.in। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड नई दिल्ली में सदस्य के पद को भरने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इस पद के लिए आवेदन पत्र के प्रारूप, पात्रता और सेवा की शर्तों के बारे में विस्तृत जानकारी इस वेबसाइट पर उपलब्ध है mopng.gov.in तथा pngrb.gov।

0: LinkedIn। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
2: अभी आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज और रोजगार समाचार सुन रहे थे। यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 है। कुछ ही देर में अब हम सुनने जा रहे हैं कार्यक्रम परिक्रमा।
3: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
4: नमस्कार। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं करिश्मा राय और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अनुजा कुमार। अनुजा, आपको भी मेरा नमस्कार।
5: नमस्कार एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून करिश्मा। Karishma, despite strong heavy rain in Delhi NCR a couple of days back, the city is experiencing a very hot and mostly dry day again, with temperatures reaching a high of 38 degrees Celsius. High temperatures these days are generally not good for agriculture. While crops need warmth to grow, extreme and prolonged heat acts as a major risk multiplier, significantly degrading crop yields, straining the livestock and accelerating water scarcity, of course. High temperatures these days are generally not good for agriculture, as I just said. And certainly global warming is causing severe harm to human health, and global economies and the natural environment also is severely affected by this. The impacts are no longer future projections. They are actively reshaping life across the planet today, and we desperately need to be very cautious and do something very positive urgently. Isn't it, Karishma?
4: बिल्कुल, आपने सही कहा।
5: Well, now let's surprise you all with the latest on the headlines. Reserve Bank of India simplifies rules for foreign portfolio investors in government securities to make investment in India easier.
4: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे।
5: CBSE extends last date for submission of applications for verification of marks and re-evaluation till tomorrow.
4: पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत।
5: IMD issues red alert for very heavy rainfall over Kerala and Mahi till tomorrow.
4: और श्रेयस अय्यर सूर्य कुमार यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के नए कप्तान बने। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल।
5: And Karishma, it's now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we will talk about India's biodiversity, their commitments and achievements.
4: क्या श्रोताओं, आपने कभी सोचा है कि असल में किसी देश को क्या चीज जिंदा रखती है? इसका जवाब प्रकृति में छिपा हुआ है। हमारी थाली का हर दाना, साफ पानी की हर बूंद, ताजी हवा की हर सांस और यहां तक कि बदलते मौसम भी एक अद्भुत शक्ति से जुड़े हुए हैं, और वो है जैव विविधता।
5: एब्सोल्युटली। एंड व्हेन इट कम्स टू प्रोटेक्टिंग दिस प्राइसलेस नेचुरल वेल्थ, इंडिया हैज अ स्टोरी वर्थ सेलिब्रेटिंग। टुडे लेट्स एक्सप्लोर हाउ इंडिया इज कंजर्विंग इट्स बायोडायवर्सिटी, एम्पावरिंग कम्युनिटीज, प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ एंड बिल्डिंग a greener future for generations to come. But first, a fascinating question for all our listeners. What exactly is biodiversity?
4: बिल्कुल, और बहुत से लोग सोचते हैं कि biodiversity का मतलब सिर्फ wild life यानी कि वन्य जीव हैं, जैसे कि बाघ, हाथी, पक्षी और जंगल. लेकिन biodiversity इससे कहीं ज़्यादा बड़ी चीज़ है. इसमें हमारे आसपास मौजूद हर जीवित जीव शामिल है, जैसे कि पौधे, जानवर, कीड़े मकौड़े, सूक्ष्म जीव और वे इकोसिस्टम जो ये सब मिलकर बनाते हैं. आम के बाग के बारे में सोचिए, हर आम के पेड़ को मधुमक्खियों जो फूलों में परागण करती हैं, केचुए जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं और सूक्ष्म जीव जो पोषक तत्वों को तोड़ते हैं और आसपास के इकोसिस्टम से बनने वाले बारिश के पैटर्न से मदद मिलती है.
5: एंड ट्राई रिमूविंग वन पीस फ्रॉम दिस पजल, द एंटायर सिस्टम बिगिंस टू वीकन. दैट्स बायोडाइवर्सिटी इन एक्शन. एंड प्रोटेक्टिंग इट इज not only an environmental responsibility, it is essential for food security, livelihoods, climate resilience and sustainable development.
4: बिल्कुल, लेकिन श्रोताओं सबसे जरूरी ये भी समझना है कि भारत जैसे बड़े और विविधता वाले देश में इतनी विशाल चीज की सुरक्षा कैसे की जाती है. इसका जवाब है एक बेहतरीन सिस्टम जो राष्ट्रीय नीतियों को स्थानीय समुदाय से जोड़ता है. भारत में जैव विविधता का प्रबंधन तीन स्तरीय ढांचे के जरिए होता है. राष्ट्रीय स्तर पे नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी संरक्षण के प्रयासों को दिशा देती है. राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के स्तर पे स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड और बायोडायवर्सिटी काउंसिल इन लक्ष्यों को क्षेत्रीय जरूरतों के हिसाब से ढालते हैं. और जमीनी स्तर पे बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटियां सीधे स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर काम करती हैं.
5: This is where the real magic happens. Across villages, towns and cities, local people are documenting plants, animals, ecosystems and traditional knowledge through something called the People's Biodiversity Register. And today, India has established more than 2.76 lakh biodiversity management committees and prepared over 2.72 lakh people's biodiversity registers. That's one of the world's largest community-driven biodiversity documentation efforts.
4: बिल्कुल, और Biological Diversity Act 2002 देश का मुख्य कानूनी ढांचा बना, जिसका मकसद जैव विविधता का संरक्षण करना, उसके टिकाऊ इस्तेमाल को बढ़ावा देना और जैविक संसाधनों से मिलने वाले फायदे का उचित बंटवारा सुनिश्चित करना था. Biological Diversity Amendment Act 2023 के जरिए इसमें एक अहम बदलाव किया गया. इसमें रिसर्च, इनोवेशन, पारंपरिक ज्ञान और समुदाय की भागीदारी को और मजबूती मिली और साथ ही इसे लागू करने की प्रक्रिया ज्यादा असरदार और आसान हो गई.
5: But here's something particularly meaningful. India doesn't see traditional knowledge as outdated wisdom. Instead, it recognizes it as a valuable resource. This blend of traditional wisdom and modern science is becoming one of India's greatest strengths.
4: और आइए जंगलों के बारे में भी बात कर लेते हैं. भारत में जंगल और पेड़ों का दायरा अब लगभग 8,27,000 वर्ग किलोमीटर है. यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से ज्यादा हिस्सा है. अब जरा सोचिए इसका क्या मतलब है. ज्यादा जंगल का मतलब है बेहतर कार्बन सोखना, ज्यादा स्वस्थ इकोसिस्टम, बेहतर जल सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए मजबूत क्षमता.
5: बट फॉरेस्ट अलोन aren't enough. Protected areas also matter, and India now has more than 1,134 protected areas covering over 1.87 lakh square kilometers. These spaces safeguard critical habitats for countless species and preserve ecological balance for future generations.
4: और भारत की जैव विविधता यात्रा वैश्विक प्रतिबद्धताओं से भी गहराई से जुड़ी हुई है. देश कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, नागोया प्रोटोकॉल और कुनमिंग मॉनिट्री ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है. ये वैश्विक साझेदारियां जैव विविधता के संरक्षण, लाभों के उचित बंटवारे और 2030 तक जैव विविधता के नुकसान को रोकने पर भी केंद्रित है.
5: These efforts ensure that decisions are guided by strong evidence and long-term planning. Now, pause for a moment and consider this. When you hear the word development, what comes to mind? Roads? Industries? Urban growth? What? India is demonstrating that development and conservation do not have to compete. They can move forward together.
4: और एक स्वस्थ जंगल पानी की सुरक्षा में मदद करता है. एक समृद्ध वेटलैंड बाढ़ के जोखिम को कम करता है. परागण करने वाले जीव खेती की पैदावार को बढ़ाते हैं. सुरक्षित इकोसिस्टम जलवायु परिवर्तन का सामना करने की क्षमता को मजबूत करते हैं. प्रकृति विकास से अलग नहीं है. प्रकृति के विकास को संभव बनाती है और शायद भारत की जैव विविधता यात्रा से यही सबसे प्रेरणादायक सीख भी मिलती है.
5: Millions of people are contributing to a shared mission, a mission to protect India's extraordinary natural heritage. And as we look towards 2030 and beyond, the goal is clear. Stronger forests, healthier ecosystems, protected wildlife, and a future where economic growth and environmental stewardship reinforce one another.
4: और भारत की जैव विविधता की कहानी सिर्फ संरक्षण के बारे में नहीं है, यह जिम्मेदारी के बारे में भी है, यह मुश्किलों से उबरने की क्षमता के बारे में भी है और यह लोगों और प्रकृति के बीच साझेदारी के बारे में भी है. सबसे जरूरी बात यह है कि यह एक ऐसे देश की कहानी है जो यह साबित करता है कि तरक्की तभी सच में सार्थक होती है जब वह उस पर्यावरण के साथ साथ आगे बढ़े जो उसे बनाए रखता है.
5: एंड परहैप्स द नेक्स्ट टाइम यू सी अ बटरफ्लाई इन अ गार्डन, hear birds singing after the rains, or walk beneath the shade of an old tree, you will remember something important. These are not small details of life, they are signs of a living, thriving India. And protecting them is one of the greatest investments we can make in our future. And as part of our series Prakriti Ki Baat, Akashwani ke saath, we bring you an interview with Ramji Bhagat, the sarpanch of Saradi Gram Panchayat in Chhattisgarh. Saradi Gram Panchayat has received National Panchayat Award under the category Clean and Green Panchayat.
6: हर मोहल्ला में लोककर सभा किए, बैठे, चर्चा किए कि हमको कचरा का भी प्रबंध करना है, मतलब कचरा के इकट्ठा करना है, कहीं नहीं फेंकना है. समूह द्वारा प्रत्येक शनिवार को महीने में चार बार हम लोग जनभागी के द्वारा सहयोग पूरे गांव के साफ सफाई करते हैं. जन आंदोलन चलाया कि लकड़ी हमको बचाना है, आने वाला पीढ़ी के लिए. हम जब लकड़ी नहीं बचाएंगे तो सांस कहां से लेंगे, ऑक्सीजन कहां से लेंगे. हम लोग के पास अभी लगभग 453 परिवार के पास गैस कनेक्शन है.
7: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ.
5: To listen to the whole conversation, tune into 100.1 Akashwani Gold today in the evening at 5:10 p.m. You can also listen to it on the News on EIR app and News on EIR official YouTube channel. It will also be broadcast tomorrow morning at 9:10 a.m.
4: और श्रोताओं, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है.
5: And we begin with, we are having the mango season these days, Karishma. The second edition of Mango Magic Festival promotion and tasting event of Indian mangoes was hosted in Seattle, United States today. Over 100 leading importers of Indian fruits, including senior leadership of U.S. retailers like Costco, participated and tasted 7 premium varieties of Indian mangoes on display, including Alfonso and Kesar from Maharashtra, Beganpalli and Himayat from Andhra Pradesh, Langra and Dasheri from Uttar Pradesh, and ripe Rajapuri from Gujarat. We have more on this from our correspondent.
8: The Consulate General of India in Seattle initiated the introduction of Indian mangoes in July last year and partnered with various stakeholders both in India and the greater Seattle area with an attempt to bring new premium varieties of Indian mangoes to big retail stores like Costco for American consumers. These efforts received a significant boost following a meeting with Costco CEO in April this year, after which Bhagwa variety of pomegranates from Maharashtra were introduced at Costco stores in the region, subsequently followed by Kesar mangoes. news. Attending the Mango Festival, Vice President of Costco Wholesale, Bob Husky, said that they recently started selling Indian Kesar mangoes and they have been selling faster than they can bring them back in.
9: We have just started selling the Indian Kesar mangoes and they have been selling faster than we can bring them back in. So we are very happy to sell the mangoes and happy that we could be part of this mango celebration at the consulate today.
8: Washington Senator Manka Dhingra said that these relationships based on food make trade, economics and business relationships really thrive.
10: It is such a pleasure for me to be here at Mango Magic with the Consul General to Seattle. These relationships that make trade, economics,

0: friends, business relationships really thrive.
1: Moreover, in his recent edition of Mann Ki Baat program, Prime Minister Narendra Modi also spoke about the rich diversity of Indian mangoes and praised India's mango farmers for taking this journey from the village to the global market.
2: Aam ki ye yatra ab gaon se global market tak bhi pahunch rahi hai. मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा. आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं. ऐसे ही छाए रहिए.
1: India is currently the world's largest producer of mangoes with an annual output of over 26 million metric tons and more than 1000 named varieties. Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
3: बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अब गोवा की. गोवा के मडगांव में आज फुटबॉल का रोमांच अपने चरम पर होगा जब सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत और बांग्लादेश आमने सामने होंगे. एक ओर भारत की नजर रिकॉर्ड छठे खिताब पर होगी तो वहीं बांग्लादेश लगातार तीसरी बार चैंपियन बनने के इरादे से मैदान में उतरेगा. सुनते हैं एक रिपोर्ट.
4: मडगांव के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आज शाम सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. मेजबान भारत का सामना मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से होगा. भारतीय टीम इस पूरे टूर्नामेंट में शानदार लय में दिखाई दी है. टीम ने मालदीव को 11-0 से हराया, ग्रुप चरण में बांग्लादेश को 3-0 से मात दी और सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई. खास बात यह है कि भारतीय टीम अब तक टूर्नामेंट में एक भी गोल नहीं खाई है. दूसरी ओर बांग्लादेश ने नेपाल को रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबले में 2-1 से हराकर लगातार तीसरी बार फाइनल में प्रवेश किया है. प्री मैच ब्रीफिंग के दौरान भारतीय टीम की कप्तान संगीता बसोर ने कहा कि
5: हम लोग रेडी है फाइनल के लिए और एक फाइनल हमारे लिए एक बहुत मोटिवेशन है, बस फाइनल खेलना है और जीतना है.
4: भारत और बांग्लादेश के बीच का खिताबी मुकाबला आज शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा. दर्शकों के लिए स्टेडियम में प्रवेश निःशुल्क रखा गया है. परिक्रमा के लिए निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी.
6: And Karishma, while the rest of the nation battles the summer heat, a quiet, powerful revolution has just swept through the snow-capped peaks of the Trans-Himalayan region. From the remote heights of the Union Territory of Ladakh comes an inspiring blueprint for rural India. Marrying the ideals of public health with environmental sanctity, the Rural Development Department in Leh has just concluded a massive high-impact campaign, Swachh Gaon Surakshit Parivar.
7: Spanning 5 action packed days from June 1st to June 5th, this initiative transformed Ladakh's breathtaking landscape into a vibrant canvas of community action. The campaign moved far beyond the traditional scope of merely cleaning streets. Instead, it was launched as a vital shield to safeguard the health, hygiene and future of every single rural household. Throughout the week, local communities, dynamic youth groups and senior administration officials joined hands in a rare show of unity. The Panchayat Inspector of Rural Development डिपार्टमेंट सेवंदोरजे शेयर द आउटकम्स ऑफ द सक्सेसफुल 5-day कैंपेन.
8: इस कैंपेन में हमने ज्यादातर जोर किस तरह से गांवों के वातावरण को साफ रखे, पानी हो, हवा हो, धरती हो, सफाई रखना है, उनके बारे में लोगों को अवेयरनेस और साथ ही साथ हमने प्रैक्टिकली गांवों में क्लीनिंग ड्राइव भी किया है. और 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे के दिन हमने हर गाँव में एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन के साथ हर गाँव में प्लांटेशन ड्राइव भी किया गया था. इसी के साथ हमने 5 जून को ही ग्राम सभा का भी आयोजन किया गया था जिसमें हमने हर पंचायत में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026 के ऊपर, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को जिस तरह से एक फोर्स टीम में सेग्रीगेट करना था उसके ऊपर हमने बहुत सारे काम किया और लोगों को समझाया कि जो कूड़े घर से निकलते हैं उसको किस तरह से 4 हिस्से में बांटना है. और इस कैंपेन के दौरान लोगों को किस तरह से जलवायु और धरती को सफाई रखना है आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, इसके बारे में उनको काफी जानकारी मिला.
7: लद्दाख हैज प्रूवन दैट geographical isolation is no barrier to environmental leadership. For Parikrama, this is Chetan Tashi from Leh Ladakh.
3: वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने उत्तर बंगाल के विकास तथा जन कल्याण के कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है. महत्वाकांक्षी सेवक रंगपो रेल लिंक परियोजना के लिए जलपाईगुड़ी जिला के नागरा काटा में महत्वपूर्ण 20 एकड़ जमीन रेलवे को आवंटित कर दिया गया है. अब सिक्किम जल्द ही भारतीय रेल संपर्क संजाल से जुड़ेगा. कालिम्पोंग जिला में मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए भूमि चिन्हित की गई है और सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग के बीच वैकल्पिक राजमार्ग के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई है.
9: मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के सत्ता संभालते ही उत्तर बंगाल के विकास तथा जन कल्याण के लिए केंद्रीय तथा राज्य की योजना

0: इसके साथ ही आज हम डी रामा नायडू, भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और उद्यमी को याद कर रहे हैं। वे भारतीय फिल्म उद्योग के सबसे सफल निर्माताओं में गिने जाते थे और उन्होंने तेलुगु, हिंदी, तमिल, मलयालम, कन्नड़, बंगाली, ओडिशा और अन्य भाषाओं में भी फिल्मों का निर्माण किया। उन्होंने वर्ष 1964 में अपनी पहली फिल्म रामडू भीमडू का निर्माण किया, जो बड़ी सफलता के साथ आगे बढ़ी। इसके बाद उन्होंने अपने बैनर सुरेश प्रोडक्शन के माध्यम से सैकड़ों फिल्मों का निर्माण किया। उनका नाम सर्वाधिक फिल्मों के निर्माण का रिकॉर्ड भी दर्ज करता है, जिसके लिए उन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। डी रामा नायडू ने भारतीय सिनेमा को नई प्रतिभाएं देने और क्षेत्रीय फिल्मों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। डी रामा नायडू को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, पद्म भूषण, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार तथा अनेक अन्य प्रतिष्ठित सम्मानों से भी सम्मानित किया गया।
1: He also was honored with a Dada Saheb Phalke Award.

0: तो श्रोताओं, अब समय हो चला है कार्यक्रम को यही
1: मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 5 बजे हैं, हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में। ये आकाशवाणी रायपुर है, लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

0: दीवाने का जिराज
1: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये गर्जंडी, सिंघरा, भरदा, पलहड़ा, धर्मपुर, गौरा, गणेशपुर, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफनगर और राजपुर में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये करमडीहा, मेंढारी, गोवर्धनपुर, भगवानपुर, कुंदीकला, जामदोहर, अखोरा, बदौली, जवाखांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये सकालो, किशुनपुर, गंगरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, पड़ोली, जमीरा, मसगा, डांडपारा, सायर, कुमडेवा, लक्ष्मणगढ़, उदरबसवार, केदमा, जगन्नाथपुर, ढोढ़ा गांव, कठबुड़ा, शिवनाथपुर, घासीडी, दातीढाप, गढ़गांव, बरडांड, चोरकी पानी, कंडराजा, पेंट के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, पत्थल गांव और कांसाबेल में हाथियों की कुल संख्या 34 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चराईमारा, रानी कोम्बो, खड़ामाचा, पीठा आमा, राजा आमा, झिमकी, चट्टान पारा, कुदराझरिया, साजा पानी, सोनार पहरी, तीता पाकेर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बाकारूमा, बोरो और कापू में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये सामहर सिंघा, नागदरहा, सोखामुड़ा, बोजिया, पुरुंगा, बनहर, औरानारा, बेहरामार, लोटान के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के एतमानगर, जडगा और किंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये कोदवारी, सलिहा भाटा, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, जुनवानी, कुकरी कादर, फुलसर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के करतला में हाथियों की कुल संख्या 8 है। ये चारमार, मधवानी, जोगीपाली, बड़मार के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 53 है। ये छर्रा टांगर, बंगूरसिया, जुनवानी, कशडोल के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये तालदादर, पकरीद, नवागांव, कोठारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।
0: थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। समय है कार्यक्रम विवरण का।

आइए हम आपको बताएं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। पहले आज के शेष कार्यक्रम। आज रात 8:30 पर होगा कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम युवा शक्ति आप सुनेंगे रात 9:25 पर। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में रात 10 सुनिएगा ऋषिकेश गागोडे का ख्याल गायन। ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। अब से कुछ देर बाद 5:10 पर आज की युवावाणी होगी छत्तीसगढ़ी में। इसमें अपन गोठ में चर्चा का विषय है शिक्षा के निर्णय खुदे ले बाओ। साथ ही सुनेंगे क्रम आप मन के चिट्ठी और माटी के गीत। लोक संगीत के कार्यक्रम में 6:30 पर कलाकार होंगे छाया शर्मा और साथी। इसी कार्यक्रम में रात 8:15 पर आप सुनेंगे फिरित पटेल और साथियों के स्वर में छत्तीसगढ़ी गीत। 7:21 पर कार्यक्रम चौपाल में आप सुनेंगे आज की बात खेती में प्लास्टिक प्रदूषण के प्रभाव। किसानवाणी में आप सुनेंगे आज की सलाह घर के छत में जैविक विधि ले सब्जी एवं फल उत्पादन। इस विषय पर सलाह देंगी श्रीमती पुष्पा साहू। इसके अलावा होगा आज का प्रश्न और छत्तीसगढ़ी गीत। चित्रपट संगीत आप सुनेंगे 7:00 रात 8:00 और रात 9:15 पर। और अब कल के प्रमुख कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल रात 8:30 पर। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम वंचितों को वरीयता आप सुनेंगे कल रात 9:25 पर। अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा में कल रात 10:00 सुनिएगा MSN मूर्ति का वायलिन वादन। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। जिले की चिट्ठी में कल शाम 6:05 पर आप सुनेंगे बिलासपुर जिले की चिट्ठी। कल शाम 6:30 पर कार्यक्रम कानून की बात में आप सुनेंगे संपत्ति विवाद के संबंध में अधिवक्ता जगदलपुर श्री आशुतोष द्विवेदी से ली गई भेंट वार्ता। यह आकाशवाणी जगदलपुर की प्रस्तुति होगी। कार्यक्रम नमस्कार रायपुर होगा रोज की तरह सुबह 7:05 पर। इसमें देश की वाणी आकाशवाणी में आप सुनेंगे आकाशवाणी की पूर्व उद्घोषिका कल्पना यदु से बातचीत। प्रस्तुत करता होंगे दीपक हटवार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में। ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी।

0: शिक्षा के ज्योत जलावाओ, अंधियार ला दूर भगावाओ।
1: अपन रुचि के राह चुनो, सफलता के मंजिल पावो।
0: सोच विचार के निर्णय लेवो, अपन सपना ला सच करावो।
1: ज्ञान के संग आगू बढ़ाओ और नवा इतिहास बनावो।
0: सुघर संझा के बेरा मा, युवानी के अगोरा मा, युवानी के कार्यक्रम ला सोर्यावत बैठे जम्मो संगवारी मन ला मोर यानी ऋषभ देव साहू के डहन ले राम राम।
1: औ संग मा अपन संगवारी तन्नू साहू के झोंका मया भरे संझा जय जोहार।
0: औ तन्नू, बड़ दिन बाद तोर ले भेंट हुआ थे भाई, सब बने बने?
1: हाँ भाई, मैं हाँ तो बने हूँ, तय हाँ बता, तय कैसे हस?
0: महू हाँ बने हो संगी, ए दे पढ़ाई लिखाई हाँ चला थे।
1: एक बात पूछो ऋषभ।
0: एक बात का संगी, ते हाँ दस बात पूछ।
1: ऋषभ, ते हाँ अपन पढ़ाई बर विषय कैसे चुने हस?
0: मेहना संगी, अपन रुचि और पढ़ाई के क्षमता ला देख के चुने हो। मोला पढ़ाई लिखे माँ बचपने ले बहुते मन रही से।
1: वाह भाई ऋषभ, गोर तो तेहा पोट के हेस। जम्मो ला अपन रुचि के हिसाब ले पढ़ाई के विषय ला चुनना चाही। ये दे एक झन मोर संगवारी ला देख, कौन विषय के पढ़ाई कैसे करना है, तेला अपन मन ले नहीं चुनी से, तेकर सेती ओला अपन शिक्षा ग्रहण करे मा और वो विषय ला समझे मा परेशानी जावत है।
0: सिर तो उनके तनु तेकरे पाए के अपन अंतस के इच्छा शक्ति ला और योग्यता ला देखे बिना निर्णय लेना ठीक नहीं होवे। ये दे मोर परिवार वाले मन हा कहात रही से कि मैं हाँ विज्ञान विषय ला लेके पढ़ाओ, फिर मोर रुचि हा कला विषय में रही से।
1: तते फिर काय करिस?
0: मेहना संगी, मैं हाँ परिवार वाले मन संग बैठे हो और बैठ के अपन रुचि ला बतायो और आखिर में मैं हाँ कला विषय ला ही चुने।
1: बहुत बढ़िया ऋषभ, शिक्षा के निर्णय ला खुद मा लेना चाही, जेकर ले पढ़े माँ घलो लगते, मन घलो लगते और आत्मविश्वास घलो बाढ़ते, संग माँ अपन मंजिल ला जल्दी पहुँचाए में
0: मदद करते। श्रीतुन के स्तनु, संगवारी हो बड़े मनखे मन के सलाह ला जरूर लेना चाहिए, फिर अंतिम निर्णय अपन सोच विचार के लेना चाहिए। संगी हो, शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करे के माध्यम नो है, बल्कि ये मनखे के जिंदगी ला सही दिशा दे के आधार आए। एक सती शिक्षा ले जुड़े निर्णय ला स्वयं ले ही लेना चाहिए।
1: संगी हो, शिक्षा के निर्णय स्वयं लेके अर्थ ये नहीं होए कि हम अपन बड़का मन के सलाह ला नजरअंदाज कर देन। हमर दाई ददा शिक्षक और अनुभवी लोगन मन के सलाह हमर बर सही रद्दा दिखाए के कारज करते।
0: तनु, ओकर अनुभव हमन ला सही और गलत के अंतर ला समझाए में मदद करते, लेकिन अंतिम निर्णय खुद ला अपन इच्छा शक्ति के अनुसार करना चाहिए। संगवारी हो, आज के युग हा प्रतियोगिता और तकनीक के युग आए, हर दिन नवा नवा विकल्प हा आगू आवा थे। पहली जिहा डॉक्टर, इंजीनियर और गुरुजी बने लही सफलता माने जाए, उन्हें आज पत्रकारिता, डिजाइनिंग, एनिमेशन, डिजिटल मार्केटिंग, खेल, अभिनय, संगीत, फोटोग्राफी जैसे कई क्षेत्र में युवा मन पर कई ठन अवसर प्रदान करत है।
1: सिरतोन के है श्री सब।
0: एकरे बर विद्यार्थी मन ला चाहिए कि अपन अंदर के प्रतिभा ला पहचानो और उही दिशा में आगू बढ़े के निर्णय ला लेवो।
1: संगी हो।

0: शिक्षा ह मनखे ल आत्मनिर्भर बनाथे, अपन जिंदगी के निर्णय स्वयं ले लेही योग्य बनाथे।
1: शिक्षा ह केवल नौकरी पाए के साधन नो हे संगी हो, भलुक सोचे समझे के शक्ति घलो प्रदान करथे। शिक्षित मनखे ह समाज म जागरूकता ला फैलाथे अउ राष्ट्र के विकास म योगदान देथे। संगवारी हो, आज नवा शिक्षा नीति घलो अपन रुचि के अनुसार विषय ला चुने के स्वतंत्रता देथे। एकर ले विद्यार्थी मन ला अपन प्रतिभा विकसित करे के अवसर मिलथे।

0: संगवारी हो, अभी आप मन सुनत रहे हो सुघर अकन माटी के गीत ला, जेला सुर दे खुशीदास मानिकपुरी और बिंदु देवांगन हा।
1: औ संग में यहू संगी मन सुने पर चाहे रहिन बिलाईगढ़ ले रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता डिम्पल देवांगन मन हा, जुनवानी दुरुग ले सुरित रमेश साहू, तारा विद्या, जितेंद्र, किशन, हीरेन्द्र, नीलकंठ, सुनीता, ऋषिवन, चंद्रहा, संजीव, त्रिलोक, रंजित साहू मन हा, ग्राम भिलौरी, बिमेतरा ले रोहिणी, डिगेश्वरी, खुलासा, छविता, पूनम, भामनी, विधि, दीपिका, कविता, सृष्टि, रिद्धि, सिद्धि, डिविसा, हेमंत कुमार साहू मन हा।
2: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
3: जी,
2: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
3: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
2: पर ये होगा कैसे?
3: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
2: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
3: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
2: बस
3: बस
2: समझ गया।
3: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय,
7: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
8: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आएं पूर्ण जांच करवाएं।
7: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
8: 47 सालों से निरंतर सेवा में
7: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेलीबांधा, रायपुर।
1: तनु, हम कोनो तैयारी करन या फिर मेहनत जब पूरा मन लगा के करथन न त ओकर परिणाम ह घलो बढ़िया मिलथे।
0: हाँ संगी, परिणाम के संग मा जोन सुझाव होते, बधाई मिलते, समीक्षा मिलते, हमर संगी संगवारी अउ कोनो बड़े मन के तीर अंतसा कतिक सुमर्थ है भाई।
1: अउ संगी मन तीर बैठ के एक दूसर के बड़ई हा हमला हमर मन मा एक नवा ऊर्जा के भाव भर देते अउ हम आगू अउ कुछ अच्छा करे बर उदीम करथन।
0: सिरतोन के है संगी, जब स्कूल मा सबले पहिलैया नंबर आए तब ओकर खुशी अलगेच रहे भाई। गुरुजी मन के बधाई, दाई बाबू मन के माया भरे बधाई, कापू खुशी तो अंतस मा नहीं हमावे भाई।
1: सिरतोन के है तनु, खुशी तो अड़बड़ होते, फिर संगवारी जब हमर संगी मन हमर हफ्ता भर के जम्मो हमर कार्यक्रम ल सुन के जब समीक्षा सुझाव बधाई संग पठोय पाती मा घलो गजब के माया हमाए होते संगी, ये पाती मन ले ऐसे लगते मानो हमर कार्यक्रम हा सफल होते, मेहनत हा रंग आगे। त चल संगी शुरू करतन झटकुन क्रम आप मन के
0: चिट्ठी ला।

0: रिसब, तोर हाथ में पियर पियर पाती है दिखत है, तो चल भाई झटकुन बता डर तोर कौन संगवारी मन कहाँ ले पाती भेजे हावे।
1: तनु पहलैया पाती 30 मई दिन शनिचर के युवानी बर संगवारी मन भेजे हवे। अवे संगवारी मन है चांदनी चौक गंडी पंडरिया ले पवन कुमार सेन प्रभा देवी सेन मन हा। और संगवारी मन लिखे हवे कि बड़ निक लागथे, बड़ आनंद आते जब गाँव गवई के सुरता मन मा समाथे, ता का सुघर वो दिन बचपना के संगी संगवारी मन संग बाटी भावरा गिल्ली डंडा खो खो कबड्डी के खिलना दाई के पोर से बटकी मा बासी नून मिर्चा गुंदली और आमा के चटनी बड़ सुघर आनंद के प्राप्ति मिलत रहीस। संगी संगवारी मन संग मिलजुल के पढ़े खातिर स्कूल जाना, कभू झगड़ा हो जाना फिर झटकुन मिल घलो जाना, बैला गाड़ी मा मेला मड़ई जाना, संग मा डोकरी दाई बाबा के मुखारविंद ले कहानी सुनना, जैसन अनेकों प्रकार के सुरता जब मन मा समाथे ता वो दिन के खुशी मन हा मन मा कई प्रकार के मन हा सुरता ला झूमे ला लागथे नाचे ला लागथे। और ऐसने ढंग ले मोर गाँव के सुरता विषय में बड़ सुघर गाँव के सुरता ला अमरावत युवानी कार्यक्रम के शुरुआत करत हमर बीच में आईस 30 तारीख के दिन शनिचर के संझौती बेरा में हमर मयारू संगवारी ऋषभ देव साहू और दुर्गा साहू हा। गाँव के सुरता ला हमर बीच परोसीस, एला सुन के हमर बचपना के दिन के सुरता हा तरोताजा हो गे। और आप मन के चिट्ठी कार्यक्रम संग माटी के गीत कार्यक्रम के अनुपम समागम ला सुन के चोला हा गदगदा गे, भई गे का कहन का लिखन समझ में नहीं आवत रही से। ऐसन सुघर आनंदमयी सदाबहार समागम और मनमोहक प्रस्तुति खातिर ऋषभ देव साहू और दुर्गा साहू ला और संग में युवानी परिवार ला मया भरे बधाई कहा थे संगी मन हा। और यहू संगी मन हा 30 मई बर पाती पथो है। ये संगी मन है ग्राम करही भदर ले पुरुषोत्तम निर्मलकर श्रद्धा निर्मलकर मन हा। ये संगवारी मन लिखा थे कि 30 मई के युवानी ला अपन मया के गुरतुर बोली संग धर के लाने रही से हमार दू संगी दुर्गा साहू और ऋषभ देव साहू मन हा। अपन गोट मा गाँव ला लेके बहुत सुघर प्रेरणादायक गोट बात करीस जेहा हमार मन ला गुरतूर कर दीस। वास्तव में संगी हो शहर के वो चकाचौंग मा सुकून नहीं मिले जेन्हा गांव के माटी और खुला हवा और सादगी भरे जिंदगी मा मिलते। ता ऐसन संगवारी मन लिखे है तनु। संगवारी मन कहा थे कि क्रम आप मन के चिट्ठी मा संगी मन के पथो पार्टी और ईमेल ला बरोबर स्थान दीस हवे। क्रम माटी के गीत मा रिकिम रिकिम के लोकगीत तको सुनेन जेन्हा मन ला कर्ण प्रिय लागीस। अतेक सुघर सफल युवानी के प्रस्तुति पर दुर्गा साहू और ऋषभ देव साहू ला अंतसले धन्यवाद कहा थे संगी मन हा। और संग मा यहू संगी मन हा यहू दिन भर पाती पथो है। बिलाईगढ़ ले रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता डिंपल देवांगन मनहा, पोटिया कला दुरुग ले संजय साहू, सुजाता साहू मनहा, ग्राम कोयलारी कवर्धा ले कैलाश चंद्राकर, मुकुंद चंद्राकर और पूर्णेंद्र चंद्राकर मनहा। तो ये संगी मनहा यहू संगी मन है परसाटोला अंबागढ़ चौकी ले सिलोचनी तुसारनी खुमेंद्र मसिया मनहा, राजिम ले समयलाल धीवर, मुन्नी गोविंद कुणाल युवांश धीवर मनहा, लोरमी चचेली ले कमलकांत मरावी, प्रमिला नेहा पुष्पराज ऋषभ मरावी मनहा, सहसपुर खपरी ले सत्यम साहू शिवम राम कृष्ण साहू मनहा, ग्राम कोयलारी कवर्धा ले मुकुंद चंद्राकर कैलाश पुरेंद्र साहिल चंद्राकर मनहा, ग्राम गुड़ाराज ले मनोज साहू चित्ररेखा देवेंद्र लवीना चंचल वासनी गरिमा साहू मनहा।
0: वाह भाई, आपके पाती लसुन के मन हा गदगद हो गे। आप मन ये दिन के युवानी ला सुने के आप मन हा अपन बचपना के सुरता ला बने पाती के माध्यम ले सिरियावत ओकर बर अंतस ले धन्यवाद हे। संगवारी हो 30 मई शनिवार के युवानी ला धर के आए रही से कंपियर संगवारी ऋषभ देव साहू और दुर्गा साहू हा जौन हा अपन गोठ मा मोर गाँव के सुरता के बारे मा गोठ बात करीन और संग मा क्रम आप मन के चिट्ठी ला घलो प्रस्तुत करी संग में सुघर सुघर माटी के गीत घलो सुनाईस। ये दिन के जम्मो क्रम ला आप मन हा पसंद करे ओकर बर एक बार फिर से धन्यवाद है। आपके बधाई ला ए कार्यक्रम के माध्यम ले ऋषभ देव साहू और दुर्गा
1: मैं हाँ तो ये बधाई ला अमरते छो फिर दुर्गा साहू करा ये कार्यक्रम के माध्यम ले अमरावत हन कैसे भाई।
0: हाओ तनु
1: ये दू जून बर अव संगवारी मन हा पाती पथो है। ये संगवारी मन है हसदा नंबर दूले कमलेश साहू जितेंद्र दिलीप प्रवीण पायल लक्ष्मी गीतांजलि साहू मन हा ये संगवारी मन हा लिखे है कि दिनांक 2 जून के दिन मंगलवार के संझा युवानी के कार्यक्रम धर के लाने रही से धनेश्वरी बघेल और ललिता साहू हा कार्यक्रम में अपन गोट बात में और माटी के गीत में सुघर छत्तीसगढ़ी लोक गीत सुने बर मिलीस। क्रम सवाल जवाब अंक में श्रोता संगी मन के प्रश्न के उत्तर और प्रश्न सुने बर मिलीस। कार्यक्रम सुन के मन हा गदगद हो गए। सवाल जवाब क्रम ले हमार सामान्य ज्ञान में बढ़ोतरी हुई कहा थे संगी मन हा और अतिक सुघर प्रस्तुति खातिर संगवारी ललिता साहू और थनेश्वरी साहूला गाढ़ा गाढ़ा बधाई कहा थे। और संग में यहू संगी मन पाती पथो है 2 जून मंगलवार बर ग्राम फुलझर घटरानी ले योगेश्वरी साहू डोमेश्वरी यामनी मुस्कान और हर्षिता साहू मन हा ग्राम भड़गा कोदवा गोडान ले श्याम सिंह मरावी राजकुमारी रानी रजनी पूजा मरावी मनहा कुई ग्राम भंगीटोला ले ननकाराम धुर्वे जामुनबाई फिरत राम मालती धुर्वे मनहा ग्राम गेंडाटोला बाजार चौक ले अंजलि गुप्ता वीरेंद्र योगिता गजेंद्र गुप्ता मनहा चिरमिरी कुरासिया कालेरी रे संगी मन है इंद्र भान सिंह अनुभव ऋषभ राम सहोदर नारायण प्रसाद लहरे दिनेश प्रसाद कालिंद्री लहरे मनहा ग्राम

0: एवर बीजा बेरला ले दिनेश देवांगन सृजन देवांगन रूपेश राजपूत मनहा मही दही साजा ले हेमलता साहू देव विभू विशु साहू मनहा सलौनी राजनांदगांव ले देवचरण साहू हेमा वेदांत वैभव साहू मनहा कोलिहापुरी दुरुग ले सूरज भान साहू कमला बाई साहू मनहा ग्राम सलोनी राजनांदगांव ले पुरानिक राव साहू सीताबाई साहू प्रियांशु और गौरव साहू मनहा मड़ौदा ले पारक दास साहू किरण सोनू रेशमा गुनीता साहू मनहा बाजार वार्ड महासमुंद ले भीषम दास नर्मदा और दीपक लक्ष्य दास मनहा संगवारी हो युवानी के कार्यक्रम हाँ एक ऐसे कार्यक्रम आए जेमा केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि ये कार्यक्रम ले मनोरंजन के संगे संग शिक्षा संस्कृति साहित्य लोक कला लोक संगीत के विषय में बारीकी ले जाने भर मिलते संगवारी हो 2 जून मंगलवार के युवानी ला धर के लाने रही से थनेश्वरी बघेल और ललिता साहू हा ये दिन के क्रम माटी के गीत के संग ज्ञान के खजानी यानी क्रम सवाल जवाब ला घलो धर के लाने रही से ये दिन के जम्मो क्रम ला आप मनहा बने मन लगा के सुने और अंतस के गोट ला अपन प्रतिक्रिया ला पाती के माध्यम ले पठो ओकर बर आप मन ला अंतस ले धन्यवाद है आपके बधाई ला ये कार्यक्रम के माध्यम ले इसने अमरावत रहो तनु संगवारी मन हा कहात होही कि दिन भर पातिसला पढ़ी कि माटी के गीत घलो सुना है कि के त चल ना सुना लेथन संगवारी मन ला एक ठीक सुघर अकन माटी के गीत ला
1: हाँ।

0: संगवारी हो, अभी आप मन सुनत रहे हो सुग्घर अकन माटी के गीत ला, जेला अपन सुर में पिरोए रहीन माया वैद्य।
1: और संग में यहू संगी मन सुने पर चाह रही लता देवी चौहान, ये संगी मन है टिकरापारा रायपुर ले, पथरिया भरेवा ले चंदूलाल नारायणी नोमेश नेहा और वान्य सिंगरौल मन हा, पीपरपारा पालचुआ मुंगेली ले उत्तर दिवाकर परमेश्वरी भानुप्रिया योगिता नितिन वंशिका दिवाकर मन हा, धरसीवा बस स्टैंड ले शेदुलाल यादव सीता अर्चना अरुणा अनुराधा अल्पना रानू खुशी प्रवीण इकबाल कुरैसी मन हा। संगवारी अभी मोर हाथ में आऊ पाती हेबे हाँ? यानी 4 जून गुरुवार के संगवारी मन हा ये लिखे है कि ये संगवारी मन हवे खैरागढ़ राजलालपुर ले मोतीलाल भीमटे सुशीला मेघा नेहा येसु भीमटे मन हा, ये संगवारी मन लिखे है कि टीपत घाम और जरत भुइया के बाद धरत संझौती बेरा माँ 2 जून के युवानी ला हमर तीन लेके आइन मयारुक संगी थनेश्वरी बघेल और उत्कर्ष सुनबोईर मन हा, ये दिन क्रम अपन गोट माँ बड़ सुघर ज्ञान और सीख के गोट सुने बर मिलिस, बताएन कि छत्तीसगढ़ के संस्कृति बड़ पोट और समृद्ध है जौन हा छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया के भावना ला पूरा उजागर करते, यहाँ के रहवासी मन के सीधा सादा व्यवहार हा अपन अलगेज पहचान बनाते, यहाँ के चंदन जैसे पावन माटी माँ कला और संस्कृति लोक परंपरा लोक विश्वास तीज तिहार और जुन्ना इतिहास के सुघर मेल मिलाप होते, लोकगीत और लोक नृत्य हा अंतस ला छू जाते, यही सब ला जाने सुने बर मिलीस बड़ पसंद आईस कहा थे संगी मन हा, और यही दिन क्रम माटी के गीत माँ रिकिम रिकिम के आंचलिक गीत घलो सुने बर मिलीस, आज के सुघर यानी ये दिन के सुघर प्रस्तुति बर थनेश्वरी बघेल और ललिता साहू संग युवानी अनुभागला गाड़ा गाड़ा बधाई कहा थे संगी मन हा, और यहू संगी मन हा पाती पठो है, ये संगी मन है भाटापारा ले बचकामल मोतीलाल यादव मन हा, ये संगी मन लिखे है कि हम मन ला गुरुवार 4 जून के छत्तीसगढ़ी युवानी कार्यक्रम बहुत पसंद आईस, जेला लेके आ रही समर मयारुक संगवारी थनेश्वरी बघेल और उत्कर्ष सोनबोईर मन हा, एकर द्वारा करे गे गोट बात हा बहुत सुघर लागीस, हमर तरफ ले दोनों कंपेयर संगी मल्ला गाड़ा गाड़ा बधाई कहा थे, क्रम माटी के आखिर माँ समृद्धि दुबे ले पेश करे गए जम्मो कविता पाठ हमला बहुत ही पसंद आईस, अतिक सुघर कविता पाठ बर हमार डहले समृद्धि दुबेला बहुत बहुत बधाई कहा थे संगी मनहा, और संग माँ यहू संगी मनहा पाती पठो है, ये संगी मन है गाँव ढोढरी घोटिया ले महेश कुमार निषाद रंभारानी निषाद मनहा, माँ महामाया चौक मेघापारा चिल्फी ले रामकुशल पटेल संतोषी दीपांजलि पटेल मनहा, तेंदुभाटा मगरलोड धमतरी ले उमेंद्र कुमार निषाद मोहेश्वरी निषाद मनहा, आर्यनगर कोहका भिलाई ले उत्तम सिंह जंगेल मोरस जंगेल अनिल कुमार अजीत कुमार मनहा, रोहानसी ले डगेसर राम साहू नूतन साहू मनहा, लोकोपाली छटवन ले पुनीत राम सूर्यवंशी निर्मला सिंह निहारिका पंकज सिंह

0: सूर्यवंशी मन हा। वाह भाई संगवारी हो, आप मन हा पाती के माध्यम ले छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति, लोक कला, तीज तिहार, बोली भाखा के विषय में अतेक सुघर ढंग ले लिख के भेजे हो, तेन ला सुन के मोर मन हा गदगद हो गे। भाई कैसे तोरो मन हो गे नी तनु?
1: हाँ भाई हो गे।
0: तनु ये पाती ला सुन के महुला कुछ सुरता आवत है?
1: का सुरता आवत है?
0: तत सुन, मिर्चा कस चिपुर संगी पताल कस घुरतूर, छत्तीसगढ़ राज संगी राजधानी कस रायपुर, जी हाँ मया पीरित के बड़ बोली, ऐसन हवे संगी हमर छत्तीसगढ़ ही बोली। संगवारी हो, 4 जून दिन गुरुवार के युवानी के जम्मो क्रम ला पसंद करेव और अपन प्रतिक्रिया ला पाती के माध्यम ले पठेव, ओकर बर आप मल्ला अंतसले धन्यवाद है। आपके बधाईला ये कार्यक्रम के माध्यम ले थनेश्वरी बघेल और उत्कर्ष सोनबोईर करा अमरावथन। तनु पाती तो इहे तक रहीस भाई। हाँ। संगवारी मल्ला बता देथन कि कार्यक्रम ला पार्टी के कार्यक्रम आप मन के चिट्ठी के पाती ला कैसे भेजना है तेन ला
1: बता दे।
0: संगवारी हो, आप मन हा पाती ला एकर माध्यम ले भेज सकते हो। क्रम आप मन के चिट्ठी द्वारा केंद्र निदेशक पोस्ट बॉक्स नंबर 97 आकाशवाणी रायपुर। संगवारी हो, हमर पिन कोड नंबर आए 492001 और हमर और संगवारी मन हा अगर ईमेल के माध्यम ले अपन पाती पठोना चाहते ता हमर ईमेल एड्रेस हवे AIRYOUTH9@gmail.com और संगी हो एकर कोड आए YR। त संगवारी हो, आप मन के पाती के हमला इंतजार रही, ता क्रम आप मन के चिट्ठी इहें तक।

तनु, हमर देश एक ऐसे देश आए जौन ला पूरा विश्व भर मा हमन हमर देश ला माता कहिथन। वैसे हमर प्रदेश एक ऐसे प्रदेश आए जेला हमन ह छत्तीसगढ़ महतारी कहिथन। त चल संगी हो, यही महतारी के गुणगान करत सुनथन ये सुघ्घर अकन माटी के गीत ला।

0: संगवारी हो, अभी आप मन सुनत रहे हो सुघ्घर अकन माटी के गीत ला, जेला सुर दे हे गोरेलाल बर्मन और साथी मन।
1: और संग मा यहू संगी मन सुने बर चाहे रही नियवत ओमाल विदर्भले संतोष खडसे और विनोद खडसे मनहा, पलारी ले नीतीश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद लखनलाल देवांगन मनहा, रोहांसी ले डगेसर राम साहू, नूतन गौरव घनश्याम साहू मनहा, डोंगरगांव ले राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, अनिस्का और तन्मय गजभिये मनहा, लगहान पंडरिया ले उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी साहिल भारती बघेल मनहा, श्यामनगर दुरुग ले प्रदीप खंडेवाल और नीता खंडेवाल मनहा। तनु, पहली ते देखा थास, पहली के बेराल देखे हस गांव मा, पहली

0: संगवारी हो, अभी आप मन सुनत रहे हो सुघ्घर अकन माटी के गीत ला, जेला अपन सुर में पिरोय रहीन परसराम यदु और साथी मन
1: और संग में यहू संगी मन सुने पर चाह रहीन गाँव पलौद ले डोमार साहू दीपक ओम प्रकाश गरीबा राम रिखी राम साहू मन हा ग्राम जुलूम ले गुही।

0: साहू मनहा।
1: आजकल देखा था श्री साहब, सबो कोती धरती माता ला नुकसान हुआ थे, कहूं डहान पेड़ कटा थे तो कहूं डहान कचरा ला फेंका थे।
0: सिरतोन के संगी सही कहा था संगी, सबो डहान हा बंजर हुआ थे, हरियाली हा घलो कम हुआ थे धीरे धीरे।
1: ये बेरा मानसून घलो पिछवा गए, मानसून आही तो चारो मुड़ा हरिया जाही।
0: चारो मुड़ा धुर्रा धुर्रा होगे संगी, बड़े बड़े कारखाना मन के धुआं के मारे रंग रंग के बीमारी घलो आवत है।
1: हाँ भाई, खेत खार में घलो ज्यादा उत्पादन करे बर किसान भाई मन कीटनाशक के उपयोग ज्यादा करत है।
0: तेकरे सेती तो आजकल के साग भाजी मन ह पहली जैसे कहाँ मिठावा से तन्नू।
1: हाँ भाई, अब हम्मी मन ला धरती माता के रक्षा करे बर लगी, जेकर ले आने वाले पीढ़ी मन बर घलो बने हुए।
0: श्रीतोन के संगी, युवा मन हा आज प्रकृति के प्रति सजग होही ता हमर धरती हा सवर जाही, और एला सवारे के काम हमरेच आए संगवारी हो।

0: संगवारी हो, अभी आप मन सुनत रहे हो सुघर अकन माटी के गीत ला, जेला सुर दे है धुरवा राम मरकाम और दुखिया बाई है।
1: और संग में यहू संगी मन सुने पर चाह रही भवरपुर बसना ले चंपा देवांगन राधे श्याम जगदीश नेहा देवांगन मनहा भानपुरी ले आत्माराम यादव और तुलसी यादव मनहा। तनु देखा था घड़ी ला, घड़ी के काटा ला
0: देखा थू,
1: बेरा हा कैसे पहाते पता घलो नहीं चले। संगवारी हो जाए के पहली काली के कार्यक्रम ला बता देथन। ता काली के कार्यक्रम सजी संगवारी हो हिंदी मा, जेमा क्रम रही आज मेरी बारी है और नए तराने। ता संगवारी हो स्वस्थ रहो, मस्त रहो और सुनत रहो युवानी, और इही गोट के संग अपन संगवारी ऋषभ देव साहू और
0: तन्नू साहू ला देवा विदा।
1: नमस्कार, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, ये आकाशवाणी रायपुर है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है, 6 बजने को है समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी विशिष्टता बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। युवा और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
2: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
1: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने कहा कि हर घर और हर खेत को ऊर्जा का केंद्र बनाने के संकल्प के साथ भारत 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्म स्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने भी 100 रन की पारी खेली। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला टीम को भी बधाई दी है। मौसम विभाग ने केरलम और माही में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है।
3: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

0: अरे सुमित, तुमने बाइक इधर क्यों मोड़ दी?
1: अरे इसी रोड पर ही तो हमको जाना है यार। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: हेलो
0: सुमित, ये तुम क्या कर रहे हो?
1: हेलो, अरे बात कर रहा हूँ यार, मुझे बात तो करने दे।
0: सुमित, तुम Hello? गाड़ी रोक कर भी तो बात कर सकते हो।
1: अरे छोड़ ना यार, मैं तो चलती गाड़ी में ही कॉल अटेंड कर लेता हूँ। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: कौन? संदीप।
0: सुमित देख के।
1: हाँ बोल यार।
0: सुमित
1: कब आना है?
0: अरे देख के सामने।
1: ठीक है, और कौन आएंगे?
2: सुमित आज इस दुनिया में नहीं है और उसका दोस्त घायल है। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग बिल्कुल ना करें। खुद के और दूसरों की सुरक्षा के लिए यातायात के नियमों का पालन करें।
3: मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद बीमा कंपनी वाले क्लेम देने में बहुत देर कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं?
4: अरे जो सामान मैंने खरीदा वो तो खराब निकला, बेचने वाला इसे वापस नहीं ले रहा है, अब मैं क्या करूं?
5: मेरी बहन के ससुराल वाले उसे रुपयों के लिए बहुत परेशान कर रहे हैं। इस मुसीबत से मैं उसे कैसे बचा सकती हूँ?

ऐसे कोई भी परिस्थिति कभी भी किसी के भी जीवन में आ सकती है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानून की जानकारी सबको होनी चाहिए। हमारे संविधान में क्या है, किसी भी विवाद या परिस्थिति में समाधान का प्रावधान, जानने के लिए सुनिए आकाशवाणी रायपुर और प्रदेश के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर रविवार शाम 6:30 बजे समन्वित कार्यक्रम कानून की बात।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में। ये आकाशवाणी रायपुर है। अब आप छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग अभी

0: अभिषेक के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। सुशासन तिहार में मुख्यमंत्री ह आज गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के निमधा गांव और शक्ति जिला के ठठारी गांव में लगाई जन चौपाल। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति ह काली 7 जून के रायपुर के एक दिनी प्रवास में रही और भारतीय जनता पार्टी डहर ले पूरा प्रदेश में 21 लाख पौधा रोपे के बड़का अभियान शुरू करे गए है। अब समाचार विस्तार ले। सुशासन तिहार में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ह आज गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के निमधा गांव पहुंचिन और ग्रामीण मन ले भेंट करिन। ओमन ले बिजली पानी राशन रद्दा दवाई पानी शिक्षा और आवास जैसन जरूरी सुविधा के बारे में विस्तार ले चर्चा करिन। ए मौका में मुख्यमंत्री ह ग्रामीण मन के मांग ऊपर जिला में नर्सिंग कॉलेज निमधा गांव में मिनी स्टेडियम और मंगल भवन पर राशि स्वीकृत करे के घोषणा करिन। यही गोट बात के दौरान राजस्व विभाग ले जुड़े एक शिकायत सामने आईस जेमा मुख्यमंत्री ह संबंधित राजस्व निरीक्षक ला कड़ा चेतावनी देवत हुए साफ कहिन कि जनता के समस्या ला बेरा में निराकृत करो नहीं तो कड़ा कार्रवाई पर तैयार रहो। मुख्यमंत्री ह बताइन कि प्रदेश में जल्दी सीएम हेल्पलाइन शुरू करे जाही जेखर माध्यम ले लोगन मन टोल फ्री नंबर ईमेल और व्हाट्सएप ले घलो अपन शिकायत दर्ज करा सकी। मुख्यमंत्री ह आज शक्ति जिला के ठठारी गांव में घलो जन चौपाल लगाइन। ए गांव में ग्रामीण मन के मांग ऊपर मुख्यमंत्री ह सहकारी बैंक खोले के घोषणा करिन। लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ह रायपुर जगदलपुर रद्दा में केसकाल घाट 4 लेन बाईपास रूट के निरीक्षण करिन। ओमन निर्माण एजेंसी ला बेरा में गुणवत्ता के संग काम ला पूरा करे के निर्देश दिन। 11 किलोमीटर ले ज्यादा लंबा ये रद्दा ला 308 करोड़ रुपया के लागत ले बनाए जावत है। ये बाईपास में 2 ठिन बड़का और 2 ठिन मध्यम पुल घलो बनी। श्री साव ह केसकाल ले सलना तक रद्दा ला मजबूत करे बर चलत काम के निरीक्षण घलो करिन। श्री साव ह अपन कोंडा गांव प्रवास के दौरान जिला मुख्यालय में विभागीय अधिकारी मनसक बैठका करिन और आने आने विकास काम के समीक्षा करिन। बैठका में ओमन जिला के 3 नगरी निकाय कोंडा गांव केसकाल और फरस गांव में वर्षा ले पहली सबो तैयारी पूरा करने के निर्देश दिन और पिए के पानी के गुणवत्ता ला बनाए रखे बर सरलक जांच करे बर घलो कहिन। श्री साव ह आज अपन जगदलपुर प्रवास के दौरान निर्माणाधीन नालंदा परिसर के संगे संग आने आने विकास काम के निरीक्षण करिन और अधिकारी मन ले सबो कामला बेरा में पूरा करे के निर्देश दिन। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति ह काली 7 जून के रायपुर के एक दिनी प्रवास में रही। वह रायपुर में रखे गए पिछड़ा वर्ग संगठन के सामाजिक प्रगति चिंतन सम्मेलन में शामिल होई। एकर अलावा अधिकारी मन के एक ठिन बैठका में घलो शामिल होई। ये बैठका में मुख्य सचिव के संग राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रमुख सचिव घलो मौजूद रही। अपन प्रवास के दौरान ओमन राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संग शिष्टाचार भेंट करी। उन्हें भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्णा गौर ह घलो रायपुर पहुंचे थे। पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक साहू ह बताइन कि श्रीमती गौर ह प्रदेश पदाधिकारी मन संग बैठका करी और संगठन पिछड़ा वर्ग के समाज के सशक्तिकरण और अवैया कार्यक्रम मन के बारे में मार्गदर्शन देही। भारतीय जनता पार्टी डहर ले पर्यावरण ला बचाए और संवारे बर एक बड़का पौधारोपण अभियान के शुरुआत करे गए है। एकर तहत पूरा प्रदेश में 21 लाख पौधा रोपे के लक्ष्य रखे गए है। भाजपा प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी है बताइन कि प्रदेश के सबो बूथ में खचित पौधा रोपे के काम करे जाही। आकाशवाणी रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश डहल ले प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी के प्रसारण काली संजा 6:05 ले 6:10 तक करे जाही। एक कार्यक्रम ला छत्तीसगढ़ के सबो आकाशवाणी केंद्र एके संग रिले करी। एदारी के अंक में आप मन बिलासपुर जिला के बारे में जानकारी सुनिया। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचा था। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर। सुनो।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
1: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार बारी बखरी के गोठ, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। औ तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनाओ संगी संगवारी मल्ला तको सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से आप सुन रहे हैं लोक संगीत। लीजिए अब सुनिए छाया शर्मा, जयप्रकाश शर्मा और कमल सिंह चौहान के स्वर में ये छत्तीसगढ़ी गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत, कलाकार थे छाया शर्मा और साथी। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में। ये आकाशवाणी रायपुर है। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
5: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
6: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
5: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
6: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
5: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
6: क्यों?
5: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
7: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
8: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
9: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
8: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
9: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
8: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
9: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
7: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
10: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
9: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
10: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
9: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
10: आकाशवाणी से।
7: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
11: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज गौरेला पिंडरा मरवाही जिले के ग्राम निमधा और सक्ती जिले के ठेठारी गांव में जन चौपाल लगाई। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति कल रायपुर में सामाजिक प्रगति चिंतन सम्मेलन में शामिल होंगी। CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है और प्रदेश के विभिन्न स्थानों में अगले 5 दिनों तक आंधी तूफान और गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज गौरेला पिंडरा मरवाही जिले के ग्राम निमधा पहुंचे और ग्रामीणों से रूबरू हुए। उन्होंने ग्रामीणों से बिजली, पानी, राशन, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं के संबंध में विस्तार से चर्चा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की मांग पर जिले में नर्सिंग कॉलेज, ग्राम निमधा में मिनी स्टेडियम और मंगल भवन के लिए राशि स्वीकृत करने की घोषणा की। जनसंवाद के दौरान राजस्व विभाग से जुड़ी शिकायत सामने आने पर मुख्यमंत्री ने संबंधित राजस्व निरीक्षकों को कड़ी चेतावनी देते हुए स्पष्ट कहा कि जनता की समस्याओं का समय पर निराकरण करें, अन्यथा कठोर कार्रवाई के लिए तैयार रहें। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में जल्द ही सीएम हेल्पलाइन शुरू की जाएगी, जिसके माध्यम से नागरिक टोल फ्री नंबर, ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने आज सक्ती जिले के ठेठारी गांव में भी जन चौपाल लगाई। इस गांव में ग्रामीणों की मांग पर मुख्यमंत्री ने सहकारी बैंक खोलने का ऐलान किया।

0: आज के दौरान विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को सभी कार्य समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति कल 7 जून को रायपुर के एक दिवसीय प्रवास पर रहेंगी। वे रायपुर में आयोजित पिछड़ा वर्ग संगठन के सामाजिक प्रगति चिंतन सम्मेलन में शामिल होंगी। इसके अलावा अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक भी लेंगी। इस बैठक में मुख्य सचिव के अलावा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रमुख सचिव भी मौजूद रहेंगे। साध्वी निरंजन ज्योति अपने प्रवास के दौरान रायपुर में राज्यपाल रमन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से शिष्टाचार भेंट भी करेंगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्णा गौर भी कल रायपुर पहुंच रही हैं। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक साहू ने बताया कि श्रीमती गौर भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में शामिल होंगी और संगठनात्मक विषयों, पिछड़ा वर्ग समाज के सशक्तिकरण और आगामी कार्यक्रमों के संबंध में मार्गदर्शन करेंगी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए एक वृहद पौधारोपण अभियान की शुरुआत की जा रही है। इसके तहत पूरे प्रदेश में 21 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भाजपा प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी ने बताया कि प्रदेश के सभी बूथों में अनिवार्य रूप से पौधारोपण का कार्य किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की जल प्रबंधन पहल को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने सिंचाई दक्षता बढ़ाने और जल संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए राज्य में लागू कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन आधुनिकीकरण यानी MCAD मॉडल की प्रशंसा की है। मंत्रालय ने अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी छत्तीसगढ़ की तर्ज पर इस मॉडल को अपनाने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे किसानों, जल संसाधन विभाग और सुशासन के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता का सम्मान बताया है। छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने के लिए एकीकृत आजीविका कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। मुख्य सचिव विकासशील ने इस संबंध में अधिकारियों को विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। ये कार्यक्रम बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिलों में शुरू किया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में आवास और पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रकृति का संरक्षण भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है और पर्यावरण की रक्षा सभी की जिम्मेदारी है। श्री चौधरी ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए औद्योगिक उत्सर्जन की ऑनलाइन निगरानी और फ्लाई ऐश प्रबंधन की व्यवस्था को मजबूत किया गया है। उन्होंने बताया कि नवा रायपुर में 20,000 से अधिक पीपल के पेड़ लगाकर इसे पीपल सिटी के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा आज से शुरू हो गई है। ये परीक्षा 9 जून तक चलेगी। परीक्षा 2 पालियों में हो रही है। पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। परीक्षा के लिए प्रदेश में 5 केंद्र बनाए गए हैं। इनमें रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर और जगदलपुर शामिल हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। CBSE ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन की प्रक्रिया जुलाई तक जारी रहेगी। गृह मंत्रालय ने बताया है कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसाएं जो 15 मार्च से शुरू हुई हैं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार

0: की जाएंगी। पद्म पुरस्कार जिनमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री शामिल हैं, देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई नेशनल यूथ म्यूथाई चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ ने 7 स्वर्ण पदक सहित 17 मेडल जीते हैं। इस चैंपियनशिप में 26 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 900 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ से 36 सदस्यीय दल इस चैंपियनशिप में शामिल हुआ। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में बिलासपुर जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आगामी कुछ दिनों में प्री मानसून गतिविधियों के कारण मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के ऊपर बने चक्रवाती परिसंचरण के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में आगामी 3 से 5 दिनों तक आंधी तूफान और गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। राज्य में 12 से 18 जून के बीच मानसून के दस्तक देने की संभावना है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज कवर्धा के नए हाईटेक बस स्टैंड का शुभारंभ किया। इस बस स्टैंड में पुलिस सहायता केंद्र भी स्थापित किया गया है। दुर्ग पुलिस ने अंतर्राज्यीय ऑनलाइन सट्टा गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 9 आरोपियों को नागपुर से गिरफ्तार किया है। मौके से मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड, सिम कार्ड सहित भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और करीब 23 लाख रूपये के आभूषण जब्त किए गए हैं। दुर्ग जिले के नंदनी थाना क्षेत्र के कोड़िया धान खरीदी केंद्र में आज आग लग गई। इस घटना में 100 क्विंटल से अधिक धान जलकर नष्ट हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही कलेक्टर अभिजीत सिंह मौके पर पहुंचे और जांच के निर्देश दिए। रायपुर के जय स्तंभ चौक स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जोनल ऑफिस में आज आग लगने से अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने बताया कि घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। और विश्व साइकिल दिवस के उपलक्ष्य में महासमुंद में कल संडे ऑन साइकिल रैली का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के ग्राम निमधा और सक्ती जिले के ठेटारी गांव में जन चौपाल लगाई। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति कल रायपुर में सामाजिक प्रगति चिंतन सम्मेलन में शामिल होंगी। CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। और प्रदेश के विभिन्न स्थानों में अगले 5 दिनों तक आंधी तूफान और गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

मीडियम व्यू और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7 बजे हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।

अलका याग्निक, उदित नारायण और साथियों की आवाजों में आप सुन रहे थे समीर का लिखा गीत। फिल्म जानवर के लिए संगीत आनंद मिलिंद का था। आइए अब सुनते हैं अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में फिल्म बागी का गीत। गीतकार हैं समीर, संगीतकार आनंद मिलिंद।

श्रोताओं, अगले गीत से पहले एक सूचना सुनिए। आगामी मंगलवार 9 जून 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो किसान वाणी कार्यक्रम का विषय होगा वर्षाकालीन सब्जियों की नर्सरी। इस विषय पर आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर कमल नारायण वर्मा, विषय वस्तु विशेषज्ञ उद्यानिकी कृषि विज्ञान केंद्र पांडा दुर्ग। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 400-3482, 400-3483 और 400-3484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग 9 जून 2026 को दिन में 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार को ही शाम 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फ़ोन कॉल का इंतज़ार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत।

आई मिलन की रात। इस फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। समीर के लिखे गीत को सुरों में ढाला था आनंद मिलिंद ने। इसके साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं। 7:21 हुए हैं। प्रस्तुत है किसान साथियों का कार्यक्रम चौपाल।

0: राम राम सरिता दीदी।
1: राम राम दीपा उ संगे संग चपाल सुनैया जम्मो संगवारी मनला हमर दुनो के
0: राम राम। दीदी देख पर्यावरण ना हमर जीवन के आधार है। साफ हवा, स्वच्छ पानी, हरियर पेड़ पौधा और हरे भरे खेत पर्यावरण ला सुंदर और संतुलित बनाते।
1: बिल्कुल सही कहा था दीपा। हरा भरा खेत खलिहान मन धरती के शोभा बढ़ाते और यही तक किसान मन के मेहनत के चिन्हारी होते।
0: देख दीदी गुड बात का आगू गौ करबो फिर सुनथन अभी ये संदेश।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय
1: आँखी के जम्मू प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
2: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 बच्चर ले सवलग सेवा माँ।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
3: दीदी देख, जब खेत में लहलावत फसल दिखते ना, तब बड़ा आनंद मिलते भाई। और हरियर खेत में सिर्फ सुंदर दिखे के अलावा एमा अनाज है, फसल है और साग भाजी के जो उत्पादन होते ना, तेकर से हमर जीवन गलत चलते।
4: सिर्फ तो उनका थस दीपा, फिर यही हरियर हरियर खेत खार माटी में कोनो भी प्रकार के प्रदूषण होते ना, चाहे वो रासायनिक प्रदूषण हुए, चाहे वो प्लास्टिक के प्रदूषण हुए, ये जम्मो हर माटी के और पर्यावरण के स्वास्थ्य ला बिगाड़ते है नी। और एकर सीधा सीधा प्रभाव प्रकृति में रहवैया प्राणी जैसे चिड़ चुरगुन है, जानवर है, मन के ओकर ऊपर पड़ते।
3: दीदी जब हम प्लास्टिक के कचरा जैसे पॉलिथीन है, प्लास्टिक बोतल है या खजाने के जो पाकिट है और दूसरा प्रकार के प्लास्टिक के सामान है, तेला हमन पर्यावरण में फेंक देथन और एकर सही ढंग ले निपटान नहीं हो पाए, त यही सब ले प्लास्टिक प्रदूषण होते। कबर की प्लास्टिक ह धीरे धीरे सड़े वाला जीनिस आए और जेला सड़े में कई बच्चर लग जाते और एकर कारण माटी, हवा और पानी सबो प्रदूषित होते।
4: देख दीपा, आज से 15 साल 10 साल पहले जब हम देखत रहे गाँव में झिल्ली नहीं मिलत रही।
3: हाँ,
4: और गाँव के मन जो कोई भी कार्यक्रम हो, उत्सव हो, मैंने दोना पतरी जो पत्ता से बने रहते हैं, हाँ। पाना के बने ओला उपयोग करते हैं। अब धीरे धीरे समय बदलत गई, इस प्लास्टिक के जो है पहुंच गांव तक हो गई।
3: हाँ।
4: अब हर जगह डिस्पोजल प्लेट, डिस्पोजल प्लास्टिक के,
3: हाँ।
4: गिलास,
3: हाँ।
4: ये उपयोग में हुआ थे, खाई खजानी मन पाकिट में मिला थे, झिल्ली में मिला थे, है नी,
3: पहले कागज में मिला है
4: और एक ठन कई प्रकार के पाउच मिला थे, तो ये खा के हमन फेंक देथन, उपयोग करें फेंक दे, कचरा कहाँ जाये,
3: निपटान करना जरूरी है।
4: बिल्कुल,
3: और दीदी देखबे ना, आजकल पहले घुरुआ में कांच प्लास्टिक उसी कछु चीज नहीं फेंकत रहे, आजकल सब चीज घुरुआ में जाते हैं।
4: बिल्कुल, और ये कचरा के निदान भी जरूरी है। प्लास्टिक के टुकड़ा, माइक्रो प्लास्टिक माटी में जमा होते, जेकर ले माटी के संरचना और जल धारण क्षमता में कमी आ जाती
3: है। और जो माटी में उपस्थित जो लाभकारी सूक्ष्म जीव और केचुआ की जो गतिविधि है ना दीदी, तेनों में भारी मात्रा में कमी देखे पर मिले।
4: बिल्कुल सही,
3: प्लास्टिक प्रदूषण ले पौधा के जड़ के विकास ओकर बढ़वार अच्छा ढंग से नहीं हो पाए और तेकर ले सीधा सीधा प्रभाव जो है ओकर उत्पादन में पड़ते हैं।
4: काबर की पौधा के जो जड़ है वो पोषक तत्व तो पानी के अवशोषण जो अपन बढ़वार बर करत है वो सही तरीका से खींच नहीं पाए।
3: हाँ।
4: है ना, प्रदूषण बढ़ाते, प्लास्टिक मन एमा बाधा पहुंचाते।
3: हाँ, हाँ,
4: एकर परिणाम स्वरूप उपज में कमी देखे बर मिलते। और जो प्लास्टिक हमन खेत में छोड़ देथन, वर्षा के या सिंचाई के जो पानी ओकर संग बह के नदी नाला में पहुंच जाते, तरिया में पहुंच जाते, तेकर ले जल दूषित होते।
3: हाँ, और दीदी देख, पशु मन घलक अपन चारा के संग में प्लास्टिक निगल ले बात आजकल, है ना, ये घटना बहुत देखे बर मिला थी। और जेकर ले उकर उकर मन के पाचन तंत्र में गंभीर समस्या आते और कभी कभी तो उकर मन के मृत्यु घलक हो जाते।
4: बिल्कुल सही कहा था, तब प्लास्टिक ला यदि हम उपयोग करत हन और एक साथ निकाल के बाहर में जला देते, है नी, तेकर ले विषैला गैस निकलते और हवा भी प्रदूषित होती।
3: माने कुल मिला के प्लास्टिक हमर बर पर नुकसान के
4: नुकसान
3: होते।
4: के हाँ। और इला ज्यादा से ज्यादा हम जो उपयोग करत हन ओला कमती करन।
3: हाँ।
4: और ओकर बाद एकर निवारण बर,
3: हाँ,
4: पुनर्चक्रण या कहान रिसाइकलिंग,
3: हाँ,
4: एकर बारे में प्रयास
3: करन। हाँ, ओ प्रयास करन और विचार करन। और दीदी देख, अभी सरकार जो है ना अभी खेत बचाओ अभियान चलाते है, ये अभियान जो चलाते है अभी 1 जून ले 30 जून तक चलही।
4: ये अभियान के प्रमुख उद्देश्य है रासायनिक उर्वरक के विवेकपूर्ण प्रयोग, मृदा स्वास्थ्य में सुधार करना, संतुलित पोषक तत्व तो प्रबंधन करना, एकर बर प्रोत्साहित करना और प्राकृतिक खेती ला बढ़ावा देना। किसान संगवारी हो, किसान मन ला जो मृदा के परीक्षण के आधार पर जो खेत में रासायनिक उर्वरक हम उपयोग करथन ओला संतुलित मात्रा में करना है, ज्यादा से ज्यादा हरी खाद के उपयोग करना है, जैविक खाद और जो जैव उत्पाद है ओकर उपयोग करना है। इस हेतु जो किसान संगवारी मन है ओमन ला सरकार प्रशिक्षण भी देवत है, ओकर क्षमता के विकास भी करत है।
3: हाँ।
4: तो ये उद्देश्य है खेत बजाओ अभियान के। और दीपा,
3: हाँ
4: भाई, संगवारी मन ला एक ठन सूचना भी दे देता।
3: हाँ दीदी,
4: संगवारी हो, आगामी मंगलवार 9 जून 2026 के प्रसारित होवैया हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम के विषय हो ही वर्षाकालीन सब्जियों में नर्सरी विषय में आपके समस्या या जिज्ञासा के जो समाधान है ओकर बर स्टूडियो में मौजूद हो ही विशेषज्ञ डॉक्टर कमल नारायण वर्मा विषय वस्तु विशेषज्ञ उद्यानिकी कृषि विज्ञान केंद्र पहंदा दुर्गले। आप अपन जिज्ञासा और शंका के समाधान पाए बर हमन ला फोन कर सकते हो। हमार फोन नंबर है 400-3482 400-3483 400-3484। रायपुर के एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग 9 जून 2026 के 11:30 ले 12 बजे के बीच करे जाही। ये कार्यक्रम के प्रसारण मंगलवार के शाम के 7:30 में करे जाही। हमला आपके फोन कॉल के अगोरा रही और सूचना ही मेर सिरावा थे। और दीपा, जैसे कि हमन चर्चा करत रहन भाई कि हमला प्लास्टिक के उपयोग कम से कम करना है नी, और ज्यादा हो सके तो हम पहली जो पारंपरिक हमार साधन रही से जेला हमन कह सकथन पर्यावरण हितकारी है नी, ओकर हम उपयोग करन, दोना के पत्तल के उपयोग करन, थैला के इस्तेमाल करन, झिल्ली मत ले जावन, और पैकेट बंद जो सामान है ओला कम से कम खरीदन। हाँ। प्लास्टिक के जो सामान के अलावा पर्यावरण हितकारी जो सामान है ओला खरीदन है नी, एकर से हमारे पर्यावरण में प्लास्टिक के जो प्रदूषण है वो कम हो ही और पर्यावरण जो है वो बढ़िया रहे।
3: हाँ।
4: जब पर्यावरण अच्छा रही तो हम अच्छा रहो। और भाई बेरा हुआ थे किसान वाणी के, प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: हम है भारत के किसान हम
1: किसान हम
2: किसान हम।
3: संगी हो परशराम यदु औसाती के स्वरमा सुन्थन ये गीत।

0: संगवारी हो ये सुघर गीत ला अपन स्वर में सजाए रहीन परशुराम यदु और साथी मन।
1: दीदी एक जन जौन संगी मन करा पौधा लगाए बर या साग भाजी लगाए बर जमीन भुइया के कमी है, या फिर जौन संगी मन शहर में रहते और अपन घर में छोटे स्तर में फल फलहारी और साग भाजी लगाए में रुचि रखते, वो मन कैसे छोटे से जगह में बागवानी कर सकते, ऐसने ही एक विषय है हमार आज के सलाह क्रम में। घर की खेती में घर की छत में जैविक विधि ले सब्जी और फल उत्पादन कैसे करन, ये जानकारी देवत है श्रीमती पुष्पा साहू जी हैं, जिला हरियाली दीदी के नाम से जानते हैं नमन। ये हरे अवंती विहार रायपुर ले आप मन संग गोट बात करे है तेजेश्वर साहू हर।
2: संगी हो, खेती किसानी में नवाचार और नवा उद्यम के बड़ महत्ता हावे। परंपरागत जोन खेती है ओकल जब कहूँ हमन हटबो और जब हमन नवाचार ला अपनाबो या नवा ढंग के जब खेती ला करबो या एक ओती हमन जब चेत करबो तो बड़ लाभ के हावे। आज हमर संग राज्य और केंद्र के बहुत अकन जोन सम्मान है ओकल ले सम्मानित और नवाचार महिला कृषक पुष्पा साहू जी हैं। इमन हा रायपुर ले हैं जिन मन हा अपन घर के छत मा साग सब्जी के खेती करत है, संग मा फल के खेती करत है और सबले बड़े बात यह है कि इमन हा जैविक और प्राकृतिक खेती ला घलो अपनावत हावे। मैडम सबले पहले हमारे ये कार्यक्रम में आपके स्वागत है, राम राम।
3: राम राम
2: मैडम, सबले पहली तो हमार पहली सवाल ही हावे कि भाई नवा बात है कि घर के छत में हमें सब्जी लगाना है या कोनो भी फलदार पौधा लगाना है तो का संभव हावे कि नहीं होला बताते हो?
3: हाँ बिल्कुल संभव है, मैं ये काम अपन घर में अपन घर के छत में करत हूँ।
2: अच्छा, अभी आप कौन कौन से सब्जी मन के या फल के उत्पादन आप ले था वो?
3: अभी हमारे यहाँ घर में सब्जी बहुत तरह के है, बरबट्टी, केला, क्या कहते हैं करेला, रखिया के, मतलब अभी ये बोए के सीजन है एमा हमन ये सब उगाए हुए हैं। उकर अलावा अभी हमारे घर में फलत है करेला, बरबट्टी, गवार फली इत्यादि।
2: हाँ, ये जो सब्जी है उकर मन के जो खेती के तैयारी है या अपन जब कहान की जब बोनी करना है तो कौन ढंग लोकर बोनी करे हावो या का का जिनिस के उपयोग करे हावो बता?
3: समय समय के हिसाब से हम सब्जी के बोथन जेन सीजन में जोन सब्जी होते अभी के जैसे समय है कि अभी हमन बोथन करेला बरबट्टी, ये सीजन है करेला बरबट्टी बोए के साथ ही गवार फल्ली बो दीस, रखिया बो दीस, एक नर्सरी तैयार करके फिर एक बाद ओला हम अपने में शिफ्ट करथन, गमला में से डायरेक्ट लगा सकथन, लेकिन नर्सरी तैयार करे में आसानी हो जाते तो वो सब ला बो करके हमन तैयार किए हुए हैं और साथ ही हम फल के पौधा भी लगाए हुए हैं। फल के पौधा के बारे में कही था, हमारे घर में सब तरह के फल होते हैं।
2: अच्छा, फल के खेती बार कौन ढंग ले कर जो महत्वपूर्ण तैयारी हावे?
3: फल के जब बात हुई तो 6 फुट के लंब हाइट वाला पौधा लेथन और उकर साथ ही साथ हमन बड़े बड़े कंटेनर्स की यूज करथन और उला कालम मरक और उस प्लास्टिक के कंटेनर लेथन जैसे 1000 जो पानी के पीवीसी की टंकिया आते 1500-200 एमा हम फल के पौधा लगाथन। उकर बर हम तैयारी पे ये करथन कि कॉलम लेथन, कॉलम के ऊपर बड़े कंटेनर रख के उमा सबसे पहले नीचे होल करथन ताकि अतिरिक्त पानी बाहर, उमा कंक्रीट रख करके मिट्टी, खाद और रेत इला प्रोपोर्शनेट मिला करके रखथन। 50% मिट्टी रही है हमार, 40% खाद रेत और वर्मी कंपोस्ट, ये सबला मिला करके हम उमा भर देथन कंटेनर में सबला मिक्स करके और उकर साथ ही साथ हम एक्स्ट्रा पानी निकले के जो होल है उमा पाइप लगा देथन ताकि छत में हमार कोई सीपेज नहीं है और उमा हम हर कंटेनर में एक बड़े पौधा लगाथन, उकर साथ में हम अंतरवर्ती फसल भी लेथन
2: जी।
3: तो बड़े पौधा में आम के जैसे लगा दिए एक में सेव तो कॉलम हमार जितना कॉलम है उस कॉलम के ऊपर हम हर तरह के कंटेनर्स बड़े कंटेनर्स रख देते हैं।
2: अभी आपके यहाँ कौन कौन से फलदार पौधा आवे?
3: हमारे यहाँ तो 10-12 प्रकार के पौधे हैं जैसे कि सेव, केला, आम, पपीता, अनार, मौसम्बी, चीकू और साथ ही साथ हम ड्रैगन फ्रूट, गन्ना, सीताफल, हर तरह के फल है और हमें हर ये इस विचार से सोचो कि छत में काश फल नहीं हो सके, सब फल हमारे घर छत में सब फल
2: जी। जैसे मैडम अभी आप कहते रहो कि आम के भी आपके हैं तो आमा बर ऐसे हावे कि भाई छोटे बौना पौधा होना चाहिए तो ओकर बर किस्म के चयन कौन ढंग करे हावो, का बात के ध्यान रखे?
3: उन्नत किस्म के लेथन जो 2 से 2.5 साल में फल जाते हैं, उन्नत किस्म के पौधे लाए और वो मिनिमम छह फीट होना चाहिए के हाइट तक ही वाला रखवो, ओकर बाद के लिए हम अतिरिक्त काट देथन, ऊपर से छांट देथन तो ताकि वो घना होते गोल और उमा बढ़िया फल आते।
2: अच्छा मैडम, वो एक चीज बताते हो कि जैसे फल है या सब्जी हमन लगा था तो कौन कौन बात के हमन सावधानी रखन या का बात के हमन चेत रखने ला?
3: फल एवं सब्जी लगाए के समय मेन सावधानी ये है कि फल के बात आते तो फल बड़े कंटेनर में ओकर पैरलर में हम छोटे से अंतर्वर्ती फसल में हम सब्जियां वगैरह भी ले सकते हैं और पैरलर में छोटे छोटे गमले के जरिए हम सब्जियों को लगा सकते बो सकते हैं। उमा मेन सावधानी सिर्फ इतना ही रही थे कि पानी दिए के समय हम ज्यादा पानी कोई सब्जियां कम पानी वाले रहते कोई ज्यादा पानी वाले तो ओला ध्यान दिए तो ये संभव हो सकता है कि हम हर प्रकार के सब्जी अपन घर में।
2: अच्छा पानी अभी जैसे बात करते रहे हो तो सिंचाई के कौन कौन से व्यवस्था है और कौन ढंग ले आप सिंचाई करते हो बेरा का है ओकर सिंचाई करे के?
3: सिंचाई करे के बेरा है समय के सुबह के टाइम रहते और शाम के टाइम रहते धूप में पौधा में पानी नहीं डालना चाहिए और साथ ही साथ जैसे सिंचाई की व्यवस्था के बात करते हैं तो हम एक तरीका होते थे पाइप के डायरेक्ट अपन सिंचाई का तो उमा टाइम ज्यादा लगते तो ओकर से बचे के लिए हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के इस्तेमाल करें या फिर एक तरीका और है जैसे ओवरहेड टंकी हो अपन घर में पानी के तो उमा से जो जितना भी मतलब जैसी पानी भरी तो लिटरल पानी अपन सब कैरी में ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से हम छोड़ दिए तो इमा समय के भी बचत होते साथ ही साथ पानी अपन आप सब पौधों में निश्चित समय में निश्चित मतलब थोड़ा थोड़ा मात्रा में अपन मिल जाते तो पानी के भी बचत हो जाते तो इस तरीके से हम सिंचाई भी कर लेते हैं नोमा पेड़ पौधों मन में और समय तो आधा घंटा समय हमारे छत के सारा काम जैसे कहना चाहिए कि छत में गए तो पौधों के देखभाल करना पानी डालना कहीं पर खाद डालना ये सब हम आसानी से कर लेते हैं।
2: लेकिन हमारे कतको जन किसान संगी है जे मन खेती करना चाहिए उकर मन में एक ठन सवाल है मैडम कि भाई सामान्य जो हमारे खेत है वे नीचे जमीन वही मन में अभी तक खेती करत आ था अब छत में खेती करना है ओकर बर पोषक प्रबंधन कैसे ढंग ले करी भाई का मन ला खाद पानी दे लगी?
3: जब जमीन में खेती करते हैं तो कीड़ा मकोड़ा के प्रकोप भी ज्यादा होते और जब छत में हम खेती करे जाते हैं तो कीड़ा मकोड़ा के प्रकोप भी कम होते जेकर से हमन ला ज्यादा दवाई भी नहीं छिड़ना पड़े और अच्छा उत्पाद के फल सब्जी हमन ला तैयार मिलते और सबसे ज्यादा ये होते कि पोषक तत्व के उमा बढ़ोतरी हो जाते जैसे हम जितके दवाई छिड़बो उतके पोषक तत्व कम हो जाते तो उसे से बच भी जाते हैं हम और साथ ही हम छत में अपन शुद्ध जैविक सब्जियां उगा लिए खाद डाल दिए ना वहाँ खाद डालना है तो थोड़ा एक उमा लेकर के कंटेनर में लेकर के थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा सब में डाल दिए गोबर खाद भी ऊपर से डाल दिए तो कोई एमा परेशानी तो नहीं हुआ अभी तक तो जहां तक मैं कर रही हूँ तो जमीन से ज्यादा सरल है। जमीन के खेती पर तो कहना चाहिए कि हमला वर्कर बुलाएल पड़ते लेकिन छत के खेती के बाद आते तो हमन ला कहीं से कोई किसान कोई भी वर्कर बुलाए की जरूरत नहीं पड़े हम अपन स्वयं के अपन जा करके कर सकथन उकर साथ ही अपन बुजुर्ग मन ला भी उमा इन्वॉल्व करके हम ओहू मन ले थोड़ा सा समय के साथ साथ उमन के कहना चाहिए कि उमन जिस तरीके से घर में संकुचित रूप से बैठे रहते उकर से उमन में चहल पहल हो जाती ये वातावरण तैयार होते करके हमला छत में जवे खेत करना बहुत जरूरी है।
2: और एक चीज और बताते हैं मैडम जैसे अभी हमन सब्जी लगा है और सब्जी ऐसे कि कीड़ा मकोड़ा बहुत होते हैं रोग राय बहुत तो ओकर निदान बर कैसे करते?
3: ओकर निदान बर सिंपल हम सब्जियों के वो आते नीम के वो तेल आते वोला मिक्स करके और ओकर अलावा समझो नीम के खली सरसों खली इत्यादि ले करके वहाँ डाल देते हैं सड़ा करके और घर के हमारे जून बचे कुचे कचरा उचरा सब खा ओकर सब हमन खाद बना लेते हैं सब्जी के छिलका विलका सबके तो खाद ला हम उपयोग कर देते हैं और साथ ही हम जैसे घरेलू चीज हमर घर के सब्जी के प्याज के छिलका बचे वाला पानी में डाल करके ओला करके क्या कहते हैं ओकरे पानी डाल दिए तब वो कीड़ा मकोड़ा थोड़ा सा वो होते कम होते और ओला खाद भी मिलते सर्फ पानी होते निरमा पानी होते तन कर घोल बाल्टी में करके ओकरो छिड़काव कर देते हैं तो ओहू में भी कीड़ा मकोड़ा नहीं मिले तो अधिकांश तौर पर तो सबसे ज्यादा तो ये होते कि छत में कीड़ा मकोड़ा के शिकायत कम होते तो ओकर हमला ज्यादा जरूरत नहीं पड़े कि ज्यादा हमला कोई जैविक दवाई के और मार्केट में तो आजकल बहुत सारा उपलब्ध है हो ही गए है कि ये दवाई लाओ तो ये डाल लो तो वो भी ला करके आप कर सकते हो लेकिन अपन स्वयं के जरूरत नहीं पड़े नीम के तेल नीम के माँ हम पानी डुबो करके वहाँ डाल करके छिड़काव कर दे।
2: मैडम ओमा भाई मौसम घलो अही वैसने कि हमन बीज बोनी कर सकन और कतको संगी मन जब एला सुनही तो कही कि हम उमन घर के छत में खेती करते हैं तो ओमन कौन ढंग ले शुरुआत कर सकते और शुरुआती कैसे ढंग से कर सकता ना मन है या कोनो भी संगी मन है ओकर बारे में बताते हो।
3: देखिए जब छत में हमन लेथन पेड़ पौधा तो सबसे मेन बात आ जाते कि हमला गमला इकट्ठा करना है तो गमला इकट्ठा करना है तो जिसे पेंट वेंट के बाल्टी वाल्टी है वो मन ला लेकर के भी खर्चा कम खर्चा में कर सकत हन हम हमारे घर में रखे है ओला अपन पुराना बाल्टी डिब्बा ए मन के उपयोग कर लिए और साथ ही हम 1,000-2,000 के मतलब धीरे धीरे ही हम कोई भी चीज ले बढ़ा सकते हैं। काबर की छत में जब हल्के कोई भी सब्जी या फल के खेती करे जाते हैं तो मतलब कंटेनर की जरूरत पड़ती है। कंटेनर खरीदना है प्लास्टिक के भी ले वो तो भी खर्च तो है ही। तो नियमित रूप में मतलब थोड़ करके हम एला आगे बढ़ा सकते हैं कि आज हमार जितना आवश्यकता है अगर 8-10 हमारे पर हमारे घर के जितका जरूरत के सामान है वो मस्त निकले हुए एक्स्ट्रा जो भी है कंटेनर वो मल्ला हम उपयोग करके शुरू करें एक बाद हमारे जैसे हमारे एक आमदनी हुई।

0: तो नया हम कंटेनर खरीद के ले आए, नए नए प्लास्टिक के बाल्टी ले आए। ये तो अपन मतलब ये है कि हम अपन बजट के अनुसार हम एला धीरे धीरे आगे बढ़ान। छत में करे भर सिर्फ इतका ही भर होते कि हम अल्लाह मिट्टी खाद सब मंगाना पड़ते, या फिर अपन के स्वयं के यदि खेत जमीन है तो वहां से मिट्टी आ जाते, उपलब्ध हो जाते, खाद भी अपन घर में गाय गोबर के मिल जाते तो खर्चा नहीं लगे, और नहीं तो थोड़ा थोड़ा मंगाए में थोड़ा खर्चा तो आते। तो धीरे धीरे एला अपन थोड़े थोड़े मात्रा में हम कर सकते।
1: जन घर के जन छत है मैडम, ओमा खेती करे में का फायदा हवे, संग में जन पर्यावरण के संरक्षण है वो कोन ढंग ले में सुरक्षित होते वाला बताओ।
0: देखिए जब हम अपन घर के छत में पेड़ पौधा लगाबो तो हम सबसे पहली चीज तो होते कि हम पर्यावरण प्रकृति के नजदीक आए, प्रकृति के नजदीक आए, पौधा लगाए पर्यावरण में सुधार कर सो है कि जिसे हम पेड़ पौधा लगाए तो शुद्ध हवा जो मिलते हम अल्लाह तो पेड़ पौधा से ही मिलते, यही पेड़ पौधा से जो पत्तियों से भाप बन करके जो पानी ऊपर जाते वो वापस नीचे होते, तो इससे पर्यावरण तो सुधार हो ही, धुआं हुआ इत्यादि के जो अभी जितना गाड़ी कर होते तो इनसे बचे के बार ही हम सबसे ज्यादा पेड़ लगा, जितना पेड़ लगा वो उतना शुद्ध हवा हमें मिली, पर्यावरण भी शुद्ध हुई। काबर की यदि वीरान जंगल टाइप ये रही, क्या कहते हैं कंक्रीट के जंगल रही यदि, तो वहां तो कहीं शुद्ध हवा आना ही नहीं है। तो ओकर से बचे बार ही तो हम बात करते हैं कि हम अपन छत में ही कम से कम, अगर जमीन नहीं है मर करा तो कम से कम छत में हम फल के खेत कोई भी पेड़ पौधे फलदार पेड़ लगाएं तो ओकर शुद्ध हवा तो मिली, ओकर से हमन के पर्यावरण तो सुरक्षित हो ही होई, साथ ही हमन के स्वयं के विकास भी हुई कि हम एक बार अपन छत में जान देखन पेड़ पौधा ला तो वहाँ शुद्ध ताजी हवा मन ला, जो आज के में मिलना मुश्किल होते धुआं धुआं जैती देखी तो गाड़ी के रेला है छत शहर में तो वो सबसे हम प्रदूषित हो जाथन वो पौधा लगाए से हम उसे पत्ते।
1: मैडम हमन जिसे शुरू में बता रहे हैं कि आप राज्य और केंद्र सरकार के जो है बहुत अकन सम्मान सम्मानित हो, एक उठन आप ला याद हुई जिन मन में आप सम्मानित हुए हो?
0: ऐसे तो बहुत सारा
1: मतलब बताते हो,
0: महिला सम्मान हुई से मिली है मुला, और सबसे मेन तो कृषि के जो क्षेत्र होते हैं अमन के IRI करके वहाँ से मुला पूसा से मुला एक वो मिली पुरस्कार मिली, तो सबसे बड़े पुरस्कार है, साथ साथ तो बहुत सारा स्त्री शक्ति सम्मान और बहुत सारे सम्मान मिली। कहना चाहिए कि हर जगह जहाँ जाओ मतलब हर कोई बुला करके भी दिए है, उद्यान रत्न करके एक होते वो तक मुला मिले ही।
1: तो ये जन जतिक भी पुरस्कार आप मिले है वो हर आपके जन घर में जब छत में खेती करे हो उकर बाद मिले?
0: हाँ उकर बाद मिले।
1: तो ये बहुत बढ़िया बात है मैडम, आपके मतलब सम्मान की बात है तो सम्मान तो मिलना भी चाहिए, और बड़ सुघर बात आप बताओ कि काका सम्मान आप ला मिले हवे। मैडम आप हमारे ये कार्यक्रम में आयो और संगी मल्ला अपन जो नवाचार है या आप जो खेती करत था वो खेती में काका नवाचार आप कर सकते हो, उद्यम ला या एक प्रकार से कहान कि उद्यम है यहू तो ओला आप बताओ और संगी मल्ला बड़ सुघर जानकारी घलो लागिस हो ही, एक बार आपके धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: संगवारी हो अभी सुनेन आज की सलाह में भेंट वार्ता, घर की छत में जैविक विधि से सब्जी एवं फल उत्पादन। जानकारी देवत रहीन श्रीमती पुष्पा साहू हरियाली बहिनी अवंती विहार रायपुर ले। आप मन संग गोट बात करत रहीन है तेजेश्वर साहू। दीपा।
3: हाँ दीदी।
2: भाई कतका सुघर बात है मन बताइन कि जिला बागवानी के शौक है।
3: हाँ।
2: वो कम जगह में भी बागवानी कर सकते
3: हैं,
2: घर के छत में फल फलिहारी लगाए है, साग भाजी लगाए है, और कतका सुघर अपन घर के फल और सब्जी लखावत।
3: हाँ दीदी।
2: इसने हमर संगवारी मन घलो जागरूक हुआ और कम जगह में ज्यादा ज्यादा उत्पादन ले सके।

0: gmail.com। पता एक घाव बता देता हूँ, RAI आज के प्रश्न 23@gmail.com। तो संगी हो एक सही जवाब जल्दी से जल्दी आप मन हमारे तीर भेजो। और दीदी अब पाछू हफ्ता प्रश्नकारी से और सही जवाब भेजिए, हमारे संगी मन के नाम बता दे तो और सही जवाब के संग में।
1: संगवारियों पाछू हफ्ता में पूछे गए हमारे प्रश्न रही से, वर्ष भर उगाए जाने वाले चारे फसल कौन कौन से हैं। सही जवाब है शंकर नेपियर घास, गिनी घास। सही जवाब भेजिए हमर संगवारी मन है बेमे तरले, सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा, हेमलता सारथी, कमलकांत सारथी, वीरेंद्र ब्रिजकांत सारथी मन। नवागढ़ कटैले हैं नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, यामिनी वर्मा मन। अड़ार नानघाट ले हैं माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी, भूपेश, दीपेश वर्मा। लोरमी चचेड़ी ले हैं चमन मरावी, अमन मरावी, सुमित मरावी, रिंझा, तनु, राही मरावी, कमलकांत मरावी, प्रमिला, नेहा मरावी मन। गंडई पंडरिया ले हैं शिवा यादव, राज यादव, चिंटू और तरुण यादव, चोवा यादव, निर्मला यादव मन। घटा रानी फूलझर ले हैं योगेश्वर साहू, डुमेश्वरी साहू, यामिनी साहू, मुस्कान, हर्षिता साहू मन। और हमार संगवारी मन है लोहारी डीले यशवंत साहू, रमेशिया साहू, करही भदर ले हैं कृपाराम निर्मलकर, लखनीबाई शारदा निर्मलकर, पुरुषोत्तम निर्मलकर, तेंदु भाटा मगर लोड ले हैं उमेंद कुमार निषाद, मोहेश्वरी, देविका पोषण, नूतन, सुरेंद्र, यशस्वी, भास्कर, किशन, दिव्यांश, भूपेश निषाद मन। गर्रा बांधा बाजार ले हैं मानवेंद्र कुमार साहू मन। तसंगवारी हो आप मन सही जवाब लिख के हमर तीर पठोए हो, एकर बार आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद और गाढ़ा गाढ़ा बधाई। ऐसने ही आप मन प्रश्न के जवाब ला जल्दी से झटकुन हमर तीर लिख के भेजा, ताकि अवैया जो शनिवार है तब तक आपके पत्र या ईमेल हमर तक पहुंच जाए और ये क्रम में शामिल हो पाए।
0: दीदी अब ये क्रम में अभी हम गीत संगीत सुन लेथन, और एक ठन विदुषी ममता चंद्राकर और साथी के शर्मा ये गीत सुनथन।

0: संगवारी हो ये सुघर गीत लगावत रहीन विदुषी ममता चंद्राकर और साथी मन।
1: दीदी देख कार्यक्रम कतिक सुधर गुड बात हुई से चर्चा हुई से अब एक संग अब हो गए हमार जाए के बेरा है ना। त संगी मल्ला जाए ले पहली बता देते हैं हमार काली के कार्यक्रम काली चौपाल माँ गुड बात के संग आज की सलाह माँ जानकारी के विषय रही वर्षा जल संरक्षण एवं शून्य भू परिष्करण ये विषय माँ जानकारी दी डॉक्टर के साहू वरिष्ठ वैज्ञानिक मृदा विज्ञान रायपुर ले और संग माँ गीत संगीत के आनंद लेवो और कृषक प्रश्न मंच माँ सवाल जवाब तक हुए करी त संगी हो देव विदा कार्यक्रम सुनैया जम्मू संगवारी मल्ला दीपा और
0: सरिता के राम राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8 बजे हैं, आइए सुने चित्रपट संगीत।

0: मोहम्मद अजीज को आप सुन रहे थे फिल्म नगीना में। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
2: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार, बारी बखरी के गोठ, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। और तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनो संगी संगवारी मल्ला तक सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।

ये इश्क नहीं आसां। इस फिल्म का गीत आपने सुना अनवर की आवाज़ में। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इसके साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम व्यू और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत। कलाकार हैं फेरित पटेल और साथी। इनके स्वर में पहले सुनिए कर्मा।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिरित पटेल और सत्यभामा यदु के स्वर में ददरिया।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिरित पटेल और कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति सुनिए खेदू देवांगन और सुनती साय के स्वर में

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत। इस कार्यक्रम में कलाकार थे फिरित पटेल और साथी। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8:30 होने को हैं। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। प्रज्ञानानंदा ने विंसेंट कीमर को हराकर नॉर्वे शतरंज का खिताब जीता। सविता श्री भास्कर ने भी महिला एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप अपने नाम किया। केएल राहुल और कप्तान गिल के शतक से पहले टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की स्थिति मजबूत। बीसीसीआई ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली टी20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का किया ऐलान। श्रेयस अय्यर होंगे टीम के नए कप्तान। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का फाइनल मुकाबला माया च्वालिंस्का और मीरा एंड्रीवा के बीच जारी। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल अलेक्जेंडर ज्वेरेव और फ्लेविया कोबोली होंगे आमने सामने। भारत की अंडर 18 लड़कों की टीम ने जापान को हराकर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीता और सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताबी मुकाबला भारत और बांग्लादेश के बीच जारी।

0: तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं माइंड गेम शतरंज से, जहां प्रज्ञानंदा और सविता श्री भास्कर ने बेहतरीन प्रदर्शन कर दिखाया है। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता में प्रज्ञानंदा ने विंसेंट कीमर को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। वे इस चैंपियनशिप को जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। 2021 में कार्लसन के बाद ये पहली बार है कि किसी खिलाड़ी ने इस टूर्नामेंट में लगातार 4 मैच जीतने का कारनामा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने इस जीत पर प्रज्ञानंदा को बधाई दी है। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
1: शह और मात के खेल में कल 10वें और आखिरी राउंड में प्रज्ञानंदा ने विंसेंट कीमर को हराकर खिताब अपने नाम किया। सफेद मोहरों से खेलते हुए प्रज्ञानंदा ने बीच के गेम में कीमर की कुछ गलतियों का फायदा उठाकर 45वीं चाल में जीत हासिल की और टूर्नामेंट को 5 जीत 2 हार और 2 ड्रॉ से 18 पॉइंट्स के साथ खत्म किया। उनके दोनों ड्रॉ मैचों का फैसला आर्मागेडन गेम में हुआ, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की। दुनिया के पूर्व नंबर 4 खिलाड़ी वेस्ली सो ने आखिरी राउंड में अलीरेजा फिरोजा के खिलाफ ड्रॉ खेला और टूर्नामेंट को 17 अंकों के साथ समाप्त किया। उनके खाते में 2 जीत और 8 ड्रॉ रहे, जिनमें से 6 आर्मागेडन मुकाबलों में उन्होंने जीत हासिल की। 10वें राउंड में वेस्ली सो ने 1.5 अंक जुटाए, जबकि फिरोजा सिर्फ 1 ही अंक हासिल कर सके। अलीरेजा फिरोजा 15.5 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन जो इस टूर्नामेंट में 2 बार आर प्रज्ञानंदा से हार गए, 13 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रहे। उन्होंने 3 मैच जीते 4 हारे और 3 ड्रॉ खेले। कीमर 11 पॉइंट्स के साथ 5वें स्थान पर रहे, जबकि भारत के मौजूदा क्लासिकल वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश 1 जीत 5 हार और 4 ड्रॉ से 8 पॉइंट्स के साथ 6ठे और आखिरी स्थान पर रहे। फाइनल में सबका ध्यान प्रज्ञानंदा पर था, क्योंकि वो ओवरनाइट लीडर वेस्ली सो से आधा पॉइंट पीछे थे। वेस्ली सो के फिरोजा के साथ शुरुआती ड्रॉ पर सहमत होने के बाद वो आगे निकल गए। उन्होंने बीच के गेम में मिली बढ़त को कीमर पर एक शानदार जीत में बदल दिया। उन्होंने नॉर्वे चेस में शानदार खेल दिखाते हुए जबरदस्त वापसी की और ये प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम कर लिया। 6ठे राउंड के बाद प्रज्ञानंदा अंक तालिका में 6ठे और आखिरी स्थान पर थे। हालांकि इसके बाद उन्होंने लगातार 4 मुकाबले जीतकर शानदार वापसी की और इस दौरान उन्होंने मैग्नस कार्लसन को दूसरी बार हराया और अंतिम से पहले वाले राउंड में अपने हमवतन डी गुकेश के खिलाफ भी जीत दर्ज की। इन जीतों के बूते वो खिताब की दौड़ में शामिल हुए। 2021 में कार्लसन के बाद ये पहली बार था कि किसी भी खिलाड़ी ने इस टूर्नामेंट में लगातार 4 मैच जीतने का कारनामा किया हो। मैच के बाद प्रज्ञानंदा ने फाइनल के अपने अनुभव को साझा किया।
2: Yeah, I'm very happy. I didn't expect it when I lost 2 games in a row, but I think I was also playing with a lot of control in the last 4 games and things are also just going my way, so obviously very happy. Didn't do anything special, but the one match thing is that just to keep some time in reserve and not get down to seconds, because it's basically like tossing a coin when you're down to seconds. So that's something I improved in my play. Like I was playing a little bit faster. I was having time advantage in almost all like the 4 games. And then I think overall my quality was good throughout the tournament. I was getting good positions even in the first half, but I was just not converting them. So once I started to have some time, I think it started to go my way.
1: World number 1 Magnus Carlsen ne maujooda world champion D Gukesh ko hara kar apne gharelu tournament ko jeet ke saath khatam kiya. मुनीश शर्मा
0: उधर 19 वर्षीय सविता श्री भास्कर ने मंगोलिया के उलान बतूर में आयोजित महिला एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है। इस जीत के साथ ही उन्होंने 2027 फिडे महिला विश्व कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। सविता ने अफरूजा खमदमोवा को फाइनल मुकाबले में हराया। और अब रुख कर लेते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर, जहां भारत ने एकमात्र टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने भी 100 रन की पारी खेली। सुनते हैं मैच के पहले दिन कैसा रहा खिलाड़ियों का प्रदर्शन।

0: महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में जारी एकमात्र टेस्ट मैच का पहला दिन भारत के नाम रहा। टीम इंडिया ने पहले दिन खेल की समाप्ति तक 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को 12वें ओवर की अंतिम गेंद पर यशस्वी जायसवाल के रूप में 41 के स्कोर पर पहला झटका लगा। जायसवाल 5 चौकों के साथ 24 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद साई सुदर्शन ने KL राहुल के साथ दूसरे विकेट के लिए 139 रन जोड़कर भारतीय टीम को 180 के स्कोर तक पहुंचाया। सुदर्शन ने 104 गेंद में 13 चौकों की मदद से 81 रन टीम के खाते में जोड़े। इसके बाद कप्तान शुभमन गिल ने टीम की कमान संभाली। कप्तान ने KL राहुल के साथ तीसरे विकेट के लिए 67 रन जुटाकर स्कोर 247 तक पहुंचा दिया। KL राहुल ने शतकीय पारी खेली।
1: And that could be it. It will be it. Tucked into the gap. It's not going to go for 4, but they're going to jog through for the brace. Brings up century number 12 in Test cricket.
0: विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत 5वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे और दिन के खेल की समाप्ति से पहले उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। खेल खत्म होने तक गिल और पंत के बीच चौथे विकेट के लिए 148 गेंद में 121 रन की अटूट साझेदारी हो चुकी है। गिल 143 गेंद में 1 छक्के और 11 चौकों के साथ 103 रन बनाकर क्रीज पर नाबाद हैं।
1: He's been a class act as a skipper. He's been extremely consistent. The 11th century for Captain Shubman Gill.
0: पंत ने भी 70 गेंद में 3 छक्कों और 2 चौकों के साथ 50 रन बना लिए हैं। भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ दिन का खेल खत्म होने तक मैच पर अपनी पकड़ मजबूत बना ली है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
2: इस बीच BCCI ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। वहीं तिलक वर्मा उपकप्तान टीम के होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है।
0: जी प्रशांत, जैसा कि आपने बताया कि श्रेयस अय्यर को कप्तान और तिलक वर्मा को उपकप्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई है और साथ ही IPL में जबरदस्त और विस्फोटक प्रदर्शन करने वाले बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को दोनों सीरीज और एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम में शामिल कर लिया गया है। भारत की प्लेइंग 11 में जगह पक्की होने से अब वैभव के पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीनियर टीम की ओर से खेलने वाले सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर बनने का शानदार मौका होगा। महिलाओं शेफाली वर्मा के नाम ये रिकॉर्ड है। भारतीय पुरुष क्रिकेटर्स में ये रिकॉर्ड अगर हम इस समय बात करें तो सचिन तेंदुलकर के नाम है, जिन्होंने 16 साल 206 दिन की उम्र में अपना अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था। वैभव के साथ साथ हर्षित राणा और रवि बिश्नोई की भी टीम में वापसी हुई है। प्रिंस यादव को भी इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ टीम में जगह दी गई है, हालांकि उन्हें एशियन गेम्स के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया है। भारत को अपनी कप्तानी में T20 विश्व कप 2026 का खिताब जिताने वाले सूर्य कुमार यादव को किसी भी टीम में जगह नहीं दी गई है। ये थोड़ी बात निराशाजनक जरूर है सूर्य कुमार यादव के लिए। आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज के लिए अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को सलामी बल्लेबाज के तौर पर टीम में रखा गया है। वहीं ईशान किशन और शिवम दुबे की बात करें तो उन्हें भी टीम में जगह दी गई है। नीतीश कुमार रेड्डी और अक्षर पटेल को भी टीम में शामिल किया गया है। वॉशिंगटन सुंदर रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती भी टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। तेज गेंदबाजी की कमान मोहम्मद सिराज के हाथों में सौंपी गई है, जबकि उनका साथ अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और प्रिंस यादव देते हुए नजर आएंगे। उधर एशियन गेम्स के लिए चुनी गई टीम में जसप्रीत बुमराह को रखा गया है, हालांकि एशियन गेम्स के लिए मोहम्मद सिराज टीम में जगह नहीं बना पाए हैं। जी प्रशांत।
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद विशाल इस पूरी जानकारी के लिए। अहमदाबाद में खेली जा रही वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप में भारत का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। भारत सबसे ज्यादा मेडल जीतकर मेडल टेबल में टॉप पर है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में आज भारत के रोहन तायडे ने गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने लड़कों के सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल कॉम्पिटिशन में यह कामयाबी हासिल की। मेडल जीतने के बाद उन्होंने अपनी खुशी

0: जाहिर की।
1: नमस्ते, मेरा नाम रोहन सुनील तैडे, मैं महाराष्ट्र से हूँ और मैंने जो आर्टिस्टिक सिंगल किया उसमें मेरे को गोल्ड मेडल मिला है, मेरे को बहुत खुशी हो रही है। मैंने तो मेरे घर पे बहुत ट्रेनिंग की थी पर जो कैंप में मैंने एक महीना ट्रेनिंग की उससे भी बहुत मेरे को कुछ सीखने को मिला।
0: भारत ने इस वर्ल्ड क्लास योग कॉम्पिटिशन में 6 गोल्ड समेत कुल 7 मेडल जीते हैं। कल भारत की सब जूनियर लड़कों की ट्रेडिशनल ग्रुप टीम ने नेपाल को हरा कर गोल्ड मेडल जीता था, जबकि भारत की जूनियर लड़कियों की ट्रेडिशनल ग्रुप टीम ने नेपाल को हराकर गोल्ड मेडल जीता था। भारत ने मेडल टेबल में अपनी टॉप पोजीशन बनाई रखी है। मयूर सोलंकी, स्पोर्ट्स कैन, आकाशवाणी अहमदाबाद।
2: और अब बात फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट की। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का खिताब मीरा एंड्रीवा ने अपने नाम कर लिया है। फाइनल में मीरा ने माया च्वालिन्स्का को 6-3, 6-2 से हराया। उधर पुरुष सिंगल्स में भी कल फाइनल में अलेक्जेंडर ज्वेरेव और फ्लेविया कोबोली आमने सामने होंगे। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
3: प्रतियोगिता में दोनों खिलाड़ियों के पास अपना पहला फ्रेंच ओपन जीतने का सुनहरा अवसर है। ज्वेरेव और कोबोली के बीच फाइनल रोमांचक होने की उम्मीद है। ज्वेरेव एटीपी हेड टू हेड सीरीज में कोबोली से 3-1 से आगे हैं। वे पिछले साल रोलैंग गैरो में तीसरे राउंड में खेले थे, जब ज्वेरेव ने 6-2, 7-6, 6-1 से जीत हासिल की थी। 29 साल के ज्वेरेव का बड़े टूर्नामेंटों में शानदार रिकॉर्ड है। वे 2020 US ओपन और पिछले साल के ऑस्ट्रेलियन ओपन में रनर अप रहे और 2024 में फ्रेंच ओपन का टाइटल जीतने में सिर्फ एक सेट दूर रह गए। वहीं ज्वेरेव ने जैकब मेंसिक को हराकर फाइनल में जगह बनाई, जबकि कोबोली को मैटियो अर्नाल्डी की बीमारी की वजह से मैच से हटने से फाइनल का टिकट मिला। अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने फ्रेंच ओपन सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में चेक स्टार जैकब मेंसिक को 4 सेट में हराकर फाइनल में जगह बनाई। 3 घंटे 1 मिनट चले मैच में अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जैकब मेंसिक को पेरिस के कोर्ट फिलिप चैट्रियर पर 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 से हराया। ज्वेरेव दूसरी बार फ्रेंच ओपन के फाइनल में पहुंचे। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स के।
2: और अब बात फुटबॉल की। गोवा के मडगांव में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब भारत ने जीत लिया है। फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराया। भारत ने इस क्षेत्रीय टूर्नामेंट में अपना रिकॉर्ड 6th खिताब अपने नाम किया है। और अब बात हॉकी की। जापान के काकामिगाहारा में भारत की अंडर 18 लड़कों की टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में आज भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 गोल किए, कप्तान केतन कुशवाहा ने भी 1 गोल किया। वहीं अंडर 18 लड़कियों की भारतीय टीम ने आज कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय टीम ने कांस्य पदक के लिए हुए मुकाबले में कोरिया को 3-0 से हराया। सेमीफाइनल में चीन के खिलाफ शूटआउट में मिली करीबी हार से वापसी करने के इरादे से उतरी भारतीय टीम ने शानदार शुरुआत की और पहले 2 मिनट में ही बढ़त बना ली। संदीपा कुमारी ने दूसरे मिनट में गोल करके भारत को 1-0 की बढ़त दिला दी थी। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा इस पर आप अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की, देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किए, इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की, कहा दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता, भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। सभी सदस्यों ने सुधार यात्रा को और गति देने तथा जीवन यापन और व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए अपने विचार साझा किए। आर्थिक सलाहकार परिषद एक स्वतंत्र निकाय है जो भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: श्री खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने बाहरी दबाव की परवाह किए बिना हमेशा अपने हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए हैं। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं और व्यापार से कहीं आगे तक हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एक रूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से

0: संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आज आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के नारको दुरु गांव में समृद्धि केंद्र का लोकार्पण किया। ये गांव को डिजिटल व्यवस्था में परिवर्तित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नारको दुरु एकीकृत ग्रामीण विकास मॉडल अपनाने वाला भारत का तीसरा और तेलुगु भाषी राज्यों का पहला गांव बन गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में चौथे लेवेंडर महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव की थीम है लेवेंडर गोज ग्लोबल। दो दिन के इस महोत्सव में बैगनी क्रांति की उपलब्धियों और क्षेत्र में बढ़ते लेवेंडर उद्योग को प्रदर्शित किया गया है। इससे लेवेंडर की खेती और उद्यमिता की बढ़ती सफलता का पता चलता है। राज्य के किसानों और युवा उद्यमियों के लिए लेवेंडर की खेती ने आजीविका के नए अवसर सृजित किए हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल ने आज नामांकन पत्र भोपाल में भरा। कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है। उधर आंध्र प्रदेश में जन सेना पार्टी के लिंग मनेनी रमेश ने अमरावती में नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के दो दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
2: खाड़ी देशों और अमरीका के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। इससे जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरानी ड्रोन की गतिविधियों की खबरों के बाद अमरीकी सेना ने केशम द्वीप और गोरुक में ईरान के राडार और निगरानी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसके कुछ ही घंटों बाद ईरान ने ये हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि लगातार जारी अभियानों से ईरान की मिसाइल क्षमता काफी कम हो गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया है। संघर्ष विराम पर बातचीत रुकी हुई है और क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
3: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
4: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि मादक पदार्थ मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान एक सशक्त जन आंदोलन के रूप में उभरा है। किश्तवाड़ में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 19 जिलों में 56 दिनों से जारी इस अभियान ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया है। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का 353वां राज्याभिषेक समारोह आज पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम रायगढ़ जिले के महाड तालुका में स्थित रायगढ़ किले में आयोजित किया गया। 6 जून 1674 को शिवाजी का ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा

0: करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। सीबीएसई ने बताया कि विद्यार्थी अब कल मध्यरात्रि तक अपनी आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज तक ही निर्धारित थी। मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ गया है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। उन्होंने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को भी बधाई दी है। गोवा में भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-0 से हराया। भारत ने 6ठी बार ये खिताब अपने नाम किया है। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में रोहन ताइडे ने सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत अब तक 6 स्वर्ण पदक सहित कुल 7 पदक जीत चुका है। पदक तालिका में भारत शीर्ष पर बरकरार है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने 100 रन और साईं सुदर्शन ने 81 रन की पारी खेली। ये टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की। देश के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किया। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की। कहा दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds meeting with the Economic Advisory Council, reviews country's economic transformation and long-term development priorities. Centre introduces standard edible oil pack sizes to enhance transparency and promote uniform packaging practices. External Affairs Minister S. Jayashankar holds talks with his Nepalese counterpart Shishir Khanal in New Delhi, says India and Nepal collaborate closely to maintain security along their open border. Tensions across West Asia escalate as Iran launches ballistic missiles towards US military facilities in Kuwait and Bahrain. And in hockey, Indian men's team lifts under 18 Asia Cup, beating hosts Japan in Kakamigahara. Indian women's team also clinches bronze. Prime Minister Narendra Modi chaired a meeting today with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said they deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long-term development priorities. They also shared perspectives on adding more momentum to the reforms journey and ensuring ease of living as well as ease of doing business. The Economic Advisory Council

0: Clinched bronze, beating South Korea 3-0. Prime Minister Narendra Modi has congratulated the Indian men's under-18 hockey team on winning the Asia Cup 2026. In a social media post, Mr. Modi said the team displayed exceptional skill and teamwork throughout the tournament, culminating in a memorable victory in the final. The Prime Minister also congratulated the Indian women's under-18 hockey team on securing the bronze medal at the under-18 Asia Cup 2026. In football, India thrashed Bangladesh 3-1 to clinch a record-extending 6th SAF Women's Championship 2026 title at Margao, Goa today. Pyari Sasha, Linda Comserto and Sanfida Nongrum scored a goal each for India, while Rituparna Chakma netted the lone goal for Bangladesh. In the World Yogasan Sports Championship 2026, India's Rohan Taide won the gold medal at Ahmedabad today. He accomplished this achievement in the boys' sub-junior artistic single competition. So far, India has won a total of 7 medals, including 6 gold, in this world-class yoga competition. In chess, 19-year-old Savita Srivastava has won the 2026 Women's Asian Individual Chess Championship in Ulaanbaatar, Mongolia. With this win, she also secured qualification for the 2027 FIDE Women's World Cup. In the one-off cricket test against Afghanistan, India ended day one with a score of 368 for 3 in their first innings at stumps in New Chandigarh. Centuries from KL Rahul and captain Shubman Gill put the hosts in a strong position. In tennis, 8-seeded Mira Andreeva of Russia won her maiden Grand Slam title after getting the better of Maya Swalinska of Poland in straight sets in the women's singles final of the French Open. It was a dominant display by the 19-year-old, defeating Swalinska 6-3, 6-3 to secure a memorable victory. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy to very heavy rainfall over coastal Karnataka, Kerala and Mahe tomorrow. Heavy rainfall conditions are expected over most parts of northeast India, interior Karnataka, Goa, Tamil Nadu, Puducherry and the Andaman and Nicobar Islands for the next 2 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds meeting with the Economic Advisory Council, reviews country's economic transformation and long-term development priorities. Centre introduces standard edible oil pack sizes to enhance transparency and promote uniform packaging practices. External Affairs Minister S. Jaishankar holds talks with his Nepalese counterpart Shishir Karnal in New Delhi, says India and Nepal collaborate closely to maintain security along their open border. Tensions across West Asia escalate as Iran launches ballistic missiles towards U.S. military facilities in Kuwait and Bahrain. That is all in the news at 9. Good night.
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
3: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए उत्तर प्रदेश में मनोरमा नदी की सफाई के लिए प्रयासरत आकाश गुप्ता के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे हैं अमित कुमार सिंह।
4: बस्ती के आकाश गुप्ता आज मेरे साथ हैं। इन्होंने अपने 7 साथियों के साथ जो कर दिखाया उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में इनके नाम और इनके कार्यों की चर्चा करके आज इनको पूरे विश्व के पटल पे स्थापित किया, जिसकी प्रशंसा बस्ती ही नहीं पूरे देश में की जा रही है। आकाश गुप्ता जी जो बस्ती जनपद के लजघटा गाँव के निवासी है और ये छात्र है, इनके साथ जितने भी लोग उस अभियान में लगे हुए हैं सभी किसी ना किसी विद्यालय में 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं के छात्र हैं। आकाश गुप्ता जी आपका स्वागत है।
5: बहुत बहुत धन्यवाद।
4: मनोरमा नदी सफाई अभियान को कब आपने शुरू किया और कहां से प्रेरणा मिली आपको?
5: हमने अपनी मनोरमा नदी की सफाई का अभियान 67 दिन पहले शुरू किया। जब हमने ये शुरू किया तो हमारी नदी इतनी गंदी थी कि उसमें कचरा और उसके बाद ढेर सारी पूजा की सामग्रियां उसमें पड़ी हुई। किसी के यहाँ पे कार्यक्रम होता था तो वे लोग आकर अपना जो भी बाद का सामान होता था उसमें लाके नदी में फेंक देते थे, जिस वजह से हमारी नदी का स्थिति ऐसा हो गया था कि उसमें कोई भी जानवर पानी पीता नहीं था क्योंकि उसकी हालात ही ऐसी थी और कोई भी आदमी उस वहां पर नहाता भी नहीं था। तो हमने सोचा कि आज से 10 साल पहले जब हमारी नदी इतनी साफ थी, जहां पर सब लोग नहाते थे, जानवर पानी पीते थे, आखिर आज के टाइम पे वो हाल क्यों नहीं? तो हम लोगों ने सोचा कि अगर ये हमारी नदी है तो इसे साफ करने का कर्तव्य भी हमारा है।

0: हम लोगों ने 6 से 7 लोगों की टीम बनाई और अपनी नदी सफाई का अभियान शुरू किया। पहले दिन हमें नहीं लगा था कि हम लोग इस नदी को इतना आगे साफ कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने अपनी नदी का अभियान का सफाई जारी रखा और आज हमारी नदी कुछ ऐसी दिखने लगी है जहां पर जानवर आकर इसमें पानी भी पीते हैं और यहां पर लोग आकर नहाते भी हैं और हमारी बहुत प्रशंसाएं भी करते हैं।
1: आकाश जी, यह अभियान शुरू करने से पहले बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि इतने गंदी नदी है, आप कैसे इसको साफ करोगे, या आपका मनोबल भी एक बार कमजोर हुआ होगा कि मैं जो है कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मैं ऐसी प्रेरणा आपको आई कहां से, और गांव के लोगों का क्या सहयोग और सपोर्ट रहा आपके साथ?
0: जब हम लोगों ने ये कार्य स्टार्ट किया था तो हमारे गांव के जो लोग थे उन्होंने कहा ये साफ तुम लोग नहीं कर पाएगे क्योंकि ये नदी बहुत गंदी है, इसको साफ करने के लिए सरकार को ही आगे आना पड़ेगा। लेकिन हमने कहा नहीं, हम लोग थोड़ा थोड़ा ही साफ करेंगे लेकिन हर एक दिन काम करेंगे। और हम लोगों ने नहीं सोचा था कि इतना हम लोग नदी अपना साफ कर लेंगे, और लोगों का भी सपोर्ट नहीं रहता था क्योंकि गांव का कोई भी हमें सपोर्ट करने नहीं आता था, कोई भी नहीं कहने आता था कि हम भी तुम्हारे साथ काम करेंगे और तुम्हारी मदद करके नदी की सफाई को आगे जारी रखेंगे।
1: आप जब उस समय नदी की स्थिति या उसकी हालात देखे तो कैसा लगा?
0: पहले के टाइम पर नदी की स्थिति बहुत ही खराब थी, तो हम लोग आते थे बरगद के पेड़ के नीचे बैठते थे हम सभी लोग, तो हम सोचते थे कि अगर हमारी नदी इतनी गंदी, हम लोग अगर यहाँ बैठते हैं, यहाँ बदबू आ रही है, तो इसको साफ करके हम लोग यहाँ पर सुकून से बैठेंगे। तो हम लोगों ने इसकी सफाई का काम शुरू किया और इसको साफ किया।
1: करीब 2 महीने चले इस अभियान में, सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या मिली?
0: सबसे बड़ी चुनौती ये रही हमारी नदी में कि हम लोगों ने इसको साफ पूरा किया, 30 से 40 दिन तक हमने इसको लगातार साफ किया, लेकिन फिर 10 दिनों के अंदर इसके अंदर काइया जमा होने लगी और वो काइया धीरे धीरे सड़ने लगी और जिससे बहुत ज्यादा समस्या हमें होने लगी। फिर उसको साफ किया हम लोगों ने और उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे थे कि आकर वो पूजा की सामग्रियां वापस उसमें डाल रहे थे। उसके बाद इसके अंदर से बहुत सारी कांच की बोतल्स और वो भी टूटे फूटे हालात में मिले। बहुत सारे हमारे टीम मेंबर्स का हाथ कट गया, पैर कट गया, और यही सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे कि लोग आते हैं, कचरा फेंक जाते हैं, उसके बाद सहयोग भी नहीं करते, उसको साफ भी नहीं करते।
1: इस अभियान में गाँव के लोग और भी लोगों का क्या सहयोग रहा?
0: गाँव के लोग आते थे, हमें कहते थे कि हाँ तुम अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अभी तक कोई भी गाँव वाला हमारे साथ नदी में नहीं है। अब आप सोच सकते हैं, कहने की बात अलग होती है, करने की बात अलग होती है। अगर आप हमारे साथ में चलकर नदी की सफाई करते हैं तब तो हम मानेंगे आप हमारे साथ जुड़े हुए, क्योंकि हम साथी लोग जब से शुरू किए हैं तब से अभी तक काम कर रहे हैं।
1: क्या इस अभियान में जनप्रतिनिधियों और प्रशासन का कोई सहयोग आपके साथ रहा?
0: हमने एक वीडियो बनाई थी योगी जी को लेकर कि हम लोग अपनी मनोरमा नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने इसको शेयर किया जिस वजह से हमारी एक दिन में वीडियोस 1 करोड़ लोगों ने देख लिया और योगी जी ने उसको वीडियो देखा भी। और योगी जी से पहले मोदी जी ने मन की बात में हमारी जिक्र किया कि मैं और मेरे 7 लोगों की टीम ने मिलकर अपनी मनोरमा नदी की सफाई का पहल किया है।
1: सफाई अभियान के बाद अब तक मनोरमा नदी को आप देखते हैं तो क्या लगता है?
0: सफाई के बाद मनोरमा नदी हमारी इतनी साफ लगती है कि ये तो एक जैसे लगता है कि चमत्कार टाइप का, लेकिन ये चमत्कार नहीं, ये हमारी 67 से 68 दिनों की मेहनत है जो कि हमने लगातार की है।
1: आपको अभी क्या लगता है, इसमें और कुछ करने की जरूरत है?
0: जी, अभी हमारा काम तो जारी रहेगा जब तक कि हम लोग अपनी मनोरमा नदी का पूरा गांव का हिस्सा जब तक साफ नहीं कर लेते तब तक तो हमारा काम जारी रहेगा, उसके आगे भी सोचेंगे। लेकिन हम चाहेंगे इसमें हमारी सरकार भी मदद करे क्योंकि हम कुछ युवाओं के बस का ये पूरा नदी साफ करना नहीं है।
1: जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात में आपका नाम लिए तो आपको कैसा महसूस हुआ?
0: हम लोग उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के छोटे से गांव लजघटा में रहते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैश्विक पटल पे हम लोगों की बात की, हमारे नाम का जिक्र किया, हमारी टीम का जिक्र किया, तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारी सफाई का अभियान भी अब लोग देख रहे हैं।
1: इसमें प्रधानमंत्री जी द्वारा सराहना मिलने के बाद आप पर, आपकी टीम पर क्या प्रभाव पड़ा? ऐसा भी आपको लगता है कि ये जिम्मेदारियां और बढ़ गई?
0: हाँ, जिम्मेदारियां बढ़ती हुई दिख रही हैं क्योंकि अब जो हम लोग सफाई का काम करते थे 2 से 3 घंटा, अब हम लोगों ने ट्राई किया कि उसको और बढ़ाने का, और हम लोग अब धीरे धीरे और नदी को और आगे बढ़ते हुए साफ कर रहे हैं। और लक्ष्य तो यही है कि जितना हो सके हम लोग नदी को साफ रखे जिससे कि जानवरों को और आम आदमी को परेशानी ना हो।
1: आज देश में पर्यावरण संरक्षण और पुनर्जीवन को लेकर काम करने वाले युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
0: हम यही कहना चाहेंगे जो भी नेचर ने हमें दिया है वैसे ही हमको उसको संतुलित रखना है, कि चाहे वो नदी हो, चाहे तालाब हो, चाहे नहर हो, चाहे झरना हो, आप लोग उसको ऐसे सुरक्षित रखिए कि उसमें गंदगी ना फैले ताकि आने वाली पीढ़ियों को हमारे तकलीफ ना हो।
1: आकाश जी, आपने जिस तरह से साबित किया कि बदलाव के लिए बड़े पद या बड़े संसाधनों की आवश्यकता नहीं बल्कि इरादों की जरूरत है। वह वास्तव में प्रेरणादायक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी यह कहानी अपने गांव, शहर, पर्यावरण के लिए कुछ सकारात्मक करने की प्रेरणा देगी।
0: अगर आपको कोई भी काम करना है तो उसके लिए आपको बड़ी मशीन या फिर कोई बड़े यंत्र की जरूरत नहीं है। आप अपने हाथों से पहले ट्राई कीजिए उसको साफ करने का। जब आप अपने हाथों से साफ करेंगे थोड़ा बहुत हिस्सा साफ होगा, फिर आपका मन करेगा कुछ और ट्राई किया जाए। धीरे धीरे आप लोग और आगे तक सफाई करें। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे पास सिर्फ हाथ और पैर थे, हम लोगों ने उसी से स्टार्ट किया है। उसके बाद हम लोगों ने ट्राई किया उसमें नाव बनाने का, जिसमें हम लोग थोड़ा नाव बना भी गए थे लेकिन बीच में टूट गया। ऐसे ऐसे हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को ट्राई किया, तब जाके हमारी नदी इतनी साफ हो पाई। क्योंकि आप लोग जब किसी चीज को स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे उसकी आगे की रास्ताएं खुलते जाएंगे।
1: क्या ये आपको उपकरण से जिसकी चर्चा मन की बात में मोदी जी ने किया, ये युवा जो है पर्यावरण या जल संरक्षण को लेकर के जागरूक है, इनके पास फावड़ा और जाल और ये ग्लव्स लेकर के ये नदी के सफाई अभियान को कर रहे हैं, क्या इस सफाई अभियान में आपको किसी ने कोई किसी तरह का सहयोग किया उसमें?
0: हम लोग जब वीडियो डालते गए उसके बाद लोगों ने इतना सपोर्ट किया, हमने उसमें अपना QR डाला जिसमें लोगों ने काफी सपोर्ट दिया, जिससे हम लोगों ने बूट्स मंगाए, ग्लव्स मंगाए और बहुत सारी चीजों को मंगाए। और बहुत सारे लोग हमारे एड्रेस पे कुछ सामान भी भेज देते हैं जिससे हमारी मदद हो जाती है। तो ऐसे ही हमारा काम चलता रहा।
1: आपने कहा कि जब से हमने इस अभियान को शुरू किया तब से हम लोगों ने YouTube, Instagram और Facebook के माध्यम से बहुत सारे लोगों को जोड़ा और इस अभियान को और सफल बनाने के लिए, नदी के सफाई के लिए हमने बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया और हमसे बहुत सारे लोग जुड़े। कितने लोग इससे प्रेरित हुए?
0: जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे तो 0 फॉलोअर थे, लेकिन अभी के टाइम पे अगर बात की जाए तो हमारे इंस्टाग्राम पे 63,000 फॉलोअर हो चुके हैं, फेसबुक पे 50,000 से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं और यूट्यूब पे 10,000 से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं। तो ऐसे लोगों का सपोर्ट हमारे साथ रहा, लोगों ने हमें काफी ज्यादा सपोर्ट किया जिससे हम लोग आज इतना ज्यादा सफल हो पाए।
1: आप जिस तरह से यह कार्य करके साबित किए बदलाव के लिए बड़े इरादों की जरूरत है, वह वास्तव में प्रेरणादायक है। आकाश जी, इसके बाद आपका क्या मिशन होगा?
0: अभी जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है तो हम लोग नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में बरसात का मौसम आने वाला है तो नदी का पानी काफी ज्यादा रहेगा जिसके अंदर हल्के उसको सफाई नहीं की जा सकेगी। तो हम लोग कोशिश करेंगे नदी के किनारे का जितना भी फील्ड है उसको हम लोग वृक्षारोपण करेंगे, जितना हो सके पीपल, बरगद, पाकड़, जामुन ये सब पेड़ बैठाएंगे।
1: इंस्टाग्राम और फेसबुक के तहत लोगों को जोड़ करके क्या लगता है आपको कि क्या इससे लोग आपसे जुड़ रहे हैं, क्या इससे आगे और भी आपको काम करने के लिए और भी लोगों का साथ मिलेगा?
0: निश्चित सी बात है सब लोगों का सपोर्ट मिलेगा और जब तक ये नदी सफाई नहीं होगी पूरी तब तक ये काम चलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर वृक्षारोपण भी होगा, हमारी नदी का अभी घाट भी बनना है, हमारी नदी पर अभी जहाँ बरगद का पेड़ है वहाँ चबूतरा भी बनना है और जब तक ये बन नहीं जाएगा तब तक ये कार्य चलता रहेगा। जब हमने इसको पहले दिन से स्टार्ट किया था तब से लेकर अभी तक हमें काफी ज्यादा लोग जाने लगे हैं, जैसे कि अभी विधायक जी ने कल परसों में आकर हमारे साथ मिलकर नदी की सफाई किया, जिसके लिए हम बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि अब ये अभियान जो है हमारा बहुत आगे तक जाने वाला है और साफ सफाई का काम तो चलता रहेगा।
1: समाज में कुछ नया करने का आपने एक प्रयास किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश में मनोरमा नदी की सफाई के लिए प्रयासरत आकाश गुप्ता के साथ विशेष बातचीत। संवाद का संचालन कर रहे थे अमित कुमार सिंह। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:25 हुए हैं। लीजिए सुनिए केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम युवा शक्ति।
5: This is Akashvani. In the special series, now we bring you a discussion on 12 years of the Modi government, from women empowerment to women-led development. Participants are Professor Sushma Yadav and Aditi Tandon, senior journalist. Moderator is Sonu Sood. Ye Akashvani hai. Prastut hai Vishesh Shrinkla. इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल महिला सशक्तिकरण का परिवर्तनकारी दशक। इसमें भाग ले रही हैं प्रोफेसर सुषमा यादव और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
6: In the 12 years of NDA government, Prime Minister Narendra Modi has consistently said women empowerment is one of the key priorities of this government, and the government's dream of upgrading women's development to women-led development has turned to reality thanks to the focused efforts of the government, be it education, health, financial inclusion, livelihood avenues, security, quality of life. The targeted schemes of the government have empowered and accorded respect and dignity to women as a powerful economic force, giving them confidence and opportunities to break new frontiers. To discuss this emergence of women as an integral and crucial part of nation building, we have with us two very special guests, Professor Sushma Yadav and senior journalist Aditi Tandon. So, Professor Sushma Yadav ji, we would like to start with you. Hum aap se jo aarthik sashaktikaran hua hai pichle 12 varshon mein NDA sarkar ke is karyakal mein, uske upar hum aap se discussion karna chahenge, chahe wo Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana हो जिसमें 32 करोड़ महिलाओं से अधिक के बैंक अकाउंट खुले पहली बार, या फिर जो एक एस्पिरेशनल एंटरप्रेन्योरशिप का सपना पूरा करने वाला जो पीएम मुद्रा योजना थी, उसमें से 3 में से 2 जो लाभार्थी थी वो महिलाएं थी, और महिला एंटरप्रेन्योर्स को 16 लाख करोड़ रुपए से अधिक के लोन्स प्राप्त हुए. सो ये स्कीम्स तो अच्छी थी ही, लेकिन जो इनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और जो महिलाओं के फेवर में इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, क्या इसे आप एक बड़ी उपलब्धि मानती हैं? कैसे देखती हैं आप इनके महत्व को?
7: बहुत बड़ी उपलब्धि मानती हूँ. प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए विकसित भारत महिलाओं के बिना हो ही नहीं सकता, मैं ये बात याद दिलाना चाहती हूँ यहाँ. और विकसित भारत का मतलब उनके लिए है एक सशक्त, सक्षम और स्वावलंबी नारी समूह और नारी शक्ति. उनका मानना है कि जब तक महिलाएं इस विकास की यात्रा का हिस्सा नहीं बनेंगी, तब तक भारत विकसित नहीं बन सकता. और आप जानते हैं कि उनका इस समय सबसे बड़ा ध्येय, उद्देश्य और स्वप्न वो सब विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047 है जी. उस यात्रा के लिए उन्होंने, और आप जानते हैं कि जो शक्ति है वो शक्ति मानसिक तो होती है, बौद्धिक तो होती है, पर आर्थिक सबसे अधिक होती है, जो दिखाई देती है. मानसिक और बौद्धिक शक्ति दिखाई नहीं देती है, लेकिन आर्थिक शक्ति तो स्पष्ट दिखाई देती है. इसलिए सबसे पहले वित्तीय समावेश की बात उन्होंने की है, और वित्तीय समावेश में जनधन खाते सबसे पहली योजना है, जिससे उन्होंने पूरे देश को ये अवसर दिया कि वह बैंकों के साथ जुड़ सके और बैंकों की जो वित्तीय सहायता है वो सबको उपलब्ध हो सके. और इसमें सबसे पीछे रहने वाली महिलाएं थी, इसलिए महिलाओं को उसमें शामिल किया. और ये आश्चर्य की, सुखद आश्चर्य की बात है कि अब वो 50% से अधिक खाते जो हैं वो महिलाओं के खुले हैं, क्योंकि शायद उन्हें ही बैंक तक जाने की झिझक भी थी
6: जी,
7: और बैंक तक जाने के लिए सुरक्षा चाहिए थी. तो जो लगभग 30 करोड़ से ज्यादा खाते खुले हैं, उसमें अब तो 61% लेटेस्ट डाटा इज इट्स मोर देन 61% वुमेन. सो सबसे पहला जो मैं बात कर रही थी, जनधन खातों की सफलता. लेकिन वो वहीं नहीं रुके, क्योंकि सिर्फ जनधन खाते खुल जाएं वही नारी को सशक्त नहीं करेंगे. लखपति दीदी का सपना दिखाया, उसको पूरा किया, क्योंकि कितनी सारी जो लखपति दीदी बनी स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से. 3 करोड़ की पहले बात की थी, लेकिन 10 करोड़ महिलाएं उसमें जुड़ चुकी हैं. मात्र काशी 1.25 करोड़ महिलाएं हैं, तो सालाना 1 लाख रुपया. देखिए, पहले जमाने में हम सपना देखते थे कि लखपति बन जाएंगे तो क्या क्या करेंगे
6: जी.
7: और शहरों में चाहे वो अब उतना बड़ा सपना नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में, जहाँ कैश नहीं है उतना, लखपति बनना अपने आप एक बड़ी उपलब्धि है. और वो महिला बन जाए
6: जी,
7: तो लखपति दीदी का जो कंसेप्ट दिया, जो योजना दी, वह महिलाओं को करने वाली योजना है. और ये सिर्फ लखपति दीदी नहीं है, वह कमाने वाली बनती है. हुनर हाट की बात उन्होंने की है, और मुद्रा योजना, जो पीएम मुद्रा योजना है, उससे महिला उद्यमियों को जो लगभग 16 लाख करोड़ रुपए का लोन मिला है, इट्स अ ह्यूज अमाउंट. और जिन महिलाओं को ये मिला है वो धीरे धीरे एमएसएमई के माध्यम से, लघु उद्योगों के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, अपने उद्यमों के माध्यम से, सबके माध्यम से कारोबार करने लगी है. और उन कारोबारों से आगे चलना मात्र इतना नहीं है कि वो कारोबार प्रारंभ किया है, वो लखपति से आगे भी जाएंगी, ये मेरा पूरा विश्वास है. ये प्रारंभ है लखपति योजना. नमो ड्रोन दीदी, जो ड्रोन बनाई है उन्होंने, वह भी सशक्तिकरण का एक और स्वरूप है. और इनमें जो आंकड़े हैं, विशेष तौर पर आर्थिक सशक्तिकरण के, 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लीड कर रही है उन एमएसएमई को, जो इस समय देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं, और पी महिला श्रम भागीदारी वृद्धि में भी भारत ब्रिक्स देशों में अग्रणी देश हुआ है। पहले हम बहुत पीछे थे, अभी भी देखिए बहुत आगे तो नहीं आ पाए हैं, वी हैव नॉट क्रॉस 50, पर पहले हम बहुत कहीं भी नहीं थे लगभग। वो 40% है वर्ल्ड बैंक के अनुसार ही, और हम ये मानते हैं कि यदि हमारे यहाँ गणना ठीक से की, जो यह सरकार अवश्य कराएगी और प्रधानमंत्री जी का क्योंकि उस पर विशेष बल है, तो यह भागीदारी और निकल कर आएगी, क्योंकि भारत का बहुत सा श्रम हम काउंट ही नहीं करते हैं। हमारा जो माता की सेवा है, पत्नी की सेवा

0: पॉइंट एट सिक्स लैक से 34 लैक्स हो गया है, विच इज ए ह्यूज जंप। और मात्र इतना ही नहीं है, मैं फिर से याद दिलाऊंगी, जैसा अभी अदिति जी ने कहा कि आप जेईई देख लीजिए, आप सीबीएसई देख लीजिए, आप नीट देख लीजिए, आप बीए एमए पीएचडी यूनिवर्सिटी कन्वोकेशन एक बार देख लीजिए, स्पेशली ऑफ मेट्रोस, यू विल फाइंड वुमेन आउट नंबरिंग मेन in almost all achievements. They've yet to outnumber them in total enrollment, but they're outnumbering in success. And the STEM special, which is a special effort from the government, that we don't limit them to arts and humanities, science, technology, engineering, mathematics, management, and women in boards, they have to be there. And for digital empowerment of women, which I think is will empower them much more in the given times, वहाँ भी सरकार ने प्रयास किया है कि digital marketing, cyber security, और सुरक्षा, नव्या योजना जो चलाई है 16 से 18 वर्ष की बच्चियों के लिए कि उनको ट्रेन किया जाए फॉर साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल मार्केटिंग, दोनों उनको तैयार करती हैं आने वाले समय के लिए, और इस समय जिस प्रकार का वातावरण प्रगति के लिए आवश्यक है उसके लिए भी।
1: बिल्कुल,
0: मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगी यहाँ कि स्वास्थ्य सुरक्षा स्वच्छता ये साइकिल के पहले पहिए हैं जहां से आरंभ किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने बार बार उज्ज्वला योजना के माध्यम से, जो अब 11 करोड़ महिलाओं तक पहुंच चुके हैं एलपीजी कनेक्शन, फिर जन औषधि केंद्रों के माध्यम से महिलाओं की बेसिक फैसिलिटीज के लिए, सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत मोर एंड मोर वुमेन वर ब्रॉट टू हॉस्पिटल्स, इट्स मोर देन 7.3 करोड़ नाउ, फिर मातृवंदना योजना जो पीएम मातृवंदना योजना है, मोर देन 20,000 करोड़ वुमेन वर एक्सेस्ड, और फिर मिशन इंद्रधनुष के तहत जिसमें बच्चे भी हैं माताएं भी हैं, वुड बी मदर्स आर देयर
1: फॉर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, आल्सो लॉट ऑफ एफर्ट्स हैव बीन मेड एज यू आर रेफरिंग, यू नो टिल मार्च 2026 मोर देन 11.87 करोड़ चिल्ड्रन एंड 3.96 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन वर रजिस्टर्ड एंड 8.73 करोड़ वुमेन वर स्क्रीन फॉर सर्विकल कैंसर। एक और जो आपने बात करी मातृत्व सपोर्ट दी जा रही है जी, सो मैटर्नल मोर्टैलिटी रेट्स बहुत नीचे आए हैं, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट्स नीचे आए हैं, और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज 68% से बढ़कर 90% से अधिक हो गई है जी, 98 बिल्कुल 98%। तो ये आपको लगता है कि एक तरह से एक माइंडसेट चेंज को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि लोगों का विश्वास बढ़ रहा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा?
0: लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ रहा है
1: जी,
0: ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं
1: जी, जी।
0: क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी से पहले तो ले जाते ही नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी, असुरक्षा भी थी, फिर जो अभी शौचालय सुविधा बढ़ी है, जस्ट गॉन फ्रॉम 39% टू 100%, सो एवरी हाउस होल्ड हैज अ टॉयलेट और अ कवर्ड टॉयलेट एज वी से, सो ODF फ्री इंडिया। देन जो मातृ मृत्यु दर मोर्टेलिटी एज यू सेड, which has really reduced from 130 to 80, which is a huge change.
1: Yes.
0: Not merely this, the maternal leave vacancies, leaves which were there granted before, they have increased from 12 weeks to 26 weeks. And I think that has given the mother and child a leverage in terms of health and quality time spent together, yes, which will surely lead to healthier generations in coming times.
1: And also when yes, women are healthier and when, you know, they are freed from duties like fetching water from miles, you know, yeah, due to the yeah, Jal Jeevan mission, you think they have more time to devote to, you know, economic activities?
0: More time to devote to economic activities, more time to devote to their capacity building, more time to devote to thinking about their future. Mm-hmm. You can see the women have dreams about their children now, mm-hmm, and especially the daughters. Mm-hmm. I have come across as a woman vice chancellor, literally, I met so many women who were very, very eager that their children, or especially girl children, come to higher education and go to fields which were unheard of before. So that kind of mindset, that kind of dreams, that kind of aspirations, it's aspirational India now, has come up. Aur Modi ji jo baar baar kehte hain, स्वस्थ नारी ही स्वस्थ राष्ट्र के जन्मदाता है, और स्वस्थ राष्ट्र ही सशक्त राष्ट्र बन सकता है। दिस इज द लिंकेज बिटवीन वुमेन्स हेल्थ एंड द एम्पावर्ड और विकसित भारत, एज वी से आत्मनिर्भर भारत भी उसी में मिला हुआ है।
1: एब्सोल्युटली आदित्य जी, कमिंग टू यू, अगर हम सेफ्टी की बात करें, एक डिग्निफाइड लाइफ की बात करें, तो जो मिशन शक्ति एक मिशन वो रहा है मुहिम सरकार का, जिसके तहत उन्होंने कई ऐसे इनिशिएटिव्स वो लाए हैं जिससे कि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, जिसमें अभी जो लेटेस्ट है शी बॉक्स पोर्टल, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है सेक्सुअल हैरेसमेंट कंप्लेंट्स का वर्क प्लेस पे उनको रजिस्टर करने का, इसके बारे में आप थोड़ा सा बता सकती हैं कि इसका

0: विस्तार 12 वर्षों में कितना हुआ है ये सेफ्टी नेट का विमेन के लिए, और इसके कारण कितनी सशक्त महसूस कर रही हैं आज की महिलाएं?
1: देखिए, जो आपने प्रश्न पूछा है सेफ्टी का जो इशू है महिलाओं का, मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है इस वक्त वो यही है कि महिलाओं के लिए सेफ्टी और उनकी सिक्योरिटी जब वो अपने काम पर जाएं। जैसे हमें याद आता है आरजी कार का जो बड़ा इंसिडेंट हुआ था कलकत्ता में, उसके बाद कितना रोष था, उससे पहले निर्भया हुआ। ये बड़े बड़े इंसिडेंट्स जब हमारी सोसाइटी में हुए उनसे क्रिमिनल लॉज को बदला गया। निर्भया के बाद आपको याद है कॉम्प्रिहेंसिव क्रिमिनल लॉज लाए गए, लेकिन आज भी दुख की बात यह है कि क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन बढ़ रहे हैं। और इस मुद्दे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खुद 2-3 बार बोला है कि सबसे अर्जेंट क्राइसिस यही है और इसी को रिजॉल्व करने की जरूरत है। और इसी के मद्देनजर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जब एक बहुत बड़ा वक्तव्य रेड फोर्ट से अपनी इंडिपेंडेंस डे स्पीच में दिया था, जब उन्होंने कहा था पेरेंट्स को कि आप अपने बेटों को कल्चरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज समझाइए, उनको घर में ये प्रशिक्षण दीजिए, ये वैल्यू सिस्टम दीजिए, ये शिक्षा दीजिए कि महिलाओं की इज्जत करना ये जरूरी है और ये एक आम बात होनी चाहिए। मतलब ये सोसाइटी का कर्तव्य है, हर चीज सरकार नहीं कर सकती। हमने देखा है कि इस सरकार का भी एक बहुत बड़ा मुहिम रहता है जन भागीदारी का। जो बड़े बड़े चैलेंजेस सोसाइटी फेस करती है, जैसे हमने सदियों से देखा जब कुरीतियों को हटाया गया, सती प्रथा को हटाया गया, पर्दा सिस्टम को हटाया गया, सोसाइटी ने अपने अंदर से रिफॉर्मर्स पैदा किए जिन्होंने इन कुरीतियों को हटाया। मुझे लगता है विमेन सेफ्टी को लेके वही मुहिम इस वक्त चाहिए। सोसाइटी को खुद बोलना होगा कि इनफ इज इनफ, क्योंकि ये जो बात है अपने हाथ में लोगों को लेनी होगी। एक पॉलिटिकल विल एक लीडर दिखा सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री अपनी पॉलिटिकल विल महिला सशक्तिकरण, महिला सेफ्टी के पीछे दिखा सकते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद सरकार के भी हाथ बंधे होते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा जो एजेंट ऑफ चेंज है सोनू, वो समाज है, वो सरकार नहीं है, समाज सबसे बड़ा एजेंट ऑफ चेंज है। और जहां तक कि आपने जेंडर बजटिंग की बात की और आपने मिशन शक्ति की बात की, उसके तहत जेंडर फोकस्ड एलोकेशंस बहुत बढ़ाई गई हैं ओवर द इयर्स। जैसे अगर आप यही बजट उठा के देख लीजिए 26-27 का, उसमें सिग्निफिकेंट राइज किया गया है जेंडर बजटिंग के लिए, जिसका बहुत सारा पोर्शन महिला सशक्तिकरण और महिला सेफ्टी की तरफ जाएगा। इस वक्त करीब 10% जो हमारे वित्त मंत्री जी ने दिया, 10% उसका जो टोटल बजट का हिस्सा है वो जेंडर बजटिंग है, जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर उसको अच्छे से व्यय किया जाए तो कोई वजह नहीं है कि सिस्टम्स इन प्लेस ना हो। पर आप सीसीटीवीज लगा देंगे, आप वन स्टॉप सेंटर्स बना देंगे सोनू, लेकिन आप समाज का जो माइंडसेट है वो कैसे बदलेंगे? आप एक पुरुष का महिला की तरफ देखने का रवैया कैसे बदलेंगे? उसमें तो फैमिलीज का रोल आ जाता है ना, उसी में समाज का रोल आ जाता है।
0: बिल्कुल, पार्टिसिपेटिवली ही ये चेंज लाया जा सकता है। और जो भी व्यवस्था है, 15,000 प्लस विमेन हेल्प डेस्क है सारे जो पुलिस स्टेशंस हैं इंडिया में उनमें, और जैसा आपने वन स्टॉप सेंटर्स का जिक्र किया, 1,000 से ज्यादा है, 24/7 विमेन हेल्पलाइंस है, और 700 प्लस फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स हैं जो विमेन को ही त्वरित जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए हैं। लेकिन इन सब का भी इस्तेमाल, ऑफ कोर्स प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर, बट अगर कुछ होता है तो ये हिम्मत होनी चाहिए, समाज का सपोर्ट होना चाहिए कि आप आगे आए और इन फैसिलिटीज का फायदा उठाएं ताकि आगे से जो है इस तरह के हादसे ना हो, मिनिमाइज हो। सो एक प्रोएक्टिव रोल सबको प्ले करना जरूरी है इन सुविधाओं का फायदा उठाने के लिए भी।
1: बिल्कुल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो सिस्टम्स इन प्लेस हैं, पहली बार उसकी अवेयरनेस क्रिएट करनी जरूरी है, जिसकी तरफ बहुत काम हो रहा है। दूसरी बात ये है कि जुडिशरी और पुलिस सिस्टम, देखिए आप अगर पूरे विश्व में देखेंगे और आप अगर विश्लेषण करेंगे कौन सी सोसाइटी सबसे ज्यादा सेफ मानी जाती हैं, कौन सी सोसाइटी सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट और करप्शन फ्री मानी जाती हैं, तो आप ये पाएंगे कि उन सोसाइटीज के लोग ये कहते हैं कि उनका विश्वास पुलिस सिस्टम में और जस्टिस सिस्टम में सबसे ज्यादा है, जजेस और कॉप्स में। तो हमारे देश के लिए ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि जब महिला अपना कोई कंप्लेंट लेकर पुलिस के स्टेशन में जाती है तो उसे ये कन्विंस्ड होनी चाहिए उस वक्त कि मेरी बात वहां बैठा हुआ पुलिस पर्सनल सुनेगा, मेरी बात को सेंसिटिविटी से लेगा, मेरे कैरेक्टर की जजमेंट में नहीं बैठेगा। वैसे ही जो जजेस हैं उनके लिए भी बहुत सारे प्रशिक्षण हुए हैं। देखिए, जब जब सेक्सुअल असॉल्ट की बात हुई है बहुत सारे पाथ ब्रेकिंग जजमेंट्स आए हैं और बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिसकी वजह से लॉज बदले गए हैं। आपको पता है कि पहले जमाने में हम इसी बात से जूझते रहते थे कि जजेस भी महिलाओं के कैरेक्टर को

0: हद तक लगता है कि समाज बिगड़ा है।
1: सुषमा जी, आप अभी थोड़ी देर पहले डिजिटल एम्पावरमेंट की बात कर रही थी, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं या और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की गई हैं, शी मार्ट जो इनिशिएटिव है या गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस के अंडर जो वुमनिया इनिशिएटिव है जिसमें 2 लाख से अधिक विमेन लेड एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड है और इसमें 28,000 करोड़ से अधिक का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इन विमेन लेड एंटरप्राइजेस को पिछले वित्त वर्ष में बिक्री हुई इस माध्यम से, जो कि 27% ग्रोथ थी FY25 के मुकाबले। सो आपको लगता है कि ये जिस तरह का सशक्तिकरण डिजिटल माध्यमों से भी हो रहा है, चाहे वो ये मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना हो या जो हेल्थ सिस्टम में हेल्थ कार्ड्स हर फील्ड में या इम्यूनाइजेशन में ट्रैकिंग डाउन की किसको कितना क्या टीकाकरण हुआ है, डिजिटाइजेशन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है विमेन एम्पावरमेंट में भी।
2: जी बिल्कुल, मैं मानती हूँ, क्योंकि जो डिजिटल एक्सेस है विच इज इजियर फॉर वुमेन स्पेशली, इफ यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर एंड यू कैन स्टिल एक्सेस मोस्ट ऑफ द फैसिलिटीज, नथिंग बेटर देन दैट, दैट इज ऑलमोस्ट बेस्ट। बिकॉज अपने आप में मूवमेंट या आवागमन जिसको कहते हैं वो महिलाओं का समय भी लेता है, शक्ति भी लेता है और कई बार कुछ सीमाएं भी डालता है। इसलिए डिजिटल एम्पावरमेंट, डिजिटल ट्रेनिंग और डिजिटल कैपेसिटी बिल्डिंग ये टारगेट रहा है सरकार का इन सभी क्षेत्रों में जो अभी आपने कहे हैं, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ, लेकिन इनसे महिलाएं तैयार हुई हैं व्यापारी बनने के लिए, उद्यमी बनने के लिए और विकास के कार्यों में जुड़ने के लिए, क्योंकि सरकार का उद्देश्य था। मैं बार बार कह रही हूँ, मोदी जी कहते हैं हम क्या करेंगे, पहले उनको वित्तीय सहायता देंगे, फिर उनका कौशल विकास करेंगे और फिर उन्हें प्रशिक्षण भी देंगे। देयर कांट बी अ बेटर रेसिपी, बिकॉज इफ यू गेट सम फाइनेंशियल सपोर्ट विच विमेन नीड यूजुअली एंड मे बी आफ्टर सम टाइम दे डोंट इवन नीड, दे मे हैव देयर ओन ग्रुप्स, दे मे हैव देयर ओन फाइनेंसर्स ऑल्सो, like they are coming up now, but with that you also need later skills because skills keep changing and the market needs different kinds of skills. At times they may be digital skills in coming time, and you see women are really very good at that because this is heart and hand both going together, and then if you really train them into the right kinds of skills and empowerment techniques also I would say or fields, then they are ready for the world. और ये सरकार चाहती है विमेन लेड डेवलपमेंट कब होगा, वो एक माध्यम तो यही है, पहला स्वास्थ्य, उसके बाद सुरक्षा, उसके बाद आर्थिक सहायता या आर्थिक स्वावलंबन, उसके बाद पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। क्योंकि मैं ये बात जरूर करना चाहती हूँ यहाँ कि जिस प्रकार से महिलाओं ने प्रधानमंत्री जी का हर स्थान पर स्वागत किया है, उनका साथ दिया है, उनको सपोर्ट किया है, उसके पीछे ये सारे तो है ही, वो राजनीतिक सोच भी है जहाँ नारी शक्ति वंदन अधिनियम उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। 33% एट द लोकल रूट्स और द ग्रास रूट्स हैज कम टू 50% और मोर देन 50%, और यही 33% जब पार्लियामेंट्स और लेजिस्लेचर्स में आएगा, मुझे विश्वास है जो अभी योजनाएं चली हैं ये 10 गुनी 100 गुनी होकर आगे आएंगी। और जो माहौल अभी आप बात कर रही थी, अदिति जी कह रही थी कि लगभग समाज भी तैयार है, राष्ट्र और समाज दोनों उसके लिए तैयार हो।
1: इनफैक्ट जो आप बोल रही हैं, अगर हम पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की बात करें तो महिलाएं 48.62% है इलेक्टोरेट का और हमारा वोटर टर्नआउट जो है, मैं हमारा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम तीनों महिलाएं हैं, 65% से अधिक है जो पुरुषों से कुछ ऊपर है, और 14.5 लाख महिलाएं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में इलेक्ट हुई हैं, जो कि 46% है टोटल वहां जितने भी अधिकारी हैं उनका। एंड ये पाया गया है कि जब से विमेन आई हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, उन्होंने जो रोजमर्रा की लाइफ है उसको बेहतर करने का, एमिनिटीज डेवलप करने पर फोकस किया है। सो ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड है उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन है वो भी।
2: बिल्कुल, आई विल से दैट एंड आई हैव बीन पार्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस इन इंडिया, आई हैव सीन इट फ्रॉम वेरी क्लोज। I can say women administrators, women representatives, first timer maybe administration में तो first timer सभी होते हैं, so it really doesn't matter. They learn, and I've met administrators who say that we questioned our office when they say this can't be done. तो हमने उनसे पूछा क्यों नहीं हो सकता है, why are we here? तो लिखे कानून ही सिर्फ चलेंगे या नागरिक सुविधाएं बढ़ेंगी। आपको याद है अभी प्रधानमंत्री जी जब काशी में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था नागरिक देवो भव, यानी पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई उन तक पहुंचे, और जो महिला प्रशासक हैं, विमेन एडमिनिस्ट्रेटर्स स्पेशली इन ऑफ यंग वंस, दे हैव दिस इन देयर माइंड, तो गवर्नेंस का रूप बदलेगा और फिर जब यही सीनियर होंगी तो नीतियों का रूप भी बदलेगा, क्योंकि

0: नीतियां भी जब फर्स्ट एंड एक्सपीरियंस से बनेगी, केवल कंसल्टेंट्स नहीं बनाएंगे, प्रशासक और नागरिक मिलकर बनाएंगे, तो वो नीतियां भी अच्छी बनेगी।
1: अदिति जी, आपको लगता है कि जैसे जैसे महिलाओं का सशक्तिकरण होता है तो अपने आप ही उनका जो सम्मान है, जो एक दर्जा है समाज में, वो बढ़ जाता है और समाज का भी जो माइंडसेट है वो जेंडर इक्वालिटी की तरफ जाता है?
2: इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि जब आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उसका सबसे इम्पोर्टेंट यार्डस्टिक ये होता है कि क्या कोई सिस्टम, क्या कोई सरकार इस चीज के लिए तैयार है कि एक साथ महिला और पुरुष लीडर्स एक ही टेबल पर बैठकर देश के भविष्य के लिए नीतियां बनाएं या लेजिस्लेशन बनाएं। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम का पास होना या उसके पीछे पॉलिटिकल इंटेंट का होना एक बहुत बड़ा माध्यम है इस चीज को जताने का कि हाँ, सरकार पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए अब तैयार है। अभी हम बात कर रहे थे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, लोकल बॉडीज में महिलाओं का कितना बड़ा रोल अब हो चुका है। वो इसलिए संभव हुआ है सोनू, क्योंकि 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दी गई थी और 33% सीट्स आरक्षित कर दी गई थी पंचायती लेवल पर महिलाओं के लिए। वो अब आते आते तमाम प्रदेशों ने 50% कर दी है। इतने साल लग गए हैं महिला लीडरशिप को तैयार करते करते। तो अब हम जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात करते हैं, तो जब अब ये एक आकार लेगा, जब भी जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2029 का जो अगला इलेक्शन है वो 33% महिलाओं के साथ, आरक्षण के साथ लड़ा जाएगा, अगर वो संभव हो पाया, तो तब से लेकर फिर महिला सशक्तिकरण का असली दौर शुरू होगा, जब महिलाएं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में उनको अपना सही हिस्सा मिलेगा।
1: सो एज इंडिया मूव्स टुवर्ड्स द गोल ऑफ विकसित भारत बाय 2047, द रोल ऑफ वुमेन इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग सेंट्रल टू दिस जर्नी। अक्रॉस सेक्टर्स वुमेन आर कंट्रीब्यूटिंग एज वर्कर्स, एंटरप्रेन्योर्स, फार्मर्स, इनोवेटर्स एंड लीडर्स। सुषमा जी, अदिति जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस इंसाइटफुल एंड इंस्पायरिंग डिस्कशन।
0: Thank you.
3: In this special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government, from women empowerment to women-led development. Participants were Professor Sushma Yadav and Aditi Tandon, senior journalist. Moderator was Sonu Sood. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. Vishesh Shrinkhala ke antargat abhi aap sun rahe the Modi Sarkar ke 12 saal. महिला सशक्तिकरण का परिवर्तनकारी दशक, इसमें भाग ले रही थी प्रोफेसर सुषमा यादव और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर
4: ऋषिकेश गांगुली जी का शास्त्रीय गायन।
5: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ वोकल रिसाइटल बाय ऋषिकेश गांगुली।
4: पुणे के एक संगीत प्रेमी परिवार में जन्मे ऋषिकेश जी को 5 वर्ष की अल्पायु में ही अपने पिता श्री पुरुषोत्तम गांगुड़े से संगीत की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हुई। इसके पश्चात उन्होंने डॉ. विकास कशालकर और पंडित यशवंत बुआ जोशी से 8 वर्षों तक ग्वालियर घराने के गायकी को बारीकियों से सीखा। इसके बाद ऋषिकेश जी ने ITC संगीत रिसर्च अकादमी की प्रतिष्ठित छात्रवृत्ति प्राप्त की और कलकत्ता में ग्वालियर, जयपुर, आगरा घराने के दिग्गज पंडित उल्लास कशालकर के सानिध्य में गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत 6 वर्षों तक गहन प्रशिक्षण लिया। उन्हें बनारस घराने की विदुषी गिरिजा देवी जी से ठुमरी, दादरा और कजरी जैसे उपशास्त्रीय रूपों को सीखने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ।
5: बॉर्न इंटू अ म्यूजिक लविंग फैमिली इन पुणे, ऋषिकेश वॉज इनिशिएटेड इंटू वोकल म्यूजिक at the tender age of 5 by his father Shri Purushottam Gangurde. He later received extensive training for 8 years from Dr. Vikas Kashalkar and Pandit Yashwant Bua Joshi, learning the intricacies of the Gwalior Gharana. Thereafter, Rishikesh received the prestigious ITC Sangeet Research Academy scholarship, coming under the tutelage of the stalwart Pandit Ullas Kashalkar. For 6 years, he underwent intense training in the pure Gharana Gayaki of the Gwalior, Jaipur and Agra traditions. He was also fortunate to learn semi-classical forms like Thumri and Dadra from the legendary Vidushi Girija Devi of the Banaras Gharana.
4: Rushikesh Gangurde Akashwani ke A Shreni ke Gayak Kalakar hai. Unki Gayaki mein Sangeet ka Saundarya, Bhavyata aur Madhurya jhalakta hai, जो सीधे श्रोताओं के मन को छू लेता है, और यही उनके गायकी की विशेषता है। गायन के साथ साथ वे एक कुशल तबला वादक भी है, और उन्होंने कई कार्यक्रमों में अपने गुरु पंडित उल्लास कशाळकर के साथ तबले पर संगत की है। वर्तमान में वे भारतीय विद्यापीठ पुणे के स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत है।
5: ऋषिकेश गांगुर्डे इज एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड इज स्टेडिली कार्विंग अ निश फॉर हिमसेल्फ एज अ घरानेदार वोकलिस्ट हु ट्राइज टू गिव एक्सप्रेशन टू द ब्यूटी ग्रैंडर एंड स्वीटनेस ऑफ म्यूजिक सो एज टू टच द ह्यूमन हार्ट एंड दिस इज द हॉलमार्क ऑफ हिज सिंगिंग। बियॉन्ड हिज वोकल प्रोवेस He is an accomplished tabla player and has even accompanied his guru, Pandit Ullas Kashalkar, in various concerts. Currently, he serves as an assistant professor in the School of Performing Arts at Bharati Vidyapit, Pune.
4: आज के कार्यक्रम में ऋषिकेश गांगुर्डे जी को तबले पर संगत कर रहे हैं आशय कुलकर्णी और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं मकरंद खरवंडीकर। अपने गायन का आरंभ वे कर रहे हैं राग बिहागड़ा से। विलंबित रचना तीन ताल में निबद्ध है, बोल है प्यारी पग होले होले। इसके पश्चात वे तीन ताल में ही दो द्रुत बंदिशें प्रस्तुत करेंगे, निरख छब देखत और रैन दिन कैसे कटेरी।
5: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय श्री आशय कुलकर्णी एंड ऑन द हारमोनियम बाय श्री मकरंद खरवंडीकर। Rishikesh begins his vocal recital with Raag Bihagda. The Vilambit composition is set to Teen Taal. This will be followed by Druta compositions in Teen Taal.

0: ये था राग बिहागड़ा।
1: दैट वॉज राग बिहागड़ा।
0: ऋषिकेश गांगुड़े अपने गायन का समापन राग बागेश्री से कर रहे हैं। विलंबित ख्याल तिलवाड़ा ताल में निबद्ध है, जिसके बोल है लाल मनावे। गायन का समापन वे तीन ताल की द्रुत बंदिश पहरवा घर आओ से करेंगे।
1: नेक्स्ट ऋषिकेश गांगुड़े विल प्रेजेंट राग बागेश्री। द विलंबित ख्याल इज सेट टू तिलवाड़ा ताल। ही कंक्लूड्स द रागा विथ द्रुत कंपोजिशन इन तीन ताल।

0: श्री गायन सुन रहे थे। उन्हें तबले पर श्री आशय कुलकर्णी और हारमोनियम पर श्री मकरंद खरवंडेकर जी ने संगत की। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण आकाशवाणी पुणे केंद्र के स्टूडियो में किया गया और यह कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: You are listening to a classical vocal recital by Rishikesh Gangurde in the National Program of Music. He was accompanied on the tabla by Ashay Kulkarni and on the harmonium by Makaranda Kharvandikar. This program was recorded at the studios of Akashwani Pune and this program was broadcast from Akashwani Delhi.

0: राग बागेश्री अभी आपने सुना।
1: दैट वॉज राग बागेश्री।
0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप ऋषिकेश गांगुलडे जी का शास्त्र

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिमी एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षो में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू की घोषणा की। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi today chaired a meeting with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said they deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long-term development priorities. They also shared perspectives on adding more momentum to the reforms journey and ensuring ease of living as well as ease of doing business. The Economic Advisory Council is an independent body that gives advice to the Government of India, specifically to the Prime Minister, on economic and related issues. Besides the EAC members, two principal secretaries to the Prime Minister, Dr. P.K. Mishra and Shaktikant Das, also attended the meeting. The centre has introduced standard pack sizes for edible oils under the legal metrology framework, bringing greater transparency and uniformity to the marketplace. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that under the revised rules, standard pack sizes have been prescribed for major edible oils, including palm oil, palm olein, soybean oil, sunflower oil, mustard oil, groundnut oil, sesame oil and rice bran oil. The approved pack sizes are 200 gram, 500 gram, 1 to 5 kilograms, 15 kilograms and 20 kilograms. The ministry said this will also help consumers make more informed and transparent purchasing decisions. It added that the initiative will benefit the edible oil industry by bringing greater uniformity in packaging practices. Railway Minister Ashwini Vaishnaw has said that resolving long-pending railway projects in West Bengal will usher in a new era of railway infrastructure development in the state. Addressing a joint press conference with Chief Minister Suvendu Adhikari at Nabarna in Kolkata, Mr. Vaishnaw said that 14,205 crore rupees have been allocated to West Bengal in the railway project for 2026-27. He said 10 Amrit Bharat stations have already been completed in the state, while 9 Vande Bharat Express trains and several Amrit Bharat trains are currently in operation.
5: 60 new generation trains we are planning. In coming 4 to 5 years, these trains will be inducted and Kolkata Metro will get a totally new generation of trains. As the work gets completed on Chingrighatta area, other sections, a lot of improvement will happen in the mobility in Kolkata.
4: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said India and Nepal collaborate closely to maintain security along their long